निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी माँ को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांग कर लाते थे। रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया, उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है, मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं,
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। इसके अंतर्गत आज सुनिए नशे का साथ जिंदगी का नाश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूं जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है। आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
4: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है। तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
4: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
4: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
4: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं। जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
4: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
4: जी,
1: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
4: जी,
1: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
4: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
1: जी,
4: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा, तो हमने ये चीज़ फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
4: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें। ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
4: जी,
1: यही कहा था आपसे,
4: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
4: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
4: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर, कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
4: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
4: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
4: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
4: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर 2-4 दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि 2-4 दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो ये चीज़, वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
4: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
4: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
5: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
5: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीजें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है। तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
6: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से, अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मज़े करते हो, अभी हम लोग मज़े कर रहे हैं, तो नशा मज़े की चीज़ हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
5: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
6: जी।
5: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
6: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से, इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना? क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना? एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
4: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आईं और पुलिस वाली मैम आईं और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
6: में तब्दील हो गई,
4: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
6: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
4: जी,
6: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
4: जी,
6: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेल्यूसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है, है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
4: जी,
6: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
4: जी, बिल्कुल
6: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
4: जी,
6: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो रही होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटे तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
5: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई बहुत, समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पर, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
6: कोई तो सुने, पहली बात
5: कोई तो सुने, बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं, और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
6: दिख ना जाए।
5: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया। जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी। तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
6: मेरा पैसा मैं
5: मेरा,
6: कुछ भी करूं।
5: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th में थी। मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
6: हद में रहो,
5: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
6: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदि हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बालसभा मुझे लगता है कि सिर्फ बालसभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति
1: इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
4: जी बिल्कुल
1: आ सकता है।
4: जी जी।
1: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं विश्व योग दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद में मैं नूपुर शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो विषय है योग और स्वास्थ्य का संबंध। श्रोताओं, आज के व्यस्त जीवन में तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक निष्क्रियता के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति बनकर हमारे सामने आता है। योग के इस खजाने से आज हम भी कुछ मोती चुनने की कोशिश करेंगे, और इस विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, जो योग, अध्यात्म और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेषज्ञ हैं। रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी।
2: नमस्कार।
1: याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि अयम तु परमो धर्मो यत योगिनात्म दर्शनम, यानी जिस साधना से आत्मदर्शन और ब्रह्म साक्षात्कार होता है वही योग है। तो सामान्य भाषा में सबसे पहले हमारे श्रोताओं की इसी उत्सुकता का समाधान करें कि योग क्या है और ये सामान्य व्यायाम से किस प्रकार से अलग है।
2: सुंदर सवाल किया आपने। योग व्यायाम नहीं है
1: जी।
2: योग एक जीवन शैली है, या कह सकते हैं जीवन को समझने का एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसमें हम अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रखने की कोशिश में अपने आसपास के वातावरण की चिंता नहीं करता, और कई बार स्वास्थ्य का अर्थ हम शारीरिक तक ही समेट लेते हैं। लेकिन जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ न हों, तब तक हम पूर्ण स्वस्थ नहीं होंगे। आपने याज्ञवल्क्य स्मृति का जो कोट किया है कि आत्मा का साक्षात्कार यानी ब्रह्म का साक्षात्कार, मनुष्य इस जगत का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अन्य जीवों की तरह सिर्फ देह तक सिमटा हुआ नहीं है
1: जी।
2: उसके अंदर विचार करने का कौशल है, वो मन के भी आगे विचार करता है कि ये जगत कैसे बना, इस सृष्टि का मुख्य आधार क्या है, जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बीच कैसे समायोजन स्थापित किया जाए, या उन परिवर्तनों में अपने को कैसे अलिप्त रखते हुए हम अपने कर्तव्य कर्म का ठीक से निर्वहन करें। तो ऐसे में आत्म साक्षात्कार एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म अनुशासित होता है। मतलब उसको बाहर के किसी डिसिप्लिन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि वो स्वयं को जानता है, और स्वयं को जानने का अर्थ हुआ कि वो जगत के समस्त विस्तार में अपने आप को देखता है। इसको बहुत सुंदर शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है जिसमें आदि योगी शिव अपनी शक्ति से कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं संग कर ही विरोध। इसका अर्थ ये हुआ कि आदमी के अंदर जो बैर भाव है वो समाप्त हो जाता है, और बैर भाव होता ही है दूसरों के साथ, तो ऐसे में आत्म साक्षात्कार के बिना निर्बैर की स्थिति नहीं आती, चाहे कितनी भी उसके लिए आप ज्ञान अर्जित कर लें। तो आत्म साक्षात्कार ही योग का परम लक्ष्य भी है कि आत्म साक्षात्कार से कैसे आप स्वयं को अनुशासित करें। इसीलिए योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र का जो प्रारंभ किया है अथ योगानुशासनम, आओ अब योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। तो निश्चित आपने सही कहा कि आत्म साक्षात्कार की विद्या है ये। और योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ जी योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, मन प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन को शांत और वश में रखने का उपाय ही योग है। जब मन शांत होता है तब आपको अपने चित्त में अपने आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब दिखता है, यानी आप अपने आत्म स्वरूप से परिचित होते हैं।
1: यहाँ पर ही एक सवाल आता है मेरे मन में कि योग किस प्रकार से हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
2: सुंदर किया कहा आपने। जब प्रथम सूत्र उन्होंने ये कहा तो फिर उसके बाद दूसरा सूत्र कहते हैं, योग को परिभाषित करते हैं महर्षि पतंजलि, कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब चित्त की वृत्तियां क्या है? चित्त की वृत्तियां सामान्य तौर पर योग सूत्र की भाषा में बात करें तो वो कहते हैं कि दो तरह की वृत्तियां होती हैं, एक साधक वृत्तियां होती हैं, एक बाधक वृत्तियां होती हैं। और इन दो में उन्होंने पांच वृत्तियों की बात की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आपने कहा कि जब तक मनुष्य वृत्तियों के साथ है तब तक वो इन वृत्तियों को ही अपना रूप समझता है। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, ये सूत्र है योग सूत्र में। तो अब वृत्तियों का जब निरोध होगा तब उसे आत्म साक्षात्कार होगा, तब उसे अपने स्वरूप का दर्शन होगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब इसमें कई लोग दृष्टा को समझ लेते हैं स्वरूप। दृष्टा का संबंध दृश्य से है। जब भी आप किसी दृश्य को देखते हैं तो दृश्य को देखने के नाते आप दृष्टा हो जाते हैं, दृश्य से पूर्व आप दृष्टा नहीं है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। यानी दृष्टा का स्वरूप जो है वो दृष्टा का नहीं है, दृष्टा तो दृश्य के संदर्भ में बन गया है। वो अगर विचार करें गहरे में तो दृश्य के अभाव में अर्थात वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद दृष्टा का स्वरूप क्या होगा? तो दृष्टा दृष्टा ही नहीं बचेगा, क्योंकि
1: योग यही कहता है कि बाहर नहीं अपने भीतर देखो,
2: अपने भीतर देखो। क्योंकि अच्छा आपके भीतर कोई दृश्य नहीं है। कई बार ऐसा भी भ्रामक धारणा बन जाती है लोगों की, जैसे दृश्य को देखने का आदती होने के नाते हम अपने अंदर भी किसी दृश्य की रचना करते हैं और उस दृश्य के दृष्टा हो जाते हैं, जबकि यहां पर दृश्य नहीं है, अंदर कोई दृश्य नहीं है, इसलिए दृष्टा भी नहीं है। यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों की त्रिपुटी से मुक्त अवस्था जो होती है वो है आत्मा की अवस्था। तो इसीलिए आत्मा की अवस्था को आप कोई रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, इशारे हो सकते हैं। तो तभी वो आत्मदर्शन होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, नहीं तो सामान्यतया हमें वृत्तियों में ही जीने की आदत है और हम किसी भी चीज को वृत्तियों में ही समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो शब्द की भाषा नहीं, रूप की भाषा समझता है। जैसे कोई भी शब्द जिस अर्थ के साथ आपके चित्त में अंकित होता है उस अर्थ का एक रूप होता है। जैसे आप सागर का नाम लीजिए तो सागर का नाम लेते ही एक चित्र बनता है,
1: दिमाग में चित्र बनता।
2: या कोई ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए हिंदी भाषी ना हो तो आप सागर कहें तो वो नहीं समझ, सागर के किनारे बैठ करके भी वो नहीं समझ पाएगा कि किस चीज की बात हो रही है, क्योंकि उसका चित्र उसके चित्त में नहीं बन रहा है। तो इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क चित्र की भाषा समझता है। इसीलिए कहते भी हैं हम लोग हैं कि ये जगत जो है नाम रूपात्मक है, कि नाम और रूप में इस जगत का ज्ञान होता है। आप विचार करके देखें कि कोई भी ज्ञान, अगर कोई नाम है उसका कोई रूप आपके चित्त में नहीं है तो ऐसे में उसका ज्ञान आपको नहीं होगा। तो ज्ञान के लिए ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों का होना आवश्यक है। और योग जो आपने कहा याज्ञवल्क्य की स्मृति में, महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को जानना, अपने आत्मस्वरूप को जानना योग है। और आत्मस्वरूप को जान तभी आ सकते हैं जब आपका मन शांत हो, आपके वश में हो।
1: तो हमारे यहाँ देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक परंपरा से ही योग करते चले आ रहे हैं हजारों सालों से।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन 21 जून की तिथि को ही योग दिवस मनाने के लिए क्यों चुना गया, यहाँ पर ये सवाल मेरे मन में आता है। तो पहले इसका समाधान करें फिर हम आगे चलते हैं।
2: देखिए 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है।
1: जी।
2: सबसे बड़ा दिन होने का अर्थ ये हुआ कि सूर्य का अधिकतम उपस्थिति होती है यहाँ। ठीक है, आप देखें ज्ञान को प्रकाश का भी संज्ञा दिया गया है और इस जगत के जीवन का आधार सूर्य है, सविता है, वेदों में उनकी उपासना भी है। अब ऐसे में उन्होंने 21 जून का चुनाव इसलिए किया होगा कि जो सूर्य देवता है, जो जगत के जीवन के आधार हैं, ऐसे ही योग भी जीवन का आधार है। तो वो सूर्य के सबसे अधिक समय तक दिखाई देने के नाते 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। और इसकी शुरुआत हुई 21 जून 2015 से, शायद यहीं से प्रारंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाना। और जो पहला इनका थीम था वो था सद्भाव और शांति के लिए योग, कि दुनिया में सद्भाव हो। अब सद्भाव का मतलब एक ऐसा भाव जो सद से जुड़ा हो,
1: जैसा कि आपने बताया कि वैर भाव को मिटा, हाँ, वही सद भाव हो गया।
2: और जगत में कोई भी नहीं है जो बैर भाव के साथ जीना पसंद करता हो। बैर भी आदमी सद्भाव के अभाव में करता है
1: जी।
2: अगर देखा जाए तो अगर उसके अंदर सद्भाव का विकास है तो बैर भाव अपने आप तिरोहित हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया कि ज्ञान के प्रकाश में आप अपने अविद्या के अंधकार को मिटाएं। योग विद्या है जहां पर अविद्या से जन्म लेने वाले जो क्लेश हैं, जिसमें अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये पांच पंच क्लेश होते हैं जो व्यक्ति को दुख देते हैं, और इन समस्त दुखों की जड़ जो है वो अविद्या है, जिसका निर्मूलन होता है योग विद्या से। तो इसलिए योग एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसको अब सामान्य अर्थों में हम कहते हैं जुड़ना, जोड़ना, लेकिन जो जगत से जो जुड़ाव आपका होता है, एकात्मता का जो दर्शन होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको एकात्म मानव दर्शन नाम से एक दर्शन की बात की, कि एक ऐसी स्थिति मनुष्य की जहां एक ही आत्मा में उस पूरे जगत को वो देखे तो ऐसे में ऐसा मनुष्य कभी जगत के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए मनुष्य की मनुष्यता का संबंध लोक कल्याण से भी है, कि ऐसा मानो जो लोक कल्याणकारी नहीं है वो मानवीय गुणों से वंचित है। उसके मनुष्य होने पर भी संदेह किया गया भारतीय ज्ञान परंपरा में। भारत के ऋषियों ने कहा, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि वो मनुष्य के रूप में एक पशु है जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, दान नहीं है। दान पूरी प्रकृति दे रही है, लेकिन मनुष्य सोचे कि मनुष्य प्रकृति को क्या दे रहा है। आज मनुष्य के देने की प्रकृति दूषित होने के नाते आज पूरा जगत एक संकट से गुजर रहा है।
1: तो हम ले रहे हैं, प्रकृति को दे नहीं रहे।
2: प्रकृति से जो हम ले रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, धरती को हमने क्या दिया? प्रदूषण दिया। वायु को हमने प्रदूषण दिया, नदियों को प्रदूषण दिया, वायुमंडल को हमने ग्लोबल वार्मिंग दी, जिसके लिए आज जैव विविधता के संकट से दुनिया जूझ रही है। तो इस तरीके से जो सद्भावना है, उस सद्भावना और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। और इस बार का जो 26 का थीम है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब इसमें योग और स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
2: अब स्वास्थ्य शब्द को देखें तो स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। अब स्व को आप जानेंगे नहीं तो स्व में स्थित कैसे होंगे। अब जब आपने कहा कि आत्मदर्शन, तो आत्मदर्शन अगर देखें, इसकी दृष्टि से देखें, तो मनुष्य ही इस जगत का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन के तत्वों को जानता है और जगत के जीवन को भी जानता है कि जगत में अन्य जो जीव हैं उनके लिए क्या क्या उपयोगी है, या उनके जीवन में जो बीमारियां आ रही हैं वो किस कारण से आ रही हैं, वो उन जीवों को पता नहीं है लेकिन मनुष्य को पता है। लेकिन मनुष्य ने योग के साथ या योगानुशासन का पालन न करने के नाते, ये सारी जानकारी होने के बाद भी वो उन तमाम विकृतियों या तमाम विकारों के साथ अपने को खड़ा पाएगा अगर वो विचार पूर्वक देखे कि ये समस्त जो असंतुलन हुआ है उसके केंद्र में मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य को स्वास्थ्य को समझना चाहिए कि हम स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब पंच महाभूतों को स्वस्थ रखें। धरती को प्रदूषित करके आप अपने शरीर को पुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप खाएंगे वो धरती से मिलेगा। तो धरती को ही आपने अगर रासायनिक बना दिया तो आप उसके रूप में क्या खा रहे हैं, वो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपके शरीर में जा रहा है। जिन दवाओं का आप आविष्कार करके आप सोचते हैं कि इससे हम प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर सकेंगे, शोषण कर सकेंगे, वो दवाएं किसी न किसी रूप में फूड चेन में आपके शरीर में भी आ रही हैं। और आज देख रहे हैं बीमारियों की क्या हालत है, कम उम्र में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी तमाम सारी बीमारियों का हब बना हुआ है भारत। क्यों? क्योंकि वो योग के साथ नहीं खड़ा है।
1: और मैं तो ये कहूंगी कि प्रकृति के साथ भी नहीं खड़ा है।
2: योग का मतलब
1: विरोध में ही काम कर रहा है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रकृति, योग का मतलब हुआ कि जुड़ना, कि प्रकृति से आप जुड़ें, प्रकृति को जानें, प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी आप अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोच पाएंगे और प्रकृति को भी स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए इसका एक संबंध सद्भाव से तो है ही। और जो आजकल जो एज है, जो विभिन्न एज में हैं लोग, तो आयु को दीर्घायु बनाने के लिए योग की महती भूमिका है, जिसमें मैं थोड़ा सा उद्धृत करना चाहूंगा महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, जिसमें वो कहते हैं यम पांच प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप देखें तो ये जो पांच यम हैं, एक प्रकार का निषेधात्मक अनुशासन है ये
1: जी।
2: जैसे अहिंसा मतलब हिंसा न करें, अस्तेय मतलब चोरी न करें, सत्य यानी असत्य को नहीं सत्य को जाने। तो जो आपने शुरू में याज्ञवल्क्य की स्मृति का जो जिक्र किया, सत्य क्या है? तो सत्य है आपकी चेतना का होना, आपकी आत्मा का होना, जिसकी वजह से शरीर के सारे अंग या सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं। तो जब उस चैतन्य की दृष्टिकोण से इस जगत में आप देखते हैं तो आपको अद्वैतता का बोध होता है, जिसको हम अद्वैत ज्ञान कहते हैं। अद्वैत ज्ञान का मतलब होता है जहां दूसरा कोई नहीं है, एक ऐसा ज्ञान जिसको गोस्वामी जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगुपानी, कि पूरा जगत जो है उस राम मैं देखें, जिसको भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। अब ये बात सिर्फ शब्दों तक नहीं है, ये बात आत्मदर्शन के बाद बोध में प्रकट हुई बात है, ये सूत्र के रूप में, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जीवन में एक परस्पर तंत्रता है। जो एक स्वतंत्रता की बात करते हैं या मनुष्य सोचता है कि हम अलग थलग अपने जीवन को जी सकते हैं, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन के संरक्षण में विकास में पूरे प्रकृति का योगदान है।
1: इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी
2: कहा भी गया।
1: फिर ये बात सामने आती है कि योग केवल शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने का तरीका नहीं है हमारे लिए, इसे जीवन जीने की पद्धति इसीलिए कहा जाता है। तो आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य कौन कौन से प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं?
2: एक तो जो शारीरिक स्वास्थ्य की बात कही कि शरीर को शेप मिलता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योग में स्ट्रेंथन के बहुत सारे एक्सरसाइज अभ्यास हैं जिसमें हम एक तनाव देते हैं अपने शरीर में, तो जहां भी कहीं मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं या ब्लड सर्कुलेशन किसी कारण से रुक रहा है, योगाभ्यास करते वक्त जब आप विभिन्न तरह के आसन करते हैं, पोश्चर्स लेते हैं, तो उस दौरान प्रॉपर उनका खिंचाव होता है और उनमें शक्ति आती है, स्टेमिना आता है। तो इस तरीके से शरीर तो शुद्ध होता ही है, शरीर की शुद्धि तो होना योग का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो शरीर से आपके श्वासों पर आपका नियंत्रण होता है, क्योंकि जब भी आप आसन का अभ्यास करते हैं, हठ योग का आसन करते हैं, तो उस आसन के दौरान कुंभक लगता है। कुंभक का मतलब होता है प्राणायाम, योग की भाषा में हठ योग में प्राणायाम को कुंभक भी कहा गया। तो कुंभक जैसे आपकी सांस रुकती है, सांस आप अंतर कुंभक लगाएं या बहिर कुंभक लगाएं, आप जब आसन कर रहे होते हैं तो उस समय आप श्वास लेते नहीं है, श्वास रोक के रखते हैं, तो उस दौरान उस श्वास का जो प्रेशर है वो काफी शक्ति देता है। तो इस तरीके से शरीर तो स्वस्थ होता है, शरीर को डिटॉक्स करने में योग की महती भूमिका है। और जैसे हम पोश्चर्स की बात करें कि हम जब बैठते हैं, चलते हैं, तो सामान्यतः हम अपने एक तरफ का अंग का उपयोग अधिक करते हैं और एक तरफ के अंगों का उपयोग कम कर पाते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि जब आप अभ्यास करेंगे, आप अगर रेगुलर अभ्यासी नहीं हैं, तो आपको एक तरफ का अभ्यास करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि वो पोश्चर आपका प्रॉपर उपयोग में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, योग के जो विभिन्न आसन हैं वो आपके शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं उनका पूरा संचालन करते हैं। जैसे आप सामान्य परिस्थितियों में हाथ पैर वैसे नहीं चलाते, जैसे हाँ, आप योग
1: के हाँ जिसको कहते हैं।
2: जी, पवन मुक्तासन, तो सब आसनों का एक अपना महत्व है। पवन मुक्तासन मतलब शरीर की दूषित वायु को बाहर निकालने का वो एक माध्यम है। तो इस तरीके से योग पूरे तरीके से आपके शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, लेकिन आपके मन को स्वस्थ रखने में योग की महती भूमिका है, क्योंकि शरीर और मन ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम जो 10 इंद्रियां मानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक इंद्रिय मन भी माना गया है, इसलिए एकादश इंद्रियों की बात की गई है। तो जो मन रूपी इंद्रिय है, जिसको आज भी विज्ञान अभी खोजने में असमर्थ है, ठीक है, तो ऐसे में उस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए हमारे योगियों ने श्वासों के अभ्यास को बताया कि आप जो है श्वास का एक आयाम, श्वास को विस्तार दें। आज भी आप देखें जब तनाव या अवसाद में व्यक्ति होता है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत फायदा करती है, या फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करें, जिसको अपोजिट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, या कार्डियक कोहेसिव एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे में आप देखें कि जब हम जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, हमारी 3 नाड़ियां मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ऐसे में जो मन की नाड़ी है उसको कहते हैं हम लोग चंद्र नाड़ी, और जो शरीर की नाड़ी है जिससे शरीर संतुलित होता है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी संतुलित होने पर जो प्राणवायु है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। तो उसके लिए आपको कुंभक का अभ्यास करना पड़ता है कि जो सामान्य लोगों के श्वास लेने की दर है, एक योगी के श्वास लेने की दर ऐसी नहीं होगी। तो मन को वायु से माना गया है कि मन का जो देवता है वो चंद्रमा है, तो इसलिए जो बाइनोस्टल है उसको, जिसको हम लोग इड़ा कहते हैं, तो इड़ा से आप क्या करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, और पिंगला से आप अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, और जब अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं तो इन दोनों नाड़ियों को प्रॉपर खोलते हैं, जिसको हम लोग नाड़ी शोधन भी कहते हैं एक प्रकार से। तो जब ये दोनों नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो शरीर और मन का संतुलन बनता है, और वो संतुलन आपके लिए बहुत ही आनंददायक होता है। नहीं तो सामान्यतः आदमी कई बार मन से थका होता है और शरीर से सक्रिय होता है, कई बार शरीर से सक्रिय है मन से हारा हुआ है।
3: ठीक है, होता है कई लोग मन से ही फैसले लेते हैं, कई लोग दिमाग से ही फैसले लेते हैं, जी। और जब दोनों का संतुलन होता है, यानी सुषुम्ना काम कर रही होती है,
2: बिल्कुल,
3: तब हम सही फैसला,
2: निर्णायक स्थिति में आप तभी पहुंचते हैं जब आपका अपने भावनाओं पर नियंत्रण हो। क्योंकि कहा जाता है कि भावनात्मक स्थिरता के बिना अगर आप कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला कभी भी शुद्ध नहीं होगा, वो न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए भावनात्मक स्थिरता चाहिए किसी भी निर्णायक स्थिति में जाने के लिए। तो जब भी आप किसी भावना तिरेक में हो, जैसे आपको क्रोध हो, आसक्ति हो, ईर्ष्या हो, ये सब एक भावनात्मक उद्वेग है, मनोविज्ञान की भाषा में संवेगात्मक ये प्रवाह है।
3: इसीलिए तो, कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में आप
2: गहरी सांस लें या पानी देते हैं पीने को, कि वो लूप टूटे, वो ब्रेक हो, जो परंपरा जो चल रही है, क्योंकि आप एक लूप में फंस गए हैं और उसी प्रवाह में हम लोग निर्णय करते हैं तो वो निर्णय गलत होता है। अक्सर मन की जो प्रकृति है वो राग द्वेषात्मक है। मन राग किसे करता है, महर्षि पतंजलि ने क्लेशों की जब बात की है, जैसे आपने स्वास्थ्य शब्द किया है, तो स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि आदमी के जीवन में दुख ना हो। इसको भगवान श्री कृष्ण, जो योगेश्वर कहलाते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं गीता में, कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्मित चेतसा। इसका अर्थ हुआ कि दुख के संयोग से जो रहित अवस्था है वो योग है, उस योग का अभ्यास करना चाहिए। तो देखें तो दुख से आत्यंतिक मुक्ति जो है वो योग की स्थिति है, और स्वास्थ्य जो है वो एक दुख की स्थिति है, जिसमें चाहे आपको मानसिक दुख हो, जो बीमारी कहते हैं हम लोग कि शरीर में कोई बीमारी आती है तो हम दुखी महसूस करते हैं, या कष्ट महसूस होता है, मन में कोई तकलीफ हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख से जो मुक्ति दिलाए, दुख से जो वियोग कराए, उस विद्या का नाम योग विद्या है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि स्वास्थ्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपके योग का अनुशासन आपसे पालन हो रहा हो किसी न किसी रूप में, तभी आप स्वस्थ हैं, तभी आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को अभिप्राप्त करेंगे।
3: तो देखिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में आदमी यही सोचता है कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन यदि उसको तनाव है, चिंता है, थकान है, तो भी वो एक रोग की श्रेणी में आता है,
2: बिल्कुल
3: दृष्टि से देखा जाए। तो उसको ये चीज कैसे समझ में आए कि ये भी एक रोग है, मैं इसको दूर करना है, मुझे कैसे दूर करूंगा?
2: बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, स्वास्थ्य के समय में व्यक्ति आनंदित होगा, जब स्वस्थ होगा, चाहे वो बिल्कुल उसको एक अलग तरह की ऊर्जा स्फूर्ति होगी। जब भी कभी, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी प्रकार का आपको दुख होगा, तो वो दुख आपके सामान्य स्थिति में आपको नहीं रहने देगा, और शरीर की सामान्य अवस्था भी नहीं रहने देगा। उसमें सांसों की गति बढ़ जाएगी, शरीर में ताप बढ़ जाएगा। जैसे मैं बात करूं श्रीमद् भगवद गीता की, कि अर्जुन पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आप देखें तो जब वो कहते हैं कि जा दिखाइए दोनों सेनाओं, उस सेना में कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं दुर्योधन की तरफ से, मैं देखना चाहता हूं, और कहते हैं रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अब देखिए इसमें कितना बड़ा दर्शन है, दोनों सेनाओं के मध्य में जाने का मतलब कि दोनों सेनाओं को देखना,

0: और जिसके साथ दुख का अनुभव हुआ हो उसके विषय वस्तु और व्यक्ति में आपको द्वेष होगा। तो इसी दो तरह से हम लोग व्यक्ति ड्राइव होता है, कहते हैं उद्दीपित होता है, उद्दीपन का कारण व्यक्ति के यही दो मूल रूप से क्लेश हैं, राग और द्वेष। अब कहते हैं कि राग और द्वेष से मुक्त हुए बिना आप योग की स्थिति में नहीं होंगे। और आप देखें तो वृत्तियां जो महर्षि पतंजलि ने कही, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये भी राग द्वेषात्मक ही होती हैं, या तो क्लिष्ट होंगी या अक्लिष्ट होंगी। साधक होंगी तो आप उसमें राग कर बैठेंगे, बाधक होंगी तो आप उसे द्वेष करने लगेंगे। तो ऐसे में योग की जो एक परिभाषा है, जो चित्त वृत्तियों का निरोध, वो राग द्वेषात्मक वृत्तियों से मुक्त होने का एक उपाय है कि कैसे आप इससे मुक्त हों ताकि आप अपने स्वास्थ्य यानी स्व में स्थित रह सकें। स्व में स्थित रह करके ही आप खुशहाल हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, सद्भावपूर्ण हो सकते हैं जब आप स्व में होंगे। और जब भी शरीर में या मन में किसी पराये का प्रभाव होगा, जैसे शरीर में ताप का होना, इसका मतलब कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में, कोई जैविक मतलब कहते हैं अटैक हुआ है या कोई वायरस का अटैक हुआ है, तो इस तरीके से जब भी किसी ऐसी चीज का आपके शरीर में या आपके मन में जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जब उसका प्रभाव होगा तो आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। और जब आप अपने स्वाभाविक स्थिति में होंगे तब आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का मतलब अपनी स्वाभाविक दशा में होना। जब अर्जुन ऐसे दृश्य का विचार करने लगते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ये सब अपने ही लोग हैं, तो फिर अर्जुन के शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको कहते हैं वो व्यक्त भी करते हैं, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, वो व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा जो अंग कांप रहा है और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है। तो जो लक्षण बता रहे हैं तो वो लक्षण कहां से उत्पन्न हो गया, इसके पहले तो स्वस्थ थे, तो वो लक्षण तो मन से उत्पन्न हुआ, मन के विचारों से अवसाद की स्थिति आई। तो अवसाद की स्थिति में भी शरीर का जो आपकी जो फिजियोलॉजी है डिस्टर्ब हो जाती है, और शरीर की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाने से भी आप अवसाद में चले जाते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाम ऋषियों ने दिया, कि मन को कहा गया कि ये सूक्ष्म शरीर है, यानी ये शरीर को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि प्रभाव शरीर में दिखता है लेकिन उसका कारण कहां होता है, मन में। और ऐसे शरीर के प्रभाव का सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है कि अगर शरीर में कोई रोग हो जाए तो मन बहुत प्रसन्न नहीं होगा। तो योग पूरी तरीके से दोनों के बीच एक तालमेल है, और इन दोनों के स्वस्थ होने के लिए जो आपने शुरू में ही कहा, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति, जिसको अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि अपने आत्मस्वरूप की स्मृति हो और मोह नष्ट हो जाए, तब आप मन और शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाएंगे। अभी स्पिरिचुअल हेल्थ के नाम से आजकल परिभाषित किया जाने लगा है कि आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है, आत्म स्थिति में कैसे आप हैं। अगर वो आत्म स्थिति में हैं तो निश्चित ही आप शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, इन तीनों स्वास्थ्य को अर्जित कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे।
1: तो जैसा कि आपने बताया,
0: हाँ,
1: गीता का ज्ञान मिलने के बाद जैसे अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे, वैसे ही मेरा विचार है कि योग करने के बाद भी मन में एक शांति आ जाती है, हर स्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं और जो भी काम होता है उसमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सोच समझ के सही प्रतिक्रिया देते हैं।
0: योग एक प्रकार का स्व का नियंत्रण है, जिसको महर्षि वशिष्ठ कहते भी हैं कि मन को शांत करना अपने वश में करने का उपाय है योग। और इसके लिए भगवान ने गीता में 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा भी है, युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। यानी व्यक्ति को अपने खान पान, आमोद प्रमोद जो विहार है, कर्तव्य कर्म और सोने और जागने की आदतों को संयमित करना योग है, तब योग से सारे दुखों का नाश होगा। तो ऐसे में जो आपने कहा ना कि स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य यानी समस्त दुखों का नाश कर दे योग, तो उसके लिए आपको अपने आहार विहार और सोने जागने, कर्म और अकर्म, इन सब का संतुलित ज्ञान होना चाहिए। और जब आप ये कर पाते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं। कई बार हम स्वाभाविक कर्म है उसको न कर पाने की वजह से भी पीड़ित होते हैं, जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भी पीड़ा होती है।
1: तो चलते चलते मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी कि हम योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।
0: योग को जीवन शैली का हिस्सा अनुशासन से बना सकते हैं, और योग का नियमित अभ्यास, अनुशासन आपको निश्चित तौर पर एक डिसिप्लिन देता है, और वो डिसिप्लिन जिसमें आप अपने को सुखी और शांत तो रख ही पाएं। जब आप सुखी और शांत होंगे तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी सौहार्दपूर्ण बनाएंगे। निर्भय भाव में रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपके प्रति बैर भाव नहीं रखेंगे। तो एक बहुत कह सकते हैं कि परस्पर आश्रित जीवन जो है ना, परस्पर तंत्रता जिसे कहते हैं, जहां पारस्परिक योग हो, जहां एक दूसरे की परस्परता का बोध हो, तो ऐसे में आप लोक कल्याणकारी प्राणी के रूप में विकसित होंगे। यही योग का मूल लक्ष्य है और लोक कल्याणकारी सोच ही मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकती है।
1: तो आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अगर हम प्रतिदिन बदल बदल कर योग करें या योग को अपने काम के साथ जोड़ लें तो भी ये करना आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल, योगा कर्म सुकौशलम है ही, कुशलता पूर्वक कर्म को करना योग है। लेकिन कुशलता पूर्वक कर्म को करने के लिए आपको सफलता और असफलता का भी त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सफलता असफलता की आकांक्षा के साथ कर्म करने में कुशल हो सकेंगे। भगवान साफ साफ कहते हैं कि बिना इसको त्यागे, क्योंकि वो बड़ा जय पराजय शुभ अशुभ से बिना मुक्त हुए आप चाहें कि हम योग करने में कुशल हो जाएं, इसके लिए श्लोक में उद्धृत कर दूं, बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय उज्जस्व योगः कर्म सुकौशलम्। कहते हैं कि जब तक तुम समत्व बुद्धि से युक्त नहीं होगे, बुद्धि से युक्त हो यानी ऐसी बुद्धि नहीं जो शुभ अशुभ के बीच में फंसी है, वो शुभ अशुभ का त्याग करके समत्व में स्थित बुद्धि से युक्त हो करके तुम कर्म करने में कुशल हो सकोगे और उस योग का तुम अनुपालन करके योगी बन सकते हो और योगी बन करके ही तुम स्वस्थ रह सकते हो।
1: तो जैसे गीता में भगवान योगेश्वर हमें सही ज्ञान देते हैं और तब हमें समझ में आ जाता है कि हमको केवल कर्म करना है, योग भी एक प्रकार का कर्म ही है। उसी तरह से योग करने से, जैसे हमारी बात आज निकल के सामने आई कि शारीरिक मानसिक क्षमता के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और लचीलापन भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: और वहीं ये संपूर्ण स्वास्थ्य पाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। न डॉक्टर की जरूरत है, न वैद्य की जरूरत है। तो हम जानते हैं कि रोग के उपचार से बेहतर है कि पहले से ही उससे बचाव किया जाए और योग इसके लिए सबसे सरल और कारगर उपाय है। तो आज डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी, ये अमूल्य ज्ञान हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, ये था योग दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। और इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आप सुन रहे थे इसे रेडियो आजाद हिंद पर। आपके साथ थी मैं नूपुर शर्मा। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम भारतीय सेना के इतिहास को जानते समझते हुए आ पहुंचे हैं साल 1984 तक। ये वो समय था श्रोताओं, जिसे प्रगतिशील दौर कहा जा सकता है, स्वयं हमारे देश के लिए और साथ ही हमारी भारतीय सेना के लिए भी। ये दौर था नए तौर तरीकों का, नए उपकरणों का और तकनीकों का, नई चुनौतियों का। बस पुराना और चिरकालीन था तो वो था देश के प्रति बलिदान का वो जज्बा, जिसके दम पर हर चुनौती को भारतीय सैनिक स्वीकार करता है और एक गौरव गाथा लिख जाता है। श्रोताओं, यही जज्बा आज तक भी बरकरार है और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में देशभक्ति के ऐसे ही जज्बे से लबरेज एक ऐसे ऑपरेशन का हमने जिक्र किया था, जिसका नाम है सियाचिन का युद्ध, या जिसे कहें ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन यानी बर्फ का, समझिए रेगिस्तान, जहां -30 डिग्री से -50 डिग्री का चिल्ड तापमान, बर्फीले तूफानों का सिलसिला चालू होने पर कब थमेगा इसकी कोई थाह नहीं, जहां जंग दुश्मन से ज्यादा मौसम से लड़ना पड़ती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आइए जानते हैं कि बाना पोस्ट, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में किया था, उस पर कब्जे के बाद आगे क्या हुआ, कार्यक्रम की आज की कड़ी में। हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और सियाचिन पर भी अपनी सेवाएं देने का उनका एक लंबा अनुभव रहा है। सर, स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम में आपका।
4: जय हिंद पूर्वा जी।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था
3: जी,
4: कैद पोस्ट को कैप्चर करके उसे हमने फिर बाना पोस्ट का नाम दिया था
3: जी,
4: क्योंकि उसमें जो अटैक लीड किया था, जैसे हमने जिक्र किया था, नायब सरदार बाना सिंह साहब ने किया था, जो कि बाद में ऑनरी कैप्टन बने थे और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये पोस्ट खोने के बाद, जो कि पाकिस्तान का उस समय का इकलौता फुटहोल्ड था सॉल्टर और रिच पे, जैसे हमने बताया था, उन्होंने दोबारा अटैक किया मिला फांडला पे कब्जा करने के लिए सितंबर में, ठीक है। और इट वाज ए मेजर अटैक, क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट था कि किसी भी तरह से अपना सॉल्टर रिच पे फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करना है। तो ये अटैक जो है, इंडियन फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से इसको रिपल्स किया
3: जी।
4: और इसमें जो है, ये अटैक पाकिस्तान का बुरी तरह से फेल हुआ था, जिसमें कि उनको बहुत ही मतलब भारी असफलता देखने मिली और काफी उनका नुकसान भी हुआ था।
3: सर, ये बात 1984 की ही है?
4: नहीं, ये सितंबर 87 की हम बात कर रहे हैं, ये जब हमने बाना पोस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद की बात है, जब हमने वो कैद पोस्ट कैप्चर करके बाना पोस्ट बना दी थी
3: जी।
4: तो पाकिस्तान किसी भी तरह चाहता था, तब उन्होंने मिला फोंडला पे, जो नीचे
3: दोबारा
4: हमला किया था मिला फोंडला पे। अब ये जो हुआ, फेलियर हुआ, बट पाकिस्तान वाज डेस्परेट कि किसी भी तरह से हमको सॉल्टोरो रिज पे कहीं ना कहीं जो है अपना हक जमाना है, ठीक है, जो कि जबरदस्ती वाली बात थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एरिया एब्सोल्युटली क्लियर था कि ये इंडियन टेरिटरी है, पाकिस्तान इसमें अपना हक जो जमा रहा था वो एक इमेजिनरी लाइन को लेके, जैसे हमने बताया के कारण जो है जमा रहा था, तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपनी देश की रक्षा के लिए जो है तत्पर थे और खड़े थे और बहादुरी से डटे हुए थे। ठीक है, ओके। तो 89 में, मार्च 89 में, तो एक वहां पे और चुमिक ग्लेशियर रीजन है।
5: अच्छा।
4: जैसे जो सोल्टोरो रिज जाती है उससे वेस्ट में यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो ग्लेशियर निकलते हैं तो उसमें एक चुमिक ग्लेशियर फ्लो करता है। ये एरिया भी जो है मतलब चाचिंग ग्लेशियर के पास में है, लेकिन इसका टेरेन बहुत डिफिकल्ट है।
5: अच्छा।
4: बहुत ऊंची मतलब पहाड़ियां हैं, सीधी पहाड़ियां हैं, वर्टिकल जो हाइट्स हैं। तो किसी तरह से इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां पे एक अपनी पोस्ट बनाई एंड वो पोस्ट अब ऐसी थी कि उससे जो आर्टिलरी फायर है वो हमारी जो सप्लाई रूट्स वगैरह थी जो कि सियाचिन ग्लेशियर में चलती है।
5: अच्छा।
4: उसके ऊपर वो फायर करने में सफल हो रहा था। ये जो पोस्ट थी, लेकिन ये ऐसी थी कि अगेन इसमें जो है वर्ड थे अभी मैंने बताया कि जो वहां तक पहुंचना एक तरह से नामुमकिन था, खड़ी चढ़ाई थी, नामुमकिन था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए ये चैलेंज था कि इसको तो हम रहने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए जो है मूवमेंट मुश्किल है,
5: जी बाधा पहुंचाएगा।
4: जी बिल्कुल। और आर्टिलरी फायर हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द पोस्ट, है ना। आपकी सप्लाई चेन प्रभावित होती है उससे जो है। इसमें एक जब एरियल रेकी करी गई तो पाया गया कि ये जो पोस्ट थी, बहुत जो छोटी पोस्ट थी, वो एक पीछे चुमिक बेस बनाया था।
5: अच्छा।
4: जहां से कि वो उसको मेंटेन कर रहे थे। तो आर्टिलरी के ऑफिसर्स ने प्लान किया कि एक उन्होंने तरीका निकाला जो है, इट वाज अ वेरी इनोवेटिव है, कि उसके किसी तरह से उस बेस के ऊपर आर्टिफाइस उसको डिस्ट्रॉय किया जाए।
5: अच्छा।
4: तो ये पूरा प्लान हुआ। प्लान होने के बाद जो है जो आर्टिक ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स होते हैं जो फायर डायरेक्ट करते हैं।
5: अच्छा।
4: उनको उस जगह पे प्लेस किया गया जहां से कि वो लोग देख सके जैसे भी हो, एंड इट वाज अ बफोस फायर जिसने कि उस बेस को डिस्ट्रॉय करा।
5: यानी दुश्मन को पता भी नहीं चला कि ये कहां से हमला हुआ है,
4: कहां से हमला हुआ। दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ठीक है, ओके। और वो जब बेस बर्बाद हुआ ठीक है आर्टिफायर से, एंड उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि उस पोस्ट को मेंटेन कर सके एंड उनको वो विड्रॉ करनी पड़ेगी जो है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये हमको पता चला कि हम इतने हाई एंगल से भी पीछे जो है फायर कर सकते हैं, तो इट बिकेम ए न्यू ओपनिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टी गन्स, कि आर्टिलरी गन्स ऐसे भी मतलब जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड इट बिकेम ए मेजर सक्सेस ऑल्सो, जिससे कि आगे चल के हमने सोल्टोरो रिज के ऊपर पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश नहीं करने दिया गया था। अब ये जो लोकेशन है सोल्टोरो रिज पे, इसको AGPL कहा जाने लगा, मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन। ठीक है, ओके। अब दोनों आर्मी जो है उन्होंने अपने डिप्लॉय हो गई थी, फियर्स फाइट चल रहा था, दोनों चाहती थी कि अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे को यह था कि हम, ये हमारी देश है, हमारा जमीन है, हम इसमें पाकिस्तान को आने नहीं देंगे। पाकिस्तान चाहता था किसी भी तरह से
5: कब्जा
4: करे उसके ऊपर, ताकि वो उसको फिर आगे चल के अपना बना सके, बता सके। ये धीरे धीरे जो है फायरिंग ट्रूप्स का अनाउंसमेंट ज्यादा होता चला गया।
5: अच्छा।
4: वेपन्स भी जो है उस तरह से यू कैन से अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया। आर्टिलरी की गन्स आ गई, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ही आ गई। ठीक है, तो एंड ट्रूप्स भी बढ़ने लग गए एक के बाद, मतलब धीरे धीरे धीरे जो है बढ़ते रहे, क्योंकि वहां पे लड़ना भी कोई आसान नहीं है। जैसे हमने जिक्र किया कि हम सिर्फ वहां पे दुश्मन से ही नहीं लड़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट से, क्लाइमेट से भी लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या है कि दोनों जो है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी जो है वहां पे आमने सामने ऑलमोस्ट।
5: अच्छा।
4: कई जगह पे तो खासकर बिला फोंडला वाले गरी एरिया में अगर आप देखेंगे और नीचे कई जगह पे देखेंगे तो बहुत मतलब
5: करीब
4: है। तो यहाँ पे आपको 24/7 विजिलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब मौसम चाहे कितना भी खराब हो, मतलब वहां पे बर्फ पड़ रही है, ब्लिजर्ड आया हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, फिर भी एक सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं वहां छोड़ सकता।
5: जी।
4: क्योंकि उसको मालूम है यही मौसम है जबकि उसके ऊपर अटैक के ज्यादा चांसेस है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहां पे ड्यूटी जो कर रहा है, जो
5: 24 घंटे
4: चौकन्ना रहना है, क्योंकि वहां आप फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है।
5: बिल्कुल सही।
4: क्योंकि फेलियर अगर हो गया तो आप मतलब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके। जान भी जाएगी और जो है जहां
5: जगह
4: भी जाएगी ठीक है। तो ये यहाँ पे फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये वेदर के कारण जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था वहां पे जो है। एंड वेदर के अलावा जैसे हमने बात भी करी है कि वहाँ एवलांचेस बहुत रेगुलर आते थे, हाँ जी कभी भी मतलब जो खुलते थे ठीक है, क्योंकि क्या होता जैसे स्नो ब्लिजर्ड आया तो पता चला कि पूरे का प्रश्न एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, तो वहां मालूम चला कि जो है क्रेवेस खुल गया है, धूप पड़ रही है तो भी हो जाता है। ऐसे इलाके में मेंटेनेंस करना, कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस, सप्लाई का मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसी इलाके में अगर आप देखेंगे जो लीडरशिप है दैट कैरीज लॉट ऑफ वेटेज, इस जगह पे जो लीडर्स हैं वो अपने जवानों को मोटिवेट करके रख सकें
5: जी।
4: उसके लिए उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है हर तरह से होता है कि क्या जवान के पास पूरा राशन पहुंचा है
5: जी।
4: क्या उसकी ड्यूटी ठीक से लगी है, क्या उसका मोराल ठीक है, क्या उसके घर से चिट्ठी आ रही है, क्या उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं
5: जी।
4: है मैंने किसको जो है अभी बाहर भेजा है, क्या वो फिजिकली उस हिसाब से फिट है, या मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑफिसर्स के लिए, लीडर्स के लिए। एंड ये आई मस्ट से सो कि आई टेक प्राइड इन इट कि we never let down ठीक है anyone in this ठीक है। ऑफिसर्स जब भी हमने देखा भी है हर जगह जो है उन्होंने अपनी जो है it was an outstanding performance of leadership। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन जो है चैलेंज रहता है जिसमें कि वो वहां पे हमें फेस करना पड़ रहा था। अच्छा इस क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों जो आर्मीज हैं दे सफर्ड वेरी हाई कैजुअल्टी,
5: दोनों तरफ नुकसान
4: हो रहा था क्योंकि इंक्लीमेंट वेदर तो दोनों के लिए एक बार जैसा है, फायरिंग के कारण भी जो है नुकसान चल रहा था। पहले जब इनिशियली तो जब पोस्ट बनी थी तो उनमें बहुत ही मंडेन फैसिलिटीज होती थी, मतलब जो है क्योंकि जो शुरू में लोग गए थे वो तो जाते ही मतलब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उनके लिए तो सबसे प्राइमरी टास्क हो गया था कि भाई किसी तरह से अभी वाला हमें लड़ना है ठीक है। उनके लिए अपना जो कंफर्ट है दैट बिकेम सेकेंडरी, द कंट्री केम फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ओके। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, जो है स्नो हट्स वहाँ पे खड़ी हुई जो कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, देन स्पेशल क्लोथिंग वगैरह के जो मिलना शुरू हुई, तो ऐसे करते करते जो है इम्प्रूवमेंट तो आया,
5: बदलाव का दौर आया, प्रगतिशील हम भी थे, देश भी और सेना भी
4: सही बोला आपने
5: जी। तो बात यही आती है सर कि हम फिर ये जो सप्लाई होती है आज भी जो है वो किस तरह से सैनिकों को पहुंचाया जाता है, उसका क्या तरीका होता है हम लोगों के लिए, हम आम जनों के लिए तो बड़ा ही एक रोचक सवाल है मेरे लिए तो स्पेशली कि उन तक रसद भी और जो उपकरण है जो आप जवान जो यूज करते हैं वो किस तरह से पहुंचाए जाते हैं।
4: देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है
5: जी
4: उसमें वहाँ कुछ नहीं उगता, वहाँ कोई नेचुरल सोर्स नहीं है
5: जी,
4: वहाँ से बर्फ है, तो जो भी वहाँ पे पोस्ट है वहाँ पे हर चीज
5: जी
4: आपको नीचे से सप्लाई करनी पड़ती है, वो राशन हो गया, केरोसिन हो गया जो है, उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, एमिनेशन है, स्पेशल क्लोथिंग है, हर चीज आपको नीचे से लेके जानी है
5: जी।
4: और नीचे से ले जाने के लिए कोई आपके पास रोड्स नहीं है वहाँ पे
5: जी।
4: किसी तरह से ट्रैक्स नहीं है ना, तो वहाँ खच्चर जाते हैं ना वहाँ पे कोई गाड़ी जाती है, तो राशन सप्लाई करने का वहाँ पे सबसे बड़ा जो साधन होता है एक तो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो एयर ड्रॉप्स करते हैं।
5: अच्छा, यानी हवा से गिराया जाता
4: है, हवा से जो है पैराड्रॉप्स होते हैं तो वो राशन ड्रॉप होता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एविएशन के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो जो है सप्लाई मेंटेन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। और वहां पे जो राशन्स हैं मैं उसके बारे में आगे भी जिक्र करूंगा ठीक है, एक आपको अलग तरह से राशन, स्पेशल राशन्स भी चाहिए होते हैं जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। एंड केरोसिन जो है जैसे एक हम बात करें वहाँ पे आप एक बार राशन खाए मतलब खाना खाए वगैरह रह सकते हैं लेकिन केरोसिन के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको आग नहीं जली हुई है, आपके बुखार ही नहीं चली है, तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि आप के लिए मुश्किल हो जाता है। सो लॉजिस्टिक इज अ नाइटमेयर देयर, और इसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस और बहुत डिटेल प्लानिंग करनी होती है।
5: अच्छा,
4: कि एक यूनिट जा रही है तो उसके लिए वहां पे उसको कितना राशन चाहिए होगा, उस दौरान मतलब कितने दिन जो है वेदर पैक रहेगा, ये भी एक हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि विंटर्स में ज्यादा पैक रहता है, तो उसमें हमें कितने दिन मिलेंगे वहां पे राशन डंप करने के लिए, हर पोस्ट पे पहुंचाने के लिए मतलब जो है हमें कितने पोटोस चाहिए हैं, किस तरह से मतलब जो है लेके जा पाएंगे, एंड इट्स अ मेजर मेजर एफर्ट्स जो मतलब अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल पोस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और दिन रात जो है इसके लिए एक एक मतलब जो है कार्रवाई चलती रहती है। और इसमें जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि IAF प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मेजर रोल, एंड हैप्टस ऑफ आर्मी एविएशन दे आल्सो प्ले मेजर रोल इन दिस, है ना।
5: सर अब एक प्रश्न यहाँ पर मन में यही आता है कि ऊंचाई तो सियाचिन में भी है और दूसरी जगहों पर भी उतनी ही ऊंचाई है, तो सियाचिन की ऊंचाई में दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई में आप क्या अंतर पाते हैं, अपने काम में क्या अंतर पाते हैं वहाँ पर?
4: सियाचिन इन द थर्ड पोल जिसको बोलते हैं ना
5: जी,
4: नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद जो है थर्ड पोल बोला जाता है उसको। जब आप वहां जाते हैं, देखिए बाकी जगह पे एक फर्क ये होता है कि आप कहीं जाते हैं जैसे बाकी लोकेशंस पे मैंने देखा कि आपको थोड़ा इनहैबिटेशन दिखता है, लोग दिखते हैं आसपास जो है, जानवर दिखते हैं जो है
5: जी,
4: कहीं कहीं घास वगैरह भी दिखती है, कहीं एक वक्त तक तो आपको ट्री लाइन दिखती है। जब आप सियाचिन के एरिया में एंटर करते हैं इस एरिया में, वहां आपको सिवाय बर्फ के कुछ नहीं दिखता है। जो आपका मस्तिष्क है, माइंड है, वो एक नॉर्मल जो वातावरण को देखता है, जो नॉर्मल चीजों को मतलब एक्सेप्टेड होता है कि हमें पेड़ दिखेंगे, हमें चिड़िया दिखेगी, हमें एक आवाज दिखेगी, हमें कुत्ता भौंकता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ रहता है। देयर इज अ एब्सोल्यूट साइलेंस, वहां कुछ नहीं, वहां आपको बर्फ दिख रही होती है चारों तरफ। और उसमें जो है वहां पे जो ब्लिजर्ड्स आते हैं, मतलब स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं, वो कंटिन्यूअसली इट इज फॉर 15 डेज ऑल्सो मतलब जो है पैक रहता है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं गया था, जो मैं स्नो हट थी उसमें मैं सीधा एंटर किया था, एंड 20 दिन के बाद वो है 16 से 18 फीट नीचे बर्फ जा चुकी थी जो है। तो आप मतलब ये देखिए, एंड ऐसे वहां पे जिस तरह से मतलब पियर्स मतलब इतने ज्यादा तेज तूफान मैंने कहीं और नहीं देखे थे। तो इसका क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। एंड सेकंड थिंग इज वहां पे रेरिफाइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो बॉडी फंक्शनिंग जो है उसपे बहुत फर्क पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली। इट्स एब्सोल्यूट,
5: आप शारीरिक रूप से तो इसको चैलेंज की तरह लेते ही हो, मानसिक रूप से भी।
4: हाँ, मानसिक रूप से भी। अब दूसरा क्या होता है, अगर हम जस्ट माउंटेनियरिंग से अगर कंपेयर भी करें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि माउंटेनियरिंग कम मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वो भी, लेकिन माउंटेनियरिंग में आप एक जाते हैं, उस पहली बात तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग आप जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आप वहां रह रहे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक टास्क है, और उसमें आप एक नहीं दो नहीं तीन तीन महीने रह रहे हैं। 3 months is considered as the maximum a body can मतलब sustain।
5: अधिकतम वो कितने समय तक वहाँ रह सकता है?
4: हम लोग का ना जैसे ग्रुप जाता है तो हम 3 महीने के लिए जाते हैं।
5: अच्छा अच्छा
4: जी 3 महीने के लिए जाते हैं, 3 महीने के बाद जो है वापस आते हैं। उसके बाद बॉडी के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जाने से पहले भी अब जैसे इस इलाके में जो है आपको स्पेशली एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है, आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है, एंड आपके लिए उसके लिए आपका जो है मेडिकल रोज होते हैं, फिर आपको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर सियाचिन बैटल स्कूल है जिसमें कि हमें बर्फ के ऊपर चलना, क्रेवेसेस क्रॉस करना, ठीक है, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करने हैं, आइस वॉल जो होती है 90 डिग्री की आइस वॉल होती है उसको कैसे चढ़ना है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, क्रैम्पॉन्स बोलते हैं जिसमें कीले लगी होती है पैरों में, वो डाल के चलना होता है। फिर जो हमारे पास हथियार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, रेडियो सेट्स हैं, ठीक है, बाकी चीजें हैं, तो वो कैसे उसको मेंटेन करना है, टेलीफोन सेट, क्योंकि जब इस टेम्परेचर पे उसमें भी जो है मतलब काफी प्रॉब्लम काफी उनकी भी मतलब जो है एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसकी एक स्पेशल केयर आपको करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें जो है सियाचिन को अलग थोड़ा बनाती हैं, ठीक है।
5: वहां पर जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है,
4: बिल्कुल है। एक मतलब बहुत छोटी सी चीज होती है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन आपको जो है प्रॉपर रखना है। अच्छा, सियाचिन में क्या था, यू एंटर इनसाइड देन यू आर कमिंग बैक ओनली आफ्टर मतलब 3 months 4 months जो है आप वापस आ रहे हैं। तो एक जो मेंटली भी जो होता है लोगों के ऊपर एक मेंटल इम्पैक्ट आता है, आइसोलेशन का इम्पैक्ट आता है, तो उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कैसे बिजी रखते हैं। देन जो वहाँ के डिजीजेस वगैरह रहती हैं, जैसे चिलब्लाइंस हो गया, फ्रॉस्टबाइट्स हो गई हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। अब जैसे आपने स्नो गॉगल पहना हुआ है, आपने सपोज उसको निकाल दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, इमीडिएटली जो है आपको स्नो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, तो वो क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं उसके, उस इलाके में मेंटली आपको कैसे फिट रहना है, आइसोलेशन से कैसे डील करना है। ठीक है, तो एक छोटे से टेंट में जो है 10 लोग रह रहे हैं, अगर सब कुछ मतलब कई बार जो है मतलब इट्स अ चैलेंज। तो ये चीजें जो होती हैं, ये मुझे लगता है बाकी से थोड़ा इनको
5: अलग है,
4: अलग है। एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस आई हैड फाउंड देयर
5: जी।
4: बट मैं एक बात बताना चाहूंगा
5: जी,
4: मैंने कभी अपने किसी जवान को उदास नहीं देखा था, कभी मैंने किसी का मोटिवेशन डाउन नहीं देखा
5: जी। सर ये तो जवानों का जज्बा है जो उन्हें वहां पर हमेशा मुस्तैद रखता है, लेकिन एक बात तो ये सोचने में आती है सर कि इनकी हौसला अफजाई के लिए अधिकारी क्या करते हैं या क्या प्रोविजंस होते हैं कि ये हमेशा अपना मोराल जो है उनका बना रहे।
4: लीडरशिप तो है ही
5: जी,
4: इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है इसमें। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान रखती है, आर्म फोर्सेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो जवान जाते हैं उनको स्पेशल राशन ऑथराइज होते हैं
5: जी।
4: स्पेशल राशन में जो है अगर आप वो देखेंगे, राशन देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, हर तरह के जूसेस होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, रसगुल्ले के टिन्स जो हल्दीराम के आते हैं, गुलाब जामुन टिन्स हैं, नमकीन हैं। ठीक है, देन स्पेशली डेवलप्ड रेडी टू ईट मील्स जो होते हैं वो होते हैं, एंड मतलब वेरी हाई प्रोटीन डाइट होती है, चिकन है, ऐसे करके काफी जो जिस तरह से ट्रिप जा रहे होते हैं उस तरह से उनको राशन दिया जाता है। ये भी ख्याल रखा जाता है कि जो वेजिटेरियन ट्रिप्स हैं उनके लिए वेजिटेरियन काइंड ऑफ राशन दिया जाए, जो नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन राशन दिया जाए। तो स्पेशल राशन ऑथराइज होता है वहां पे जो है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है जिसके बगैर वहां पे मतलब रहना बहुत मुश्किल है, तो वो इश्यू होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मानते हैं, तो उसको बहुत डेवलप किया गया है, एंड बहुत ही बेसिक से लेके आज बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक जवान जो है अपने घर में बात कर पा रहा है, ये बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि जो अपने घर में वो बात कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी प्राइम एंड वेरी गुड देयर, इन द सेंस डॉक्टर्स बहुत होते हैं हर मतलब जो है कॉम्प्लेक्स में, मतलब जो है आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, एंड हर जवान का ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। पोस्ट पे भी जो होते हैं कि उनको किसी को बुखार तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन अभी अकोमोडेशन जो है लाइक स्नो हट्स जो है बनाई जाती हैं वहाँ पे, एंड आर्कटिक टेंट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं रहने के लिए। ऑफकोर्स इन सबके बावजूद मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वहाँ लाइट नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपके पास अब मनोरंजन का साधन रेडियो ही है। तो मतलब है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत फैसिलिटीज अच्छी, मतलब निरंतर एक प्रयास रहता है ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे स्पेशली जो ग्लेशियर वाला एरिया है इसमें स्नो स्कूटर्स इशू करे होते हैं, एंड फिर जब जो जवान वहां जाते हैं, जो ऑफिसर्स मतलब जो भी जाते हैं उनको वहां स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं जी, उसका प्रोविजन होता है, स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, एंड आफ्टर यू सर्व देयर यू गेट अ सियाचिन मेडल आल्सो। ठीक है, तो ये जो है वहां पे एक तरह से दीज आर मोरल बूस्टिंग फैक्टर्स एंड विच आर टेकन केयर ऑफ, है ना। एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एट ग्लेशियर। ठीक है, इवन मैं बता रहा हूँ एक मोमेंट होता है ना जब जैसे चलना भी होता है ना वहां पे, अगर फ्रेश स्नोफॉल हुआ तो आप ये देखिए कि आप एक कदम करते हैं और पूरा आप कमर तक अंदर जा चुके होते हैं। कई कई बार जो है मतलब 100-100 मीटर क्रॉस करने में एक घंटे से ऊपर लग जाता है, एंड आपको नहीं मालूम है कहाँ पे क्रवास खुलने वाला है, कहाँ एवलांच आने वाला है। स्नो ब्लेजर्स में जब आप बाहर निकलते हैं स्नो ब्लेजर्स के बाद, तो मैंने पूरा टेरेन चेंज होता हुआ देखा है, जहाँ पे मतलब टीले थे बर्फ के वहाँ वो पूरे गायब हो गए, एंड वहाँ पता चलता है कि नया क्रवास खुल गया है
5: जी, मतलब तो सीन भी चेंज हो जाता है,
4: सीन चेंज हो जाता है, पूरे कम्युनिकेशन वायर जो है आपके जो है सारे के सारे स्नैप हो जाते हैं, उसको आप इमीडिएटली फिर एस्टेब्लिश करते हो। इट्स हरकुलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म करना उस सब जीरो टेम्परेचर कंडीशंस में, आर्कटिक कंडीशन में, इट्स अ मेजर चैलेंज विच दे डू इट वेरी सिंसियरली, है ना। देन बॉडी एफिशिएंसी जो है बहुत कम हो जाती है आपकी, जो वर्किंग एफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। सी अब बॉडी, नॉर्मल बॉडी वहां पे जो है, जैसे अगर जिसको 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए उसको वहां पे 4000 कैलोरी चाहिए। अब इतना कंज्यूम करना भी हमारी हैबिट में नहीं होता।
5: नहीं है,
4: मैं आपको बोलूं कि आप 15 रोटी खा लीजिए आज, तो नहीं खा सकते,
5: नहीं खा सकते,
4: नहीं खा पाते। तो ये इस कारण से क्या होता है, बॉडी एफिशिएंसी कम होती है। देन वर्किंग जो है आपकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट, बहुत छोटी छोटी सी पोस्ट है, बहुत कंजेस्टेड पोस्ट है, तो उसमें जब आपको रखा जाता है तो भी इतने लंबे टाइम के लिए 90 दिन बहुत होते हैं वहाँ पे, आपको समझ में आता है। तो
5: सियाचिन में जो पोस्टिंग होती है उसके लिए क्या कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, किस तरह से जवान सिलेक्ट होते हैं या उनको किस तरह से वहाँ के लिए किस तरह से चुना जाता है?
4: देखिए इन्फेंट्री बटालियंस का तो रूटीन होता है, मतलब टेन्योर होता है।
5: अच्छा।
4: जब बटालियंस जा रही होती हैं तो जिस रेजिमेंट की वो बटालियन होती है, जैसे सपोज मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ, तो मेरी अगर हमारे एक बटालियन जा रही है तो उसमें वॉलंटियर करके जा सकते हैं।
5: अच्छा।
4: जो है उसी तरह से बाकी भी जो है, इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स हो गए, आर्टिलरीज हो गए, तो उनकी वहाँ पे पोस्टिंग्स आती हैं।
5: अच्छा।
4: एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉलेंटियर ऑल्सो,
5: आप भी चुन सकते हैं,
4: आप चुन सकते हैं जाने के लिए। ठीक है। एंड बहुत लोग हैं जो वॉलेंटियर करके जाते हैं वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। इतने कष्ट के बावजूद जो है उस चैलेंज को उठाना का एक और रहता है, हौसला रहता है।
5: भारतीय सैनिकों की पहचान है।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मस्ट से कि दिस प्लेस इट एक्चुअली मतलब गिव्स यू अ मेजर चैलेंज इन योर सर्विस। ठीक है। मोर देन 1000 soldiers had lost their lives in glacier. ठीक है। This one of the highest casualty rates. अभी तक जो है इतने मतलब officer JCO जवान शहीद हुए हैं इस धरती पे जो है सियाचिन में। और इसी कारण जो है बहुत सारे जो मतलब सोल्जर्स हैं, हमने जैसे बाना सिंह साहब का जिक्र किया था, परमवीर चक्रा जिनको मिला है, और भी बहुत सारे जो है ऑफिसर्स हैं, जेसीओ सुवास हैं, जिनको गैलेंट्री एक्शन के लिए जो सम्मानित किया गया है, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो शहीद हुए हैं और शहीद होने के बाद उनको जो है सम्मान मिला है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ का सियाचिन जैसी जगह का, इट शोकेसेस द प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, सिंसियरिटी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है।
5: बिल्कुल सर।
4: एंड यहाँ लड़के हमने पूरी दुनिया को जिता दिया था कि इस लोकेशन पे, इस हाइट में, इस एडवर्स कंडीशन में भी जो देश है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
5: देश सर्वोपरि है।
4: देश सर्वोपरि। फॉर अ सोल्जर द कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवर।
5: तो श्रोताओ, ऑपरेशन मेघदूत ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए इस बात का सबूत है कि जब बात इस देश की मिट्टी की आती है तो हमारी सेना का हर सैनिक कुदरत के सबसे भयानक रूप से भी टकराने का दम रखता है। ये जीत हथियारों की नहीं, हमारे जवानों के फौलादी हौसलों की है, जिसे दुनिया की कोई भी ठंड जमा नहीं सकती। इसके साथ ही सर, आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने आज स्टूडियो में आने के लिए समय निकाला, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू पूर्वा जी। एंड जय हिंद श्रोताओं।
5: जय हिंद सर। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते। 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान। इसके अंतर्गत सुनिए दीपक नेमा और भगवती सक्सेना की चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, एयरोस्पेस का क्या अर्थ है, हाल किस तरह से अनुसंधान, डिजाइन और विकास के माध्यम से भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाता है, एवियोनिक्स और MRO जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का क्या महत्व है और देश के युवा किस तरह विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं।
2: लेकिन हाल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण से आगे बढ़कर हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों, विमान इंजनों, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और भविष्य की स्वदेशी तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: तो आइए श्रोताओं, देश के संस्थान की इस विशेष श्रृंखला विज्ञान से तकनीक की ओर, इसमें अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि हाल किस तरह भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दादू और रुचि का रोचक संवाद।
3: अरे रुचि बेटा, कहाँ हो?
4: आई दादू।
3: अरे इधर आओ बेटा, जल्दी आओ।
4: आई दादू।
3: अरे अरे अरे, धीमे धीमे धीमे बेटा, आराम से आओ, कहीं गिर मत जाना।
4: चिंता मत करिए दादू, मैं बिल्कुल संभल कर आई हूँ और ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने वादा किया था ना कि अगली बातचीत में मैं आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी।
3: अरे वाह बेटा, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू बेटा।
4: अब मुझे जल्दी से बताइए कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं?
3: बेटा अभी तो दिन शुरू हुआ है। आज अखबार में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के बारे में कुछ रोचक लेख छपा है बेटा।
4: अच्छा?
3: हाँ
4: दादू, मुझे याद है आपने पिछली बार हाल के बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में बताया था। आज ये बताइए कि आज क्या क्या नया जानने को मिलने वाला है दादू की प्यारी रुचि बिटिया को।
3: देखो बेटा, आज हम जानेंगे हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
4: अंतरिक्ष कार्यक्रम? यानी हाल और इसरो का भी कोई संबंध है दादाजी?
3: हाँ बिटिया, और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम इसरो की सफलताओं की बात करते हैं तो उसके पीछे कई भारतीय संस्थानों का योगदान होता है, जिनमें हाल भी शामिल है।
4: वो कैसे दादू?
3: हाल रॉकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग, ईंधन टैंक, यांत्रिक अवयव और विशेष तकनीकी उपकरण तैयार करता है बेटा। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।
4: वाह, यानी हाल का काम केवल आकाश तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी पहुंच अंतरिक्ष तक भी है।
3: बिल्कुल बेटा, जब कोई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित होता है या कोई प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है तब उसके पीछे अनेक वैज्ञानिक संस्थानों की सामूहिक मेहनत होती है बेटा। हाल भी उस सफलता का एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है।
4: ये तो बहुत ही कमाल की बात है दादू।
3: निश्चित रूप से कमाल की बात है बेटा, यही तो भारत की ताकत है। देश के विभिन्न संस्थान मिलकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं।
4: दादू, आपने बताया था कि हाल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता है, तो वो किस तरह से भला?
3: अरे जरा ठहरो बिटिया, सब कुछ बताऊंगा, आराम से, थोड़ा क्रम से चलते हैं बेटा।
4: अच्छा ठीक है दादू।
3: तुम बहुत नटखट हो बेटा। सुनो बेटा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना तुम्हें कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन। क्या बताया था?
4: कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन।
3: हाँ, जैसे हमारे शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है वैसे ही इंजन विमान को शक्ति प्रदान करता है। यदि इंजन ना हो तो विमान उड़ ही नहीं सकता।
4: आपने बताया था कि हाल इंजन भी बनाता है।
2: हाँ बिटिया, हाल विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है बेटा। इसके साथ ही स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: यानी केवल विमान ही नहीं बल्कि उन्हें उड़ाने वाली शक्ति भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: यही तो स्वदेशी तकनीक की असली पहचान है। जब किसी देश के पास अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान और अपनी निर्माण क्षमता होती है तब वो दूसरे देशों पर कम निर्भर रहता है।
4: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
4: क्या हाल भविष्य के लिए भी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
2: बिल्कुल कर रहा है बेटा, और यही तो सबसे रोमांचक बात है। हाल कई अत्याधुनिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है बेटा।
4: जैसे?
2: जैसे सबसे पहले है AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भविष्य की पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा बेटा, जिसमें आधुनिक स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी।
4: क्या सच में दादू, स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी? इसका क्या मतलब है
2: बिटिया? स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिससे विमान दुश्मन के रडार पर बहुत कम दिखाई देता है या उसे पहचानना कठिन हो जाता है। विमान की विशेष बनावट, सामग्री और डिजाइन उसकी रडार पहचान को कम करने में मदद करते हैं।
4: यानी दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
2: हाँ बेटा, इससे विमान अपनी जिम्मेदारियाँ अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निभा सकता है।
4: और ये उन्नत प्रणालियाँ क्या होती हैं दादाजी?
2: उन्नत प्रणालियों में आधुनिक रडार, संचार उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर पायलट को बेहतर जानकारी देते हैं और विमान की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं।
4: यानी भविष्य के विमान केवल तेजी नहीं होंगे बल्कि अधिक बुद्धिमान और सुरक्षित भी होंगे।
2: बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। आधुनिक तकनीक का उद्देश्य केवल गति बढ़ाना नहीं है बल्कि सुरक्षा, सटीकता और कार्य कुशलता को भी बेहतर बनाना होता है।
4: वाओ दादाजी, कितना कूल है ये तो। और बताइए ना दादू उसके बारे में।
2: बेटा इसके अलावा हाल का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर परियोजना पर भी बेहतरीन कार्य चल रहा है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो विमान वाहक पोतों से उड़ान भर सकेगा और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा।
4: और IMRH ये क्या है दादू?
2: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। क्या बोला मैंने?
4: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
2: ये भविष्य का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर होगा बेटा।
4: अच्छा।
2: जिसका उपयोग सैनिकों के परिवहन, राहत एवं बचाव कार्यों और विशेष अभियानों में किया जा सकेगा।
4: मतलब दादाजी, हाल केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी कर रहा है।
2: बिल्कुल सही, शाबाश, सही समझा तुमने बेटा।
4: दादू, आजकल हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात सुनते हैं, इसमें हाल की क्या भूमिका है?
2: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा इसकी। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल भारत में वस्तुएं बनाना नहीं होता बल्कि अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान, अपने वैज्ञानिक और अपनी निर्माण क्षमता को विकसित करना भी होता है।
4: यानी जब हम अपने विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और रक्षा प्रणालियां स्वयं बनाएंगे तब हम और अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे दादाजी।
2: हाँ, हाल इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है बेटा, और यही कारण है कि आज ये संस्था भारत की तकनीक क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
4: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की एक अहम संस्था है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाल ने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और यही कारण है कि ये संस्था भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है।
4: और अब तो मुझे हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में और भी जानने की उत्सुकता हो रही है दादाजी।
2: तो फिर तैयार हो जाओ बिटिया, क्योंकि अब हम जानेंगे हाल की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयां दी बेटा।
4: ये तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे क्या बताने वाले हैं दादाजी।
2: सच में?
4: यार।
2: अच्छा मेरी चुटकी जादूगर, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे।
4: अब आप ये बताने वाले हैं कि हमारे स्वदेशी विमानों की स्टोरीज क्या होने वाली है।
2: हाँ। वाह, तुम तो सच में मन की बातें जानने लगी हो बेटा।
4: आखिर पोती किसकी हूँ। अच्छा चलिए दादाजी अब बताइए भी।
2: हाँ बेटा सुनो, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव, सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र और अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की प्रेरणादायक कहानी।
4: वाह दादू, उन भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।
2: बिल्कुल बिटिया, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगी कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के पीछे वर्षों का अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के धैर्य और कई रातों की नींदों का अनुभव छिपा हुआ है।
4: दादू, क्या हर विमान की अपनी अलग विशेषता होती है?
2: हाँ बिटिया, बिल्कुल होती है। कोई विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, तो कोई कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए और सैनिकों को ले जाने के लिए। इसी तरह हर हेलीकॉप्टर भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
4: यानी हाल ने समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए विमान और हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं।
2: हाँ बेटा, ये केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
4: तो दादाजी, सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं?
2: हम शुरुआत करेंगे HF-24 मरुत के बारे में बेटा। ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था।
4: और क्या वह सपना सच हुआ?
2: हाँ बेटा, अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने HF-24 मरुत का निर्माण किया। ये केवल एक विमान नहीं था बेटा, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि भारत भी उन्नत एयरोस्पेस तकनीक विकसित कर सकता है।
4: यानी मरुत ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
2: बिल्कुल बनाया, मरुत ने भारत में विमान निर्माण की मजबूत नींव रखी बेटा।
4: और दादाजी, तेजस के बारे में मैं अक्सर समाचारों में सुनती हूँ।
2: तेजस भारत का आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और आधुनिक युद्ध क्षमताएं हैं।
4: तो क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है दादाजी?
2: तेजस भारत की स्वदेशी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विकास में देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों का योगदान रहा है।
4: तो दादाजी, तेजस केवल एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अगर ध्रुव के बारे में बात करें तो ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है बेटा।
4: दादू, और क्या खास बात है ध्रुव की?
2: ध्रुव का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और नागरिक सेवाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा।
4: कौन कौन से कार्य दादू?
2: सैनिकों का परिवहन, राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेटा।
4: यानी एक ही हेलीकॉप्टर कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
2: यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बेटा। ध्रुव शक्ति और सुरक्षा का संगम है।
4: और रुद्र?
2: रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियां और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं।
4: तो ये केवल उड़ान भरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा अभियानों के लिए भी उपयोगी है।
2: बिल्कुल है बेटा। ये कठिन परिस्थितियों में भी सेना को प्रभावी सहायता प्रदान कर सकता है।
4: और प्रचंड का नाम तो दादाजी बहुत प्रभावशाली लगता है मुझे।
2: जैसा कि नाम से प्रचंड है क्योंकि बेटा इसकी क्षमताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। प्रचंड एक आधुनिक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के लिए विकसित किया गया है।
4: यानी जहाँ सामान्य हेलीकॉप्टरों को कठिनाई हो सकती है वहाँ भी ये काम कर सकता है।
2: हाँ, यही कारण है कि ये भारतीय सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
4: दादू, क्या हाल के बनाए विमान विदेशों में भी जाते हैं?
2: हाँ बेटा, हाल के हेलीकॉप्टर और विमान कई देशों तक पहुँचे हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता का विश्व में सम्मान बढ़ा है।
4: दादू, इसका मतलब इन सभी उपलब्धियों का आत्मनिर्भर भारत से भी सीधा संबंध है।
2: बिल्कुल है बेटा। जब कोई देश अपने विमान, हेलीकॉप्टर, तकनीक और रक्षा प्रणालियां स्वयं विकसित करता है ना, तब उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।
4: यानी हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: स्वदेशी तकनीक न केवल सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि विज्ञान, उद्योग, रोजगार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है बेटा।
4: दादाजी, अब समझ में आया कि हाल की उपलब्धियाँ केवल तकनीकी उपलब्धियाँ नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियाँ भी है।
2: सही कहा बेटा तुमने। इन उपलब्धियों के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों और कर्मचारियों का समर्पण छिपा हुआ है। क्योंकि जब सपनों को विज्ञान का साथ मिलता है तब जन्म लेती हैं नई उड़ानें।
4: और जब देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर मिलकर काम करते हैं ना, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है।
2: सही कहा बेटा तुमने। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
4: दादू, जब मैं तेजस या प्रचंड जैसे विमानों के बारे में सुनती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि इन्हें बनाना कितना कठिन होता होगा।
2: बहुत कठिन है बेटा। किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का निर्माण केवल कारखाने में पुर्जे जोड़ देने भर का काम नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और सुधार की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है।
4: यानी पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि विमान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद इंजीनियर उसकी संरचना, वजन, गति, सुरक्षा और तकनीकी प्रणालियों का डिजाइन तैयार करते हैं।
4: और फिर से उड़ाया जाता होगा?
2: नहीं, उससे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रयोगशाला परीक्षण और जमीन पर कई तरह की जांच की जाती है बेटा। जब सभी परीक्षण सफल हो जाते हैं तभी परीक्षण उड़ान की अनुमति मिलती है।
4: मतलब एक सफल उड़ान के पीछे वर्षों की तपस्या होती है।
2: हाँ बेटा, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तब हमें केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और समर्पण होता है।
4: दादू, इन स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों से हमारी सेनाओं को क्या लाभ होता है?
2: बहुत लाभ होता है बेटा। सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता। यदि हमारे पास अपनी तकनीक और अपने विमान हैं, तो आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार और उन्नयन भी हम स्वयं कर सकते हैं।
4: यानी हमें हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: हाँ बेटा, इसके साथ ही देश में अनुसंधान, उद्योग, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
4: दादू, क्या आज के विद्यार्थी भी भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं?
2: क्यों नहीं बन सकते? यदि विद्यार्थी विज्ञान, गणित और तकनीक में रुचि रखें, जिज्ञासु बने रहें और निरंतर सीखते रहें, तो वे भी भविष्य में हाल DRDO, इसरो या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं।
4: यानी आज की पढ़ाई कल देश की शक्ति बन सकती है दादाजी।
2: बिल्कुल, आज की कक्षा में बैठा कोई छात्र भविष्य में नया विमान डिजाइन कर सकता है बेटा, नया इंजन विकसित कर सकता है या ऐसी तकनीक बना सकता है जो देश की सुरक्षा को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे।
4: वाह, अब तो मुझे भी लगने लगा है दादू कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है।
2: और यही तो हमारी इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है बेटा।
4: हाँ दादू, आज हमने जाना कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि यह विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
2: तो चलो रुचि बेटा, इसी बात पर मिलकर कहें जय हिंद। अच्छा, एक कप चाय और ले आओ।
4: अरे दादू, आप भी ना, बार बार चाय, रुकिए लेकर आती हूँ।
2: थैंक यू बेटा।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की, जो है आकाश की शक्ति का निर्माण। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक निमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक नई कहानी इतिहास के एक नए पन्ने की तरह एक नई शुरुआत लेकर मैं तारीख
1: और मैं इतिहास आज फिर से आजाद हिंद के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: एक अध्याय जिसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने रोज लिखा। कुछ उस अध्याय के पन्ने बने, कुछ चंद लाइनें तो कुछ चंद आखर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन चंद अक्षरों पर ध्यान ही न दें। वो भी इस महान अध्याय के चंद ही सही, लेकिन महान अक्षर हैं।
1: हाँ तारी, लेकिन आम जनता को कहाँ मालूम होता है इन नायकों के बारे में? उन्हें 1857 के समय घटी हर एक घटना के बारे में मालूम तो नहीं है ना?
0: हाँ, लेकिन इतिहास कुछ भी हो, मैं तो जब भी 1857 की क्रांति के बारे में कुछ भी सोचती हूँ तो कोई ना कोई घटना सामने आ ही जाती है। और फिर अगर जरा सी भी उस घटना पर जमी धूल को साफ किया जाए तो सामने निकल आता है कोई ना कोई नायक।
1: लेकिन अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो 1857 की क्रांति का नाम सुनते ही अगर कोई नायक हमारे जहन में सबसे पहले उभरता है तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
0: लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही तो इस युद्ध में नहीं थी, एक विशाल जनसमूह था उनके साथ। कई और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ उन्हें मिलता रहा।
1: बिल्कुल, 1857 की क्रांति के काल में भारतवर्ष के कई विद्रोही दल के मुखियाओं ने अपने दल बल के साथ रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था।

0: और उन्हीं विद्रोही दल के मुखियाओं में से एक थे ग्वालियर के निकट के इलाके भांडेर के रहने वाले उमराव सिंह सूबेदार।
1: तारीख जिस वक्त की ये बात है उस समय भांडेर वनों के बीचों बीच स्थित था और सिंधिया शासन के अधीन आता था। ये इलाका इस बात के लिए भी कुख्यात था कि इस इलाके में अनेक पवार विद्रोही घूमा करते थे और ये आने जाने वालों को अक्सर लूटा करते थे। उमराव सिंह सूबेदार के दल में ऐसे कई विद्रोही शामिल थे।
0: बिल्कुल, भांडेर में तो अनेक विद्रोहियों का जमावड़ा रहता था और ब्रिटिश सरकार और सिंधिया साम्राज्य भी उन पे काबू पाने में असमर्थ था। इन विद्रोहियों पर काबू पाने की कई कोशिशें भी हुईं, जैसे 1857 के सितंबर माह में एक बार कैप्टन आसबर्न ब्रिटिश सेना को लेकर इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए बढ़ा था। उसने इन विद्रोहियों का दमन करने में बहुत कुछ सफलता तो पाई, लेकिन विद्रोहियों ने अपना साहस बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो डटे रहे और आसबर्न के चले जाने के बाद उस इलाके का हाल वैसा का वैसा हो गया।
1: उस वक्त की राजनीतिक हालत तो कुछ यूं थी कि ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से झांसी का राज्य तो निकल गया था, क्योंकि उस वक्त वहां झांसी की रानी का आधिपत्य बना हुआ था। ये रानी लक्ष्मीबाई का ही प्रभुत्व था कि सिंधिया साम्राज्य के इलाकों से कई विद्रोही उनका साथ देने के लिए आने लगे। इसी कड़ी का सिलसिला बनते हुए भांडेर के कई विद्रोही झांसी की रानी की तरफ हो गए। उनका प्रमुख नेता उमराव सिंह सूबेदार था। ऐसी हालत में झांसी की रानी को भांडेर पर अक्टूबर में आक्रमण करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और रानी ने उमराव सिंह सूबेदार के सहयोग से भांडेर परगना पर कब्जा कर लिया।
0: जनवरी फरवरी 1858 में उमराव सिंह सूबेदार की विद्रोही गतिविधियां इतनी अधिक बढ़ गई थीं कि भांडेर के कमाविजदार ने सिंधिया सरकार को लिखा कि उमराव सिंह सूबेदार से मुकाबला करने हेतु उसे पर्याप्त सैनिक उपलब्ध कराए जाएं। कमाविजदार ये भी महसूस कर रहा था कि उसके साथी भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों से परेशान होकर वो ग्वालियर चला गया।
1: अब उमराव सिंह सूबेदार ने भांडेर को लूटा तथा उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने वहां के साहूकारों से 50,000 रुपए वसूल किए। इस घटना में उमराव सिंह सूबेदार के कुछ ही साथियों ने साथ दिया था, जबकि उसका साथ देने वालों में पवार बड़ी संख्या में शामिल थे।
0: 8 फरवरी 1858 को अपने 500 बागी सैनिकों के साथ उमराव सिंह सूबेदार ने भांडेर पर गोलीबारी की। भांडेर के कमाविजदार ने सूबेदार का डटकर मुकाबला किया, जिससे उमराव सिंह सूबेदार को पीछे हटना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद उमराव सिंह सूबेदार ने पुनः हमला किया और इस दफा कमाविजदार को पीछे हटना पड़ा। इन मुठभेड़ों में दोनों ओर से 5-5 सैनिक शहीद हुए थे।
1: मार्च 1858 के अंतिम दिनों में सर ह्यूरोज झांसी पर घेरा डाले हुए था तथा ब्रिटिश फोर्स झांसी के किले पर निरंतर गोले बरसा रही थी। यूं ही उमराव सिंह सूबेदार को इसकी खबर लगी, वो भांडेर के विद्रोहियों को लेकर झांसी को मुक्त कराने के लिए भांडेर से प्रस्थान कर गए। करीबन 2000 सशस्त्र विद्रोही उमराव सिंह सूबेदार के नेतृत्व में चल दिए। दुर्भाग्य से झांसी की रानी की इस युद्ध में पराजय हो गई और उन्हें झांसी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

0: झांसी की लड़ाई में ब्रिटिश फोर्स से पराजित होने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 अप्रैल की रात को किले से बाहर निकल गईं। ब्रिटिश फोर्स तो रानी के पीछे शिकारी कुत्तों की तरह पड़ी हुई थी। लेफ्टिनेंट डॉकर अपनी फोर्स के साथ रानी का पीछा कर रहा था। 5 अप्रैल को रानी अपने 5 सवारों सहित भांडेर जा पहुंची।
1: उमराव सिंह सूबेदार चूंकि बहुत पहले ही झांसी से निकल चुके थे, इसलिए वे वहां पहले से मौजूद थे। इसलिए भांडेर पहुंचने पर सूबेदार ने रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत किया और कई दिनों से सफर कर रही रानी को आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था करवाई। परंतु रानी वहां कुछ देर रुक पाती उससे पहले ही उमराव सिंह सूबेदार के दूतों ने खबर दी कि ब्रिटिश फोर्स रानी का पीछा करते हुए भांडेर आ पहुंची है। रानी सूबेदार का इतनी ही देर का आतिथ्य लेकर वहां से कूच कर गई।
0: झांसी के पतन के बाद 4 अप्रैल 1858 को करीब 4000 विद्रोही चिरगांव होते हुए कालपी की ओर जाते हुए देखे गए। चिरगांव पहुंचने पर इन विद्रोहियों का ब्रिटिश फोर्स से मुकाबला हो गया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश फोर्स की फायरिंग के आगे विद्रोही ज्यादा देर टिक नहीं सके तथा उन्हें परिस्थितिवश भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भांडेर का रास्ता पकड़ा, जहां पेशवा की सेना अन्य स्थानों से आकर एकत्रित हो रही थी। उसी समय तात्या टोपे भी अपने 4000 सैनिकों के साथ बेतवा नदी को कदोरघाट से पार करते हुए 5 अप्रैल की दोपहर को भांडेर पहुंच गए।
1: इस समय उमराव सिंह सूबेदार अपने सभी साथियों सहित तात्या टोपे से मिल गए। इस समय उमराव सिंह सूबेदार के पास 2000 आदमी तथा 5 तोपें थीं। भांडेर के रसद खाने के प्रभारी के साथ भी 2000 आदमी आ मिले। इस समय झांसी के युद्ध में परास्त नरवर के राजा मानसिंह भी भांडेर ही आ पहुंचे। इन सभी विद्रोहियों के साथ 5 अप्रैल की प्रातः उमराव सिंह सूबेदार ने भी कालपी के लिए प्रस्थान कर दिया।
0: इस घटना के पश्चात उमराव सिंह सूबेदार के जितने भी सशस्त्र विद्रोही भांडेर में थे, वे सभी अपने नेता के साथ कालपी के लिए चल दिए और उसके साथ ही सभी पवार ठाकुर भी अपने अपने गांवों के लिए चल दिए और इस तरह भांडेर भी विद्रोहियों से खाली हो गया।
1: उस समय ब्रिटिश फोर्स तात्या टोपे को ढूंढते हुए जब भांडेर पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि विद्रोही तो कब का भांडेर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद उमराव सिंह सूबेदार का क्या हुआ, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद वो शख्स इतिहास के जितने भी पन्नों पर रहा, सब पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, PWD में काम करते, PWD में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए तेरे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए,

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं परिक्रमा के अंतर्गत नगर से जुड़ी कुछ खास खबरें। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति और शारीरिक तंदुरुस्ती पाना चुनौती बन गया है। ऐसे में योग भारतीय संस्कृति का वो अनमोल उपहार है जिसमें सेहत का राज छिपा होता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने वाला विज्ञान है। योग निराश मन की आशा है, योग जीवन की परिभाषा है। हर दिन योग अपनाएं, तन मन को स्वस्थ बनाएं। आइए अपने जीवन में योग अपनाएं, रोग भगाएं। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर आज भोपाल में 150 से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें करीब 10,000 लोग योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा की आवाज है। ये हमारे जीवन में प्रेम, शांति, आनंद और संवेदनशीलता का संचार करता है। संगीत वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। आज 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व संगीत दिवस हमें संगीत की शक्ति को पहचानने, उसे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। आज विश्व संगीत और योग दिवस के अवसर पर प्रख्यात सितार वादक स्मिता नागदेव और उनकी शिष्याएं विशेष कार्यक्रम नाद योग प्रस्तुत करेंगी। ये आयोजन फादर्स डे को समर्पित रहेगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत को ध्यान और मानसिक शांति का प्रभावी माध्यम माना जाता है। रागों का समयानुसार गायन वादन मन, मस्तिष्क और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान समय में बढ़ते तनाव और मानसिक विकारों के बीच संगीत लोगों को सुकून और आत्मिक शांति देने का सशक्त माध्यम बन रहा है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के स्थापना रंग महोत्सव का समापन शनिवार को रविन्द्र भवन में नाटक गुड़िया की शादी के मंचन के साथ हुआ। हर बच्चे को एक ऐसे सुपर हीरो की जरूरत होती है जो दुनिया के फैसलों से नहीं उसकी मुस्कान से अपना सम्मान जोड़ता है। पिता उनके लिए वही सुपर हीरो हैं। हर पिता अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाना चाहता है। कभी ढाल बनकर समाज के सामने खड़ा हो जाता है, कभी बच्चे के सपनों पर दुनिया के तानों से ज्यादा भरोसा करता है, कभी सख्ती के पीछे छिपे प्यार से उन्हें गिरकर दोबारा उठना सिखाता है। पिता का प्रेम

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों,
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम काव्य कुंजन। इसके अंतर्गत सुनिए

0: सर्ग के भाग 1, 2, 3 और 4 का काव्य पाठ और उसकी संवेदनशील चर्चा सुनी, जहां गुरु शिष्य का विश्वास, तप की कठोरता और युग की विडंबनाएं हमारे सामने खुलकर आईं। और अब उसी भावधारा को आगे बढ़ाते हुए आइए श्रोताओं, हम प्रवेश करते हैं इस एपिसोड में द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 की ओर, जहाँ कथा और अधिक तीव्र होती है, धैर्य अपनी सीमा पर पहुंचता है। आइए श्रोताओं, अब हम द्वितीय सर्ग के भाग 5 में प्रवेश करते हैं। यह वह क्षण है जहां अंतर्मन की हलचल स्पष्ट होने लगती है और विचार कर्म का रूप लेने को आतुर है। अब सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 5, जहां गुरु, शिष्य और समय एक साथ परीक्षा में खड़े दिखाई देते हैं, जहां कर्ण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ आकार लेने लगता है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5 से काव्य पाठ।
1: सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि, कोविद, विज्ञान विशारद, कलाकार, पंडित, ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करें, दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का, यह मदांत अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता, वीरता और तपस्या का बल भी।
0: आज भी समय वही प्रश्न दोहराता है, जब शक्ति बिना विवेक के बढ़ती है तो ज्ञान मौन क्यों हो जाता है। दिनकर की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि संकट तलवार का नहीं, निर्णय का होता है। कर्ण की तरह मनुष्य आज भी इस मोड़ पर खड़ा है कि वह सुविधा की चुप्पी चुने या सत्य का भार। इतिहास शोर से नहीं, ऐसे ही मौन निर्णयों से दिशा पाता है। श्रोताओं, शस्त्र उठाना सामर्थ्य का नहीं, संस्कार का प्रमाण है, क्योंकि वही शक्ति पूज्य होती है जिसमें कठोरता तप से बंधी हो और वीरता करुणा से आलोकित। आइए सुनते हैं अब रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 6, जहां आशीष के स्वर में छिपा है एक प्रश्न और वीर कर्ण अपने ही अंतर से मौन संवाद करता दिखाई देता है।
1: वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। विप्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल, जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को क्षत्रिय कर जाओगे, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं, गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा, पर हाय मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे, एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे।
0: श्रोताओं, आज भी समाज कौशल नहीं जाति पूछता है, योग्यता से पहले वंश का प्रमाण मांगता है, और जब कोई कर्ण अपनी पहचान छुपाकर आगे बढ़ता है तो दोष उसके छल का नहीं व्यवस्था की दीवारों का होता है। यह वही समय है जहां सम्मान भी अपराध बन जाता है। दिनकर जी कर्ण के जीवन संघर्ष और उसकी विवशताओं को जिस तीव्र संवेदना से रेखांकित करते हैं, वह केवल एक महाकाव्य नायक का चित्र नहीं रचती, वह आज के संघर्षशील युवा का प्रतिबिंब बन जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि समय की सीमाएं तोड़कर उन युवाओं की ओर से बोल रहे हों जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर दिन स्वयं से लड़ते हैं और फिर भी असुरक्षा की छाया में जीते हैं।
1: श्रोताओं, युवा चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, जिसे शिक्षा की प्यास लगती है, उसके हिस्से केवल ज्ञान नहीं आता, संघर्ष भी आता है, अपमान भी आता है, प्रश्नों से भरी निगाहें, बंद दरवाजे और बार बार ठुकराया जाना, ये सब उसी प्यास की कीमत है। कर्ण की तरह ही आज का युवा भी पूछता है, क्या योग्यता अपने आप में पर्याप्त नहीं है, और यही वो बिंदु है जहां दिनकर का कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं रह जाता, वो आज के उस युवक का स्वर बन जाता है जो भीतर से दृढ़ है पर व्यवस्था से पराजित है, जो शस्त्र नहीं प्रमाण उठाए खड़ा है और फिर भी बार बार अपनी पहचान साबित करने को विवश है, जैसे कर्ण अपने मेहमानों कह रहे हों।
2: हाँ, मैंने असत्य कहा और ये बोझ मेरी आत्मा जानती है, पर यदि उस घड़ी मैंने सत्य का उच्चारण किया होता तो क्या ये विद्या मेरी होती, क्या तब ये धनुष मेरे हाथों में आता, या एक लव्य की भांति मेरी उंगली ही दक्षिणा बनकर कट जाती, जब जन्म ही मेरी राह का सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया था, तब सत्य भी मेरे लिए बंद द्वार था। इस छल में यदि पाप है तो वो मेरी आकांक्षा का नहीं मेरी लाचारी का है, क्योंकि मैं केवल विद्या चाहता था, सम्मान नहीं, और उस चाह में मेरा हृदय आज भी मौन होकर रो रहा है।
0: कर्ण केवल अतीत की कथा नहीं, वह आज के समय का सवाल है कि क्या प्रतिभा की कोई जाति होती है, या हर युग में उसे अपमान की अग्नि से होकर ही गुजरना पड़ता है। श्रोताओं, आपने अभी महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर काव्य कृति रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का भाग छठा सुना। यह केवल काव्य पाठ नहीं था, बल्कि कर्ण की आत्मा की एक और परत से साक्षात्कार था। आइए इस रश्मिरथी पर पुनः आरूढ़ हो, क्योंकि कथा अब केवल सुनाई नहीं देगी, वह भीतर तक धधकेगी। आइए श्रोताओं सुनते हैं इस महान काव्य गाथा दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग से भाग सात का काव्य पाठ। अब हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहां प्रश्न केवल कर्ण से नहीं समूचे समाज से पूछा जा रहा है। यहां जन्म और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े हैं और भाग्य अपनी कठोर लकीरों से मनुष्य की पीड़ा लिख रहा है। जब गुणों पर जाति का आवरण डाल दिया जाए तब वीरता भी विवश हो उठती है। और इसी गहन चिंतन की निस्तब्धता में जब कर्ण अचल बैठा है, गुरु का भार अपनी जांघ पर संभाले, भाग्य एक विष कीट बनकर उसकी देह ही नहीं उसके सत्य को भी कुतरने लगता है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग सात, जहां धैर्य, पीड़ा और पहचान की अग्नि एक साथ प्रज्वलित होती है।
1: हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती, वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारिया बनी तो बीज कहां जा सकता है? कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था।
0: श्रोताओं यह केवल एक कीट का दंश नहीं, यह उस व्यवस्था का दंश है जो जन्म के आधार पर मनुष्य का मूल्य तय करती है। कर्ण का रक्त केवल उसकी जांघ से नहीं बह रहा, वह उन प्रश्नों से टपक रहा है जिन्हें समाज सुनना ही नहीं चाहता। श्रोताओं दिनकर जी ने कर्ण की पीड़ा को जिस तरह से चित्रित किया है, उसकी विवशता को जिस तरह काव्य में पिरोया है, आत्मा मानो करुणा और रुदन से भर सी गई है, मानो कर्ण स्वयं से कह रहे हो।
2: क्या सचमुच मेरी नियति यही है कि मैं हर बार मौन की अग्नि में ही परखा जाऊं? जन्म से पहले ही मुझे आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और अब सत्य स्वयं मेरी धैर्य रेखा को रक्त से लिखना चाहता है। भीतर पीड़ा ज्वाला सी भड़क रही है, पर मैं हिल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी एक कपकपी गुरु के विश्वास को तोड़ देगी। हे सूर्यदेव, यदि यही मेरा तप है तो मुझे इतनी अटलता दो कि मैं इस वेदना को पी जाऊं, इतना धैर्य दो कि रक्त बहता रहे पर संकल्प ना बहे। मैं टूटना नहीं चाहता, चाहे भीतर हर रेशा करुणा में चीखता रहे, पर बाहर मेरा मौन ही मेरी मर्यादा बना रहे।
1: तो श्रोताओं अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8-9।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

अब मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

श्रोताओं, जब उगते सूर्य की सुनहरी किरणें धरती के आंगन में उजास बिखेरती हैं, जब मंद समीर प्रकृति के कानों में शांति का गीत गुनगुनाती है, तब मन सहज ही उस साधना की ओर मुड़ जाता है जो तन को स्वस्थ, मन को संतुलित और आत्मा को आलोक प्रदान करती है। वो साधना है योग। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को समग्रता में देखने की भारतीय दृष्टि है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ये वो मार्ग है जो बाहरी कोलाहल से भीतर की शांति तक हमें ले चलता है, बिखराव से एकाग्रता तक पहुंचाता है और सीमित व्यक्तित्व को असीम चेतना से जोड़ देता है। भारत की इस अमूल्य ज्ञान परंपरा ने सदियों से मानवता को स्वास्थ्य, संयम और संतुलन का संदेश दिया। इसी वैश्विक महत्ता को पहचानते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में योग को मानव कल्याण का सार्वभौमिक माध्यम बताया। उनके इस प्रस्ताव को विश्व समुदाय का अभूतपूर्व समर्थन मिला और सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। आज विश्व के कोने कोने में करोड़ों लोग योग को अपनाकर स्वस्थ और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें याद दिलाता है कि योग किसी एक देश, धर्म या समुदाय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये संपूर्ण मानवता के लिए स्वस्थ, सद्भावना और शांति का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि शरीर और मन का संतुलन ही जीवन की वास्तविक संपदा है। तो आइए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि इसे हम एक दिन का उत्सव नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी जीवनचर्या का अभिन्न अंग बनाएंगे। यानी योग एक दिन का विषय न हो, बल्कि साल के 365 दिन हम योग को अपनाएं। और इस बार की थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी वृद्धावस्था जो है वो स्वस्थ रहे, उसको स्वास्थ्य प्रदान करे योग। उसकी जो चुनौतियां हैं उसको योग के माध्यम से हम साधने की कोशिश करें, ये प्रयास है। तो आज के दिन की शुभकामनाएं आपको देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर योग को अपने जीवन में अपनाएंगे, शामिल करेंगे। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है, विश्व संगीत दिवस। संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी संतुलित करता है और संगीत एक से दूसरी संस्कृति तक पहुंचने का एक रास्ता भी बनता है। तो सद्भाव, भाईचारा और स्वास्थ्य, इन सारे मूल्यों को लेकर संगीत की जो परंपरा है वो आगे बढ़ती है। तो आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आपके लिए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम तराने आज़ादी के। इंतज़ार कीजिएगा बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती

0: और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो एक चौथाई तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहां भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी, शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना, 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं, कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले, जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा। परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला, मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती, अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई। राम दुलारी जोर से हंस पड़ी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है भाई, पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है, जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी, समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता, जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो, चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थिनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी, दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे, ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ, और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो रहा नहीं केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता, मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो, न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाहियां, 1 लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, 4-5 रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
1: तो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
0: हाँ, ये गलती तो हुई।
1: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और रामदुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
0: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हरेक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को ये हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, किराया लूँ ना लूँ, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूं भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी, बस मुझे पता था। पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसके चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है, अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने ये किया, उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था।
1: तो भाई मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या द्वेष अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और रामदुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
3: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
2: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
3: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
2: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
4: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी लग रही हूँ?
5: बिल्कुल
4: मस्त। अरे देख अंजू। हाय अंजू।
5: हाय। हाय अंकिता।
4: ये अंजू, वाओ यार, तेरा गोल्ड का पेंडेंट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना।
5: मैंने खरीद के दिया।
4: वाओ, शुद्ध सोना है ना ये?
5: बर्थडे के दिन लेके दिया था।
4: वाओ, पर अंजू एक बात बताओ, गोल्ड तो इस वक्त बहुत ही महंगा है ना?
5: बहुत महंगा है, इसलिए बस पेंडेंट लेके दिया।
4: हाँ, पूरा हार अगर मम्मी तेरे को गिफ्ट करती तो कुछ ज्यादा ही महंगा हो जाता।
5: बहुत ही ज्यादा।
4: और हाँ, लेकिन ये शुद्ध सोने का है तो इसको संभाल कर पहनना।
5: बिल्कुल।
4: है ना? अरे गुरुजी,
6: क्या हो रहा है भाई?
4: नमस्ते गुरुजी।
6: नमस्ते नमस्ते। सब लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह।
4: जी गुरुजी। ए अंकिता, तू मेरे पास में आके बैठना।
6: बातें मत कीजिए प्लीज।
4: जी जी।
6: अच्छा, ये सीट खाली क्यों है?
7: गुरुजी आज घनश्याम नहीं आया है।
6: क्यों घनश्याम क्यों नहीं आया?
7: गुरुजी वो अपने नाना जी के घर छत्तीसगढ़ गया है, वहाँ उसके मामा की शादी है। हाँ, उसके मामा।
6: हाँ, बच्चों
4: जी,
6: क्या तुम्हें पता है छत्तीसगढ़ का नाम भी एक महान ऋषि वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है?
4: नहीं गुरुजी, हमें तो नहीं पता।
7: पर वे कौन थे गुरुजी?
6: बच्चों, वे प्रसिद्ध रसायनज्ञ महर्षि नागार्जुन थे, जिनकी ख्याति एक कीमियागर के रूप में थी।
7: गुरुजी, ये कीमियागर क्या होते हैं?
6: बच्चों, कीमियागर प्राचीन काल में रसायन शास्त्रियों को कहा जाता था।
4: अच्छा?
6: उनके लिए कहा जाता था कि वे लौह पारा जस्ता जैसी धातुओं को सोने में बदलने की कला जानते थे।
4: अरे वाह गुरुजी।
6: अमृत की खोज में जुटे हैं या उन्होंने अमृत की खोज कर ली है। सच कहें तो कीमियागर समाज में काफी रहस्यमय व्यक्ति माने जाते थे, जिनके पास दैवी शक्तियां होती थी। लोग उन्हें भयमिश्रित श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे।
7: तो क्या महर्षि नागार्जुन के पास भी दैवीय शक्तियां थीं गुरुजी?
6: दैवीय शक्ति का तो पता नहीं, पर वे महान रसायनाचार्य थे। उन्हें भारत में कीमियागिरी अर्थात धातु कर्म का प्रवर्तक माना जाता है।
4: अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं था?
5: नहीं, हाँ, मेरे को तो नहीं पता।
6: और जानते हो बच्चों, उनका जन्म पूर्व मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईस्वी सन 78 में हुआ था। वे चांदी, सोना, टिन, तांबा आदि के शोधन, हीरे, मोती, धातुओं को घोलने, आसवन, द्रवण, ऊर्ध्वपातन तथा भर्जन क्रियाओं और पारे से संजीवनी बनाने में सिद्धहस्त थे। हाँ बच्चों, एक बात और, उनके अपने समय में उनके साथ ढेरों कहानियां जुड़ गई थी।
4: वो कौन सी गुरुजी?
6: उन्होंने रसायन संबंधी अनेक ग्रंथ जो लिखे थे।
7: गुरुजी, आज हमें महर्षि नागार्जुन के बारे में ही विस्तार से बताइए ना।
4: हाँ गुरुजी, बताइए ना।
6: हाँ हाँ, बताता हूँ। सबसे पहले शांत हो जाओ।
4: जी गुरुजी।
6: ठीक है, तो महर्षि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व की वानगी लेने के लिए आओ हम सभी महर्षि के श्री शैल स्थित आश्रम चलते हैं।
4: हाँ गुरुजी, चलिए चलिए।

0: महर्षि नागार्जुन को परम शिष्य शातवाहन का सादर प्रणाम।
1: आयुष्मान, यशस्वी हूँ। वत्स, कैसे हो?
0: आपकी कृपा से बिल्कुल स्वस्थ एवं सकुशल हूँ। बहुत समय हो गया सो आपके दर्शनों को चलाया।
1: अच्छा किया तुमने, देखा प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।
0: हाँ देखा गुरुदेव, आपकी कल्पना अद्भुत है। चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं योग तंत्र की ऐसी समन्वित प्रयोगशाला अन्यत्र कहीं नहीं होगी।
1: जीवन की सुरक्षित और दीर्घायु के लिए वनस्पति, रसायन, चिकित्सा और योग का समन्वित प्रयोग ही तो आवश्यक होता है। ये सुभूति, विमुक्त सेन और कमलशील हैं। ये तीनों अपनी लेखनी और वाणी से बौद्ध धर्म संवेदना का प्रचार करते हैं और ये महाराज शातवाहन।
2: परम प्रतापी नरेश शातवाहन को कौन नहीं जानता? उज्जैन के ज्ञात करणी सम्राट, जिनका शासन उज्जैन केंद्र में उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में कौशल और पाटलिपुत्र तक है। महाराज को हमारा सादर प्रणाम।
0: आयुष्मान हो।
1: सुभूति का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए ये लोग उपचार के लिए यहां आए हुए। इनसे हमारी भेंट पाटलिपुत्र के बौद्ध विहार में हुई थी। वत्स, तुम्हें तो ज्ञात ही है हमारा जन्म विदर्भ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता पिता ने किशोर वय में ही वेद, वेदांग, दर्शन, व्याकरण में पारंगत करा दिया। 18 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा की लालसा हमें पाटलिपुत्र खींच ली आई। उस समय पाटलिपुत्र विद्या के क्षेत्र में काशी से कम नहीं था।
0: हाँ गुरुदेव, उस समय वहां अश्वघोष, आर्यदेव, वसबंधु, असंग और दिंगनाग जैसे धुरंधर विद्वानों का जमावड़ा भी तो था।
1: हाँ, उन्हीं के सानिध्य में हमने पाटलिपुत्र की विद्या प्रभा को पूर्ण किया। कठिन तप, योग साधना, निरंतर अध्ययन अध्यापन का अभ्यास हमें वहीं मिला। सम्राट भर्तृहरि महाकवि भी थे और ऋषि अश्वघोष महामात्य होने के साथ ही महान दार्शनिक भी थे। इन्हीं के सहयोग से आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित पाटलिपुत्र की विज्ञान शालाओं के रसायन विभाग में काम करने का हमें अवसर मिला। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र, शस्त्र विद्या, रसायन शास्त्र और आयुर्वेद के आचार्य रह चुके थे। उन्होंने ही वहां रसायन शास्त्र की प्रयोगशालाएं स्थापित की, जिनकी उपलब्धियां जन सामान्य के लिए तो उपयोगी थीं, पर शत्रु विजय के कूट युद्ध में भी काम में लाई जाती थी।
2: वहीं आचार्य श्री ने शून्यवाद के प्रवर्तक, दार्शनिक रसेश्वर तंत्र के महान रसायन शास्त्री, 84 महासिद्धों में अलौकिक महासिद्ध सरहप्पा के नाम से विख्यात रहस्यमय तंत्र सिद्ध भारत का औषधीय प्रयोग करने वाले प्रथम आचार्य, आयुर्वेद की औषधि, शल्य एवं रसायन विद्या में निष्णात कुशल चिकित्सक, एक साथ सब कुछ के रूप में ख्याति अर्जित की। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध की करुणा से प्रेरित होकर बौद्ध मत को स्वीकार कर बोधिसत्व नागार्जुन बन गए।
0: वत्स, आचार्य श्री के संबंध में तुम एक विशेषण भूल गए हो।
2: वो क्या?
0: वो है इन सबसे बढ़कर उनका प्रचंड देशभक्त होना।
2: जी जी जी,
0: संभवतः तुम्हें पता होगा उस समय कुणाल वंशी शकराज कनिष्क पेशावर यानी पुरुषपुर को राजधानी बनाकर बलोचिस्तान अर्थात बलख और अफगानिस्तान से लेकर पंजाब और मथुरा तक शासन करता था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। सम्राट को हार माननी पड़ी। कनिष्क ने सम्राट को प्राणदान देने के बदले 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी, पर महामात्य अश्वघोष और बोधिसत्व नागार्जुन से प्रभावित होने के कारण केवल भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र महामात्य अश्वघोष को लेकर पेशावर चला गया।
2: ये आचार्य श्री का देश प्रेम ही था महाराज, कि जब कनिष्क आचार्य श्री के अनुसंधान और कीर्ति से अभिभूत होकर उनसे साथ चलने की प्रार्थना करने आचार्य श्री के गंगा किनारे की कुटिया पर पहुंचा, आचार्य श्री ने अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना स्वीकार नहीं किया। राज सुख भी उन्हें ललचा नहीं पाया।
0: और जब हम अपनी सेना के साथ आचार्य श्री की शरण में आए तो गुरुदेव ने अपनी वैज्ञानिक शक्ति से हमारी सेना को शक्ति संपन्न कर हमें प्रेरित किया कि कनिष्क को देश की धरती से पलायन करने को विवश कर दें और भारत भूमि को आक्रांताओं की दासता से मुक्त करा सके। पेशावर पर हमारी सेना के आक्रमण के फलस्वरूप कनिष्क मारा गया, शकों को भारत छोड़ना पड़ा।
2: हमें ज्ञात है, उसी समय तो महाराज आपको सातवाहन विक्रमादित्य की पदवी से अलंकृत किया गया था। एक बात और महाराज, यह आचार्य श्री की महानता ही थी कि आपने बुद्ध मत में आई विकृतियों और स्वेच्छाचार के विरुद्ध विद्रोह किया। आपने ही उसे सनातन धर्मी देशकाल और पात्र के अनुसार आचरण का महायान मार्ग बताया, इसलिए आचार्य श्री सबके आदरणीय बोधिसत्व कहलाने लगे। सुहल लेखा और माध्यमिक कारिका ग्रंथ आचार्य ने उसी समय लिखे थे। आपकी विद्वता और वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा से प्रभावित हो ढेरों शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य श्री की सेवा में आते रहते थे।
0: पर इस शिष्य पर तो गुरुदेव की अपार कृपा रही है। मेरे अनुरोध का मान रखते हुए आचार्य श्री ने पाटलिपुत्र में गंगा का किनारा छोड़कर यहां कृष्णा नदी के तट पर आकर बसना स्वीकार किया और अपनी प्रयोगशाला स्थापित की।
1: सच तो ये है वत्स, यद्यपि हमने भगवान बुद्ध की करुणा से प्रेरित होकर बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था, पर हमारी आस्था भगवान सदाशिव में यथावत थी। यही कारण था कि जब हम आंध्र प्रदेश आए तो हमने गुंटूर जिले के श्री शैलम के निकट धान्य कटक में अपना आश्रम और अनुसंधान शाला बनाने का निर्णय किया, क्योंकि श्री शैल पर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक विशिष्ट ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन युगों से स्थापित है।
0: जी सुभूति
2: जी,
0: तुम लोगों ने प्रकृति की सुरम्य परिवेश में बनी प्रयोगशाला देखी होगी। कल कल करती कृष्णा नदी के किनारे पर यह बृहत प्रयोगशाला श्री शैल के शिखरों पर कुछ इस तरह से सजी है कि इसके विविध भवन श्री शैल के शिखर सूत्रों पर मणिमाला की तरह पिरोए लगते हैं।
2: आप ठीक कहते हैं महाराज।
1: सुभूति
2: जी,
1: वत्स तुम चर्चा में निमग्न होकर औषधि की अगली खुराक लेना भूल रहे हो।
2: क्षमा करें आचार्य श्री, हम अभी लिए लेते हैं। उफ, काफी कड़वी औषधि है ये।
1: वत्स, मनुष्य का शरीर हड्डियों में लिपटे हुए मांस और चमड़े का पिंड भर नहीं है। इस शरीर में अनेक रहस्यों का समावेश है। मनुष्य शरीर में नाड़ी संस्थान, अंतःस्रावी ग्रंथियां, चक्र स्थान, उपत्तिकाएं, नाड़ी गुच्छक ऐसे अवयव हैं जिन्हें चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। इन्हीं सब के माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा धाराएं, वनस्पतियों की औषधियों के माध्यम से प्राणों का प्रकाश प्रवाह इस शरीर को जीवंत, निरोगी एवं सुखी बनाए रखता है।
0: आचार्य श्री, आपकी इन विलक्षण बातों को मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस ऊर्जा प्रवाह के शरीर में प्रवेश की रीति नीति क्या है?
1: वत्स, वस्तुतः यह स्थूल शरीर एवं लौकिक जीवन चित्त की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए चित्त की अवस्था के अनुरूप ही नाड़ी संस्थान, चक्र और उपत्तिकाएं आदि सक्रिय रहते हैं। और कभी प्रारब्धवश यदि चित्त के किसी दोषपूर्ण संस्कार के कारण ये प्रकाश एवं ऊर्जा द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं तो शरीर रोगी हो जाता है। ऐसे रोग दुर्घटना एवं जीवन क्रम में अन्य व्यतिक्रम प्रारब्धवश होते हैं। साथ ही खान पान, रहन सहन एवं आहार विहार दोषपूर्ण होने पर भी ये व्यतिक्रम होता है। इस व्यतिक्रम को खान पान तथा रहन सहन में सुधार करके तथा सामान्य औषधियों से ठीक कर लिया जाता है।
0: पर गुरुदेव, प्रारब्ध जन्य रोगों का निदान और चिकित्सा तो कठिन बताई जाती है।
1: राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, इसीलिए आयुर्वेद को ज्योतिष एवं तंत्र के साथ अभिन्न रीति से जोड़ा गया है। ये तीनों मिलकर संपूर्ण और सफल चिकित्सा विज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए वत्स, आयुर्वेद ऐसा महान विज्ञान है जिसमें जड़ विज्ञान और चेतन विज्ञान के तत्व एक साथ गुथे हुए।
0: वाह
2: गुरुदेव, ज्योतिर्विज्ञान और आयुर्वेद का क्या संबंध है?
1: वत्स, ज्योतिर्विज्ञान आयुर्वेद के निदान पंचक को पूर्ण करता है। ये बताता है कि शरीर में जो रोग लक्षण हैं, वे सब केवल खान पान और रहन सहन के व्यतिक्रम एवं प्रकृति विपर्यय के कारण है, या फिर इसके पीछे परिभ्रमणशील कार्य चक्र एवं उससे उत्प्रेरित संस्कार कर्म बीज कारण है, जिन्होंने शरीर में अव्यवस्थित ऊर्जा प्रवाह एवं प्राण प्रवाह को धारण ग्रहण करने वाले केंद्रों को अवरुद्ध कर रखा है।
2: गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मेरी बीमारी?
1: वत्स, सुभूति, मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूं। तुम्हें अपनी बीमारी की चिंता है
2: जी?
1: कहीं किसी जटिल रोग या ग्रह योग ने तो तुम्हें नहीं घेर लिया है, है ना?
2: अवश्य।
1: वत्स, तुम अपने लिए चिंतित मत हो, तुम्हारा रोग तो केवल जीवन क्रम में व्यतिक्रम के कारण है। सामान्य पथ्य, परहेज एवं साधारण औषधियों से तुम पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे।
0: आचार्य श्री, तंत्र का आयुर्वेद चिकित्सा में क्या स्थान है?
1: इसे तुम यूं समझ सकते हो वत्स
0: जी,
1: तंत्र की क्रियाएं मुख्य रूप से प्रारब्ध जन्य रोगों को हटाने मिटाने के लिए प्रयुक्त होती हैं।
0: जी,
1: इन क्रियाओं से शरीर के ऊर्जा और प्राण को धारण ग्रहण करने वाले केंद्रों में आए हुए अवरोधों को हटाया जाता है, जिससे कि ऊर्जा एवं प्राण का अबाध प्रवाह शरीर में प्रवाहित हो सके।
0: तो गुरुदेव, तंत्र की क्रियाओं से औषधियों पर भी कोई प्रभाव होता है?
1: बिल्कुल, तुम्हारी जिज्ञासा सही है। तंत्र की क्रियाओं से औषधियों को विशेष ऊर्जावान और प्राणवान बनाया जा सकता है। तंत्र की क्रियाओं के संयोग से औषधियां इतनी प्राणवान हो सकती हैं कि केवल एक खुराक में रोगी सदा के लिए भरा चंगा हो जाए।
2: महाराज, गुरुदेव ने दर्शन, तंत्र, योग एवं आयुर्वेद पर दर्जनों ग्रंथ लिखे हैं।
0: हाँ, हमें ज्ञात है, इनमें से अनेक ग्रंथ तो हमारे देखे हुए हैं, विशेष रूप से आदि शास्त्र, लौह शास्त्र और आरोग्य मंजरी। आदि शास्त्र में जीवोत्पत्ति, जीवन का विकास, प्रजनन विज्ञान तथा जीवों को विस्तृत वर्गीकरण दिया गया है, जबकि लौह शास्त्र में लोहे और अन्य धातुओं को स्वर्ण में बदलने की विधियों का सविस्तार वर्णन है। आरोग्य मंजरी चिकित्सा ग्रंथ है, इसमें मनुष्य के रोगों को पहचानने और जांच पड़ताल के अनेक नुस्खे दिए गए हैं।
2: महाराज, संभवतः आपको ज्ञात हो, आचार्य श्री ने सुश्रुत संहिता को एकदम नया रूप दिया है।
0: नया रूप दिया है, अर्थात?
1: वत्स, तुम्हें तो ज्ञात होगा, पहले सिकंदर, फिर यूनानी, शक और हूणों के आक्रमणों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालयों और विज्ञान शालाओं को काफी हानि पहुंचाई। चरक संहिता, अग्निवेश संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे बहुमूल्य आयुर्वेद ग्रंथ एकदम खंडित हो गए थे। हमने सुश्रुत संहिता का पुनर्योजन, परिवर्धन कर भारत के महान शल्य चिकित्सक के ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। इसकी विशेष बात यह है कि हमने आचार्य सुश्रुत का शल्य शास्त्र पूरी तरह नई दृष्टि से लिखा है, साथ ही इसमें एक नया उत्तर तंत्र नामक अध्याय भी जोड़ा है।
0: आचार्य, इस नवीन ग्रंथ का आपने नाम क्या रखा है?
1: नाम क्या देना था, सुश्रुत संहिता नाम तो विश्व प्रसिद्ध है।
0: गुरुदेव, यह तो आपकी महानता ही है कि आपने पुस्तक का नए रूप में पुनर्लेखन करने के बाद भी पुस्तक का नाम वही रहने दिया और लेखक के रूप में अपना नाम भी नहीं जोड़ा।
1: वत्स, इसमें महानता जैसी क्या बात है, अपितु इसका पुनर्लेखन तो महर्षि सुश्रुत के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है।
0: गुरुदेव, प्रसंगवश याद आया, आप रस रत्नाकर लिख रहे थे, उसका कार्य कहां तक हो पाया?
1: वत्स, वो ग्रंथ पूर्ण हो चुका है। मेरे प्रधान शिष्य ऋषि आर्यदेव इसका पुनर्पाठ कर रहे हैं। वत्स
0: जी,
1: पारे धातु की खोज तो काफी पहले हो चुकी थी। हमने इसके गुणों, विशेषतः औषधि के रूप में पारे की रोग निवारक शक्ति पर अनेक अनुसंधान किए। रस रत्नाकर में हमने शरीर को लौह के समान पुष्ट और दीर्घायु बनने के सभी प्रयोग दिए।
0: गुरुदेव, क्या वे प्रयोग भी दिए हैं जिनके द्वारा आपने हमारी सेना को इतना शक्ति संपन्न बना दिया कि उसने महाशक्तिशाली कनिष्क को देश से बाहर भगाया?
1: हाँ वत्स, इसके साथ ही हमने रत्नमाला और रसायन गुटिका के वे प्रयोग भी इस ग्रंथ में दिए हैं जो हमने तुम्हें परम बलशाली तेज

0: अकूत वृद्धि हो जाती है। आप पारे को स्वर्ण में बदल देने की भी क्षमता रखते हैं महाराज।
1: हाँ, रस रत्नाकर में ही हमने कहा है, नागार्जुनेन संदष्टो रसश्च रसका भूभौ श्रेष्ठो सिद्ध रसो ख्यातो देह लौह करी परम रसश्च रस कश्चोभो येनाग्नि सहनौ कृतो देह लौहमयी सिद्धिरदासी तस्य संगयः। वत्स, हमने पारद और खरपर दोनों ही धातुओं के प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग अद्भुत प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।
0: सच तो ये है वत्स कि ये युग रसेंद्र युग है।
1: हमने सभी धातु तत्वों की क्रिया पारद से कराकर यौगिक बनाए हैं। पारद सभी धातुओं को अपने में घोल लेती है, इसीलिए हमने इसे रसेंद्र कहा है। और यह भी सत्य है कि पारद में घोलने के बाद इन धातुओं के गुणों और प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।
2: जी आचार्य श्री, इधर यह भी कहा जा रहा है कि आपने देवताओं के अमृत पीकर अमर बनने की कथा को भी अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध कर दिखाया है।
1: राजन, जन्म और मृत्यु तो विधि के द्वारा निश्चित की हुई है, पर यह भी सत्य है कि प्राचीन काल में प्रचुर प्रयोग में आने वाले पारद यौगिक ऋषियों को कई सौ वर्षों तक युवा और सक्रिय बनाए रखते थे। वत्स, हमने पांच प्रकार के पारद खोज निकाले हैं। इनमें से लाल आभा वाला देवीय पारद का प्रयोग बुढ़ापे और मृत्यु से लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसी तरह स्लेटी रंग का पारद भी दुर्लभ हो गया है, इसे भी हमने ढूंढ निकाला है। ये दोनों चमत्कारी पारद हमारे संग्रह में मौजूद हैं। हमने दृढ़ता के साथ सहस्रों वर्षों के जीवन को मान्यता प्रदान की। आचार्यों के सम्मेलन में हमने इसे तर्कों से स्थापित भी किया था। उसी की चर्चा संभवतः तुमने सुनी हो।
0: गुरुदेव, क्या यह संभव है?
1: वत्स, तुम इस चिंता में क्यों लज रहे हो? सातवाहन नरेश से पूछो, हमने इन्हें रत्नमाला और रसायन गुटिका के लघु प्रयोग दिए थे, इनका क्या प्रभाव महसूस किया है इन्होंने?
2: इन प्रयोगों के उपयोग के बाद निश्चय ही मेरे बल, जिजीविषा और बुद्धि में चमत्कारी परिवर्तन आया है। मैं स्वयं को अत्यंत जीवंत महसूस करने लगा हूं।
1: इन प्रयोगों की झलक तुम्हें हमारे चित्तनंद पटीयसी ग्रंथ में देखने को मिल जाएगी। हमें प्रयोगशाला में कुछ काम है, आओ तुम लोग भी हमारे साथ चलो, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा वहां क्या क्या प्रयोग किए जा रहे हैं।
2: जी, ये अवसर हम निश्चय ही खोना नहीं चाहेंगे गुरुदेव।
0: चलिए
2: प्रस्थान करें।
1: आइए आइए, बस आइए,
0: चलिए चलिए।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व की एक झलक। बच्चों, रस रत्नाकर में महर्षि नागार्जुन ने पारे के योगिक यानी रस बनाने की विधियों के अतिरिक्त देश में धातु कर्म और कीमियागिरी के स्तर पर सर्वेक्षण भी दिया है।
1: अच्छा?
0: हाँ, पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और उसे शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं।
2: और धातुओं को स्वर्ण में बदलने की बात गुरुजी?
0: रस रत्नाकर में विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अन्य धातुएं सोने में कैसे बदल सकती हैं। हाँ बच्चों, यदि सोना ना भी बने तो रसामय विषमन द्वारा ऐसी धातुएं बनाई जा सकती हैं जिनकी चमक सोने सी यानी पीली होती है।
1: ऐसा भी हो सकता है गुरुजी।
0: और हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने इस ग्रंथ में रसराज, महारस, उपरस, अधिरस आदि नामों से धातु खनिजों का वर्गीकरण भी दिया है।
2: पर गुरुजी, महर्षि नागार्जुन के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं?
1: हाँ गुरुजी, कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनके?
0: महर्षि नागार्जुन ने 98 ग्रंथों की रचना की।
1: 98?
0: हाँ, इनमें से केवल 12 ग्रंथ ही चीन में प्राप्त हुए हैं।
1: चीन में?
0: जो सभी इन ग्रंथों के चीनी अनुवाद हैं। और ये ग्रंथ हैं माध्यमिक कारिका, दशभूमि विभाषा शास्त्र, महाप्रज्ञा पारमिता सूत्र व्याख्या शास्त्र, उपाय कौशल यानी न्यायशास्त्र, प्रमाण कौशल, विग्रह व्यावर्तनी, चतुस्तव, युक्ति षष्ठिका, शून्यता सप्तति यानी शून्यवाद के प्रयोग, प्रतीत्व सपुत्पाद हृदय और महायान विंशिकम तथा सहलेख।
1: लेकिन गुरुजी, एक बात समझ में नहीं आई।
0: कौन सी बात?
2: ये ग्रंथ चीन कैसे पहुंच गए गुरुजी?
1: हाँ गुरुजी, बताइए ना।
0: हाँ बताता हूँ। कुछ तो प्रसिद्ध चीन यात्री वेनसांग द्वारा और शेष बौद्ध आचार्य कुमार जीव द्वारा।
1: अच्छा।
0: चीन में बौद्ध धर्म के अनुष्ठान के साथ उन्होंने महर्षि के 98 संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया।
1: अरे वाह।
0: फिर चीन, मिश्र, ईरान और यूनान के व्यापारियों द्वारा ये विद्या धीरे धीरे अनेकों देशों में पहुंच गई। बच्चों, नागार्जुन पूरे 102 वर्ष जीवित रहे।
1: अच्छा गुरुजी, 102 वर्ष?
0: हाँ, लेकिन इसके बावजूद प्रत्येक पल को उन्होंने जिया और पूरी तरह सक्रिय रहे। महर्षि नागार्जुन का तेजपुंज जीवन दीप ईस्वी सन 180 तक निरंतर आलोकित होता रहा।
1: अरे वाह।
0: और जिसका प्रकाश संपूर्ण भारत में ही नहीं, पश्चिम में मिश्र और यूनान तक, पूर्व में कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, इंडोनेशिया तक, उत्तर में चीन और दक्षिण में श्रीलंका तक पूरी शताब्दी फैलता रहा।
1: अरे वाह गुरुजी। गुरुजी एक बात कहूँ, आज आपने जो महर्षि नागार्जुन के बारे में हमें बताया वो बातें बहुत ही अच्छी थी और हमने उसको बहुत अच्छे से समझा भी।
3: जी गुरुजी।
0: ये लो भाई, हमारी बात भी समाप्त हो गई
1: जी।
0: और पीरियड के लिए घंटी भी बज गई।
1: हाँ गुरुजी।
0: हाँ तो बच्चों, अब ये सारी बातें अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना
1: जी गुरुजी,
0: और घर जाते वक्त गाड़ी संभल कर चलाइए
1: और हेलमेट लगा के जाएंगे।
0: यस, और एक गाड़ी पे दो से ज्यादा भी ना बैठें।
1: ठीक
0: है
1: जी। नमस्ते गुरुजी।
0: नमस्ते
3: गुरुजी।

0: साथियों, अब हमारे
1: सारी बातें अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना
2: जी गुरु जी,
1: और घर जाते वक्त गाड़ी संभल कर चलाइए
3: और हेलमेट लगा के जाएंगे।
1: यस, और एक गाड़ी पे दो से ज्यादा भी ना बैठें।
3: ठीक
1: है
3: जी। नमस्ते गुरु जी।
1: नमस्ते
3: गुरु जी।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर न आए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत भारती कार्यक्रम में हम संगीत की विभिन्न शैलियों को शामिल करते हैं, तो आज इस कार्यक्रम में हमने बिखेरे हैं रंग महाराष्ट्र की माटी के। जी हाँ, महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा में गाया जाने वाला अभंग लेकर हम उपस्थित हैं। अभंग विठल या विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले छंदों को कहते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए, वही अभंग कहलाए। तो आज भक्ति की उसी परंपरा का रसास्वादन कीजिए। भारत भारती कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है जयतीर्थ मेवुंडी का अभंग गायन।

अपनी आपने जो सुना वो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने पूरा महाराष्ट्र भर वो प्रचलित किया हुआ ये गाना है। अभी मैं गाऊंगा अकार उकार मकार, ये जो मेरा ही कंपोजिशन है, मैंने कुछ कंपोजिशन बनाने के लिए प्रयत्न किया है, मैं ये गाऊंगा।

ये लक्ष्मी बारम्मा जो गाना है ये वास्तव में लक्ष्मी का वर्णन है और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन हम सब करते हैं और शुक्रवार लक्ष्मी के दिन माना जाता है। तो वो कैसे आती है घर, मतलब घर लक्ष्मी को अगर स्थापन करने के लिए उनको कैसे बुलाना है, ये सब उस कन्नड़ में वर्णित है और इसको गाए हुए है पंडित भीमसेन जोशी जी ने। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।

0: श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जयतीर्थ मेवुंडी का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। भारत भारती के किसी अगले अंक में संगीत का कोई नया रंग लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। उम्मीद है आज दिन की सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल समय हो रहा है कि इस प्रसारण सभा में मैं आपसे विदा लूं, तो इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। आगे बहुत कुछ खास है आपके लिए हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में। इंतजार कीजिएगा बस जरा सा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अग्नि और छंद है उष्णिक।
4: पुरुत्वा दाश्वान वोचे रिरग्ने तवस्विदा तोदस्येव शरण आ महस्य। महान शक्तिशाली की शरण में आए हुए धन याचक सेवक के सदृश हम अग्निदेव के निमित्त आहुति प्रदान करते हुए स्तुतिगान करते हैं। व्यनीनस्य धनिनः प्रहोषे चिदररुषः कदाचन प्रजिगतो अदेवयोः। हे अग्निदेव, जो श्रद्धाहीन हैं, धन संपन्न होते हुए भी कृपण हैं तथा देवताओं के अनुशासन को नहीं मानते, ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों को आप अपनी कृपा दृष्टि से वंचित करें। स चंद्रो विप्र मर्त्यो महो व्राधन तमो दिवि प्रपेत्ते अग्ने वनुषः स्याम। हे ज्ञान संपन्न अग्निदेव, जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं वे आपकी तेजस्विता से दिव्य लोक के चंद्रमा के समान सबके लिए सुखदायक होते हैं। वे सबसे अधिक महानता युक्त होते हैं, अतएव हम सदैव आपके प्रति श्रद्धा भावना से ओतप्रोत रहें।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 150वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का

90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल 90.8

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आंध्र प्रदेश के कंदकुर्ती गांव में हेडगेवार परिवार रहता था। उसी परिवार के कुछ लोग महाराष्ट्र के नागपुर में आ गए। नागपुर में ही बलिराम हेडगेवार और उनकी पत्नी रेवती सुशीला के यहाँ 1 अप्रैल 1889 को गुड़ी पड़वा के दिन केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ। गुड़ी पड़वा का अर्थ है ध्वजारोहण करना। इसी दिन सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराते हैं और द्वारों पर तोरण आदि बांधकर उल्लास प्रदर्शित करते हैं। हजारों साल पहले इसी दिन लंका पर विजय के बाद भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश किया था और इसी दिन राजा शालिवाहन ने मिट्टी के घुड़सवारों में प्राण फूंककर उनके द्वारा आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। बचपन में माता रेवती बाई केशव को शिवाजी की देशभक्तिपूर्ण कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों का केशव के मन पर गहरा असर पड़ा। सन 1902 में भारत के कई शहरों में प्लेग फैला था, उससे नागपुर के लोग भी नहीं बच पाए। बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ उनका हाल पूछने नहीं जाता था, लेकिन केशव के माता पिता लोगों के घर घर जाकर उनका हाल पूछते। हालांकि उन्हें भी प्लेग का शिकार होना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केशव नागपुर में जिस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी दौरान एक दिन अंग्रेज निरीक्षक विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए। कक्षा में उनके आते ही केशव के कहने पर सभी छात्र एक साथ गाने

निरीक्षण का कार्य ठप हो गया। अधिकारी हेडमास्टर पर बरस पड़े। शिक्षकों ने लड़कों को मारा पीटा, डराया धमकाया, लेकिन किसी ने भी केशव का नाम नहीं लिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विद्यार्थी घर वापस चले गए, लेकिन बात छिपी नहीं रह सकी। केशव पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला गया। केशव ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन अपनी माँ को प्रणाम नहीं करने देता वो अन्यायी है। इस पर केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। इसके बाद केशव ने यवतमाल और पूना में पढ़ाई की। उनके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं, ऐसे में वे दूसरों से पुस्तकें मांग कर लाते थे। रात के एकांत में पढ़ते और सुबह लौटा देते। युवकों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाना ही उनका प्रमुख कार्य था। उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस के कार्यवाहक के नाते कार्य किया। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में उन्हें भोजन व्यवस्था का कार्य दिया गया था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन छिड़ा, तब उन्होंने उग्र भाषण दिए। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद केशव राव ने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके नवयुवकों को एकत्र किया और सन 1925 के विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की।

22 जून 1897 का दिन था। अंग्रेज महारानी विक्टोरिया राज के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में समारोह मना रहे थे। जिस स्कूल में केशव हेडगेवार पढ़ते थे वहां मिठाइयां बांटी गईं। सभी छात्र अंग्रेजों तथा रानी विक्टोरिया की स्तुति करने लगे। केशव से ये नहीं देखा गया, उन्होंने मिठाई को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। केशव के एक इशारे पर सभी छात्रों ने मिठाई फेंक दी। जब विवाह के संबंध के प्रस्ताव आए तो उन्होंने अपने चाचा जी को पत्र लिखकर कहा था, मैंने आजन्म देश सेवा का व्रत लिया है, मेरे जीवन में न निजी सुख के लिए जगह है और न निजी परिवार के लिए। देश की सेवा करते समय न जाने कितनी बार जेल जाना होगा, हो सकता है जान की बाजी भी लगानी पड़े, इसलिए मेरे लिए विवाह के बारे में न सोचें। सन 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध कानून तोड़ने का आंदोलन चला। इसी आंदोलन के अंतर्गत केशव राव ने यवतमाल जिले में जंगल सत्याग्रह किया, जिसके लिए उन्हें 9 महीने की जेल हुई। सतत काम करते रहने से केशव राव सन 1940 में बीमार हो गए और 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में। टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मज़ा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
3: मैम मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है, हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है। तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
3: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
3: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
3: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे
1: बड़े बच्चों में
3: तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
3: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं?
3: जी।
1: है ना, तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया?
3: जी।
1: ठीक है, पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
3: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी जब हमारी जो घर की सदस्य हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं दादी जी,
1: जी,
3: तो उनकी तबीयत खराब थी तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जबी से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
3: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
3: जी,
1: यही कहा था आपसे,
3: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
3: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
3: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं। और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया। और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे, भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर, कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
3: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
3: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
3: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
3: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो, जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो ये चीज़, वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है। वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है। और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं, तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
3: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
3: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है, क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ, अब हम टेंशन फ्री हो गए। और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की, धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये, हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आजादी है और ऐसी आजादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आजादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
4: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
4: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पे काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पे पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
1: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
4: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
1: जी।
4: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
1: अच्छा आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे, ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना? एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकल कर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
3: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते हैं तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
1: में तब्दील हो गई,
3: बड़े नशों में तब्दील हो गई और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो और अब हमारे बाद, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे, क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदि होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीजों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि खत्म दोनों तरफ ही होना था हमें, क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
1: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
3: जी,
1: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
3: जी,
1: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेल्यूसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुंच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियां होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से, और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है, लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
3: जी,
1: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
3: जी, बिल्कुल
1: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
3: जी,
1: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे हो, उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती, और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
4: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था, जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला, जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है, इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ, फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
1: कोई तो सुने, पहली बात कोई तो बात सुने,
4: बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास से देख ले तो कितने झगड़े होते हैं, और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है, एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं अब इसका असर उन पर

0: से सवाल करना चालू किया। वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
1: मेरा
0: पे
1: पैसा, मैं कुछ भी करूं।
0: मेरा पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 10th या 9th में थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे। इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका, तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे
1: भाई भी।
0: भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है,
1: हाँ।
0: खुद से फैसला लेने लगी है ज़्यादा। और ये होता ना कि ज़्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
1: हद में रहो।
0: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई। मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं, क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं
1: नहीं
0: करूँगी,
1: करूंगी।
0: मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
1: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदी हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पे पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहाँ कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा, और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना जी
0: एलेक्स
1: बिल्कुल
0: आ सकता है।
1: जी,
0: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
2: बाल सभा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओ, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद में मैं नूपुर शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वो विषय है योग और स्वास्थ्य का संबंध। श्रोताओं, आज के व्यस्त जीवन में तनाव, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक निष्क्रियता के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति बनकर हमारे सामने आता है। योग के इस खजाने से आज हम भी कुछ मोती चुनने की कोशिश करेंगे, और इस विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, जो योग, अध्यात्म और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेषज्ञ हैं। रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी।
2: नमस्कार।
1: याज्ञवल्क्य के स्मृति में कहा गया है कि अयम तु परमो धर्मो यत योगेनात्म दर्शनम, यानी जिस साधना से आत्मदर्शन और ब्रह्म साक्षात्कार होता है वही योग है। तो सामान्य भाषा में सबसे पहले हमारे श्रोताओं की इसी उत्सुकता का समाधान करें कि योग क्या है और ये सामान्य व्यायाम से किस प्रकार से अलग है।
2: सुंदर सवाल किया आपने। योग व्यायाम नहीं है
1: जी।
2: योग एक जीवन शैली है, या कह सकते हैं जीवन को समझने का एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसमें हम अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रखने की कोशिश में अपने आसपास के वातावरण की चिंता नहीं करता, और कई बार स्वास्थ्य का अर्थ हम शारीरिक तक ही समेट लेते हैं। लेकिन जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ न हों तब तक हम पूर्ण स्वस्थ नहीं होंगे। आपने याज्ञवल्क्य स्मृति का जो कोट किया है कि आत्मा का साक्षात्कार यानी ब्रह्म का साक्षात्कार, मनुष्य इस जगत का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अन्य जीवों की तरह सिर्फ देह तक सिमटा हुआ नहीं है
1: जी।
2: उसके अंदर विचार करने का कौशल है, वो मन के भी आगे विचार करता है कि ये जगत कैसे बना, इस सृष्टि का मुख्य आधार क्या है, जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के बीच कैसे समायोजन स्थापित किया जाए, या उन परिवर्तनों में अपने को कैसे अलिप्त रखते हुए हम अपने कर्तव्य कर्म का ठीक से निर्वहन करें। तो ऐसे में आत्म साक्षात्कार एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्म अनुशासित होता है, मतलब उसको बाहर के किसी डिसिप्लिन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती कि वो स्वयं को जानता है, और स्वयं को जानने का अर्थ हुआ कि वो जगत के समस्त विस्तार में अपने आप को देखता है। इसको बहुत सुंदर शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है जिसमें आदि योगी शिव अपनी शक्ति से कहते हैं कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं संग कर ही विरोध। इसका अर्थ ये हुआ कि आदमी के अंदर जो बैर भाव है वो समाप्त हो जाता है, और बैर भाव होता ही है दूसरों के साथ, तो ऐसे में आत्म साक्षात्कार के बिना निर्बैर की स्थिति नहीं आती, चाहे कितनी भी उसके लिए आप ज्ञान अर्जित कर लें। तो आत्म साक्षात्कार ही योग का परम लक्ष्य भी है कि आत्म साक्षात्कार से कैसे आप स्वयं को अनुशासित करें। इसीलिए योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र का जो प्रारंभ किया है अथ योगानुशासनम, आओ अब योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। तो निश्चित आपने सही कहा कि आत्म साक्षात्कार की विद्या है ये, और योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ जी योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं मन प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन को शांत और वश में रखने का उपाय ही योग है। जब मन शांत होता है तब आपको अपने चित्त में अपने आत्म स्वरूप का प्रतिबिंब दिखता है, यानी आप अपने आत्म स्वरूप से परिचित होते हैं।
1: यहाँ पर ही एक सवाल आता है मेरे मन में कि योग किस प्रकार से हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है।
2: सुंदर किया कहा आपने। जब प्रथम सूत्र उन्होंने ये कहा तो फिर उसके बाद दूसरा सूत्र कहते हैं, योग को परिभाषित करते हैं महर्षि पतंजलि, कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब चित्त की वृत्तियां क्या हैं? चित्त की वृत्तियां सामान्य तौर पर योग सूत्र की भाषा में बात करें तो वो कहते हैं कि दो तरह की वृत्तियां होती हैं, एक साधक वृत्तियां होती हैं, एक बाधक वृत्तियां होती हैं, और इन दो में उन्होंने पांच वृत्तियों की बात की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आपने कहा कि जब तक मनुष्य वृत्तियों के साथ है तब तक वो इन वृत्तियों को ही अपना रूप समझता है। वृत्ति सारूप्य मितरत्र, ये सूत्र है योग सूत्र में। तो अब वृत्तियों का जब निरोध होगा तब उसे आत्म साक्षात्कार होगा, तब उसे अपने स्वरूप का दर्शन होगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब इसमें कई लोग दृष्टा को समझ लेते हैं स्वरूप। दृष्टा का संबंध दृश्य से है। जब भी आप किसी दृश्य को देखते हैं तो दृश्य को देखने के नाते आप दृष्टा हो जाते हैं, दृश्य से पूर्व आप दृष्टा नहीं है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जब चित्त वृत्तियों का निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। यानी दृष्टा का स्वरूप जो है वो दृष्टा का नहीं है, दृष्टा तो दृश्य के संदर्भ में बन गया है। वो अगर विचार करें गहरे में तो दृश्य के अभाव में अर्थात वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद दृष्टा का स्वरूप क्या होगा? तो दृष्टा दृष्टा ही नहीं बचेगा, क्योंकि
1: योग यही कहता है कि बाहर नहीं अपने भीतर देखो,
2: अपने भीतर देखो, क्योंकि अच्छा आपके भीतर कोई दृश्य नहीं है। कई बार ऐसा भी भ्रामक धारणा बन जाती है लोगों की, जैसे दृश्य को देखने का आदति होने के नाते हम अपने अंदर भी किसी दृश्य की रचना करते हैं और उस दृश्य के दृष्टा हो जाते हैं, जबकि यहां पर दृश्य नहीं है, अंदर कोई दृश्य नहीं है, इसलिए दृष्टा भी नहीं है। यानी दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों की त्रिपुटी से मुक्त अवस्था जो होती है वो है आत्मा की अवस्था। तो इसीलिए आत्मा की अवस्था को आप कोई रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, इशारे हो सकते हैं। तो तभी वो आत्मदर्शन होगा जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, नहीं तो सामान्यतया हमें वृत्तियों में ही जीने की आदत है और हम किसी भी चीज को वृत्तियों में ही समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो शब्द की भाषा नहीं, रूप की भाषा समझता है। जैसे कोई भी शब्द जिस अर्थ के साथ आपके चित्त में अंकित होता है उस अर्थ का एक रूप होता है। जैसे आप सागर का नाम लीजिए तो सागर का नाम लेते ही एक चित्र बनता है,
1: दिमाग में चित्र
2: बनता। या कोई ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए हिंदी भाषी ना हो तो आप सागर कहें तो वो नहीं समझ, सागर के किनारे बैठ करके भी वो नहीं समझ पाएगा कि किस चीज की बात हो रही है, क्योंकि उसका चित्र उसके चित्त में नहीं बन रहा है। तो इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क चित्र की भाषा समझता है। इसीलिए कहते भी हैं हम लोग हैं कि ये जगत जो है नाम रूपात्मक है, कि नाम और रूप में इस जगत का ज्ञान होता है। आप विचार करके देखें कि कोई भी ज्ञान, अगर कोई नाम है उसका कोई रूप आपके चित्त में नहीं है तो ऐसे में उसका ज्ञान आपको नहीं होगा। तो ज्ञान के लिए ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों का होना आवश्यक है। और योग जो आपने कहा याज्ञवल्क्य की स्मृति में, महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को जानना, अपने आत्मस्वरूप को जानना योग है। और आत्मस्वरूप को जान तभी आप सकते हैं जब आपका मन शांत हो, आपके वश में हो।
1: तो हमारे यहाँ देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तक परंपरा से ही योग करते चले आ रहे हैं हजारों सालों से।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन 21 जून की तिथि को ही योग दिवस मनाने के लिए क्यों चुना गया, यहाँ पर ये सवाल मेरे मन में आता है। तो पहले इसका समाधान करें फिर हम आगे चलते हैं।
2: देखिए 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है।
1: जी।
2: सबसे बड़ा दिन होने का अर्थ ये हुआ कि सूर्य का अधिकतम उपस्थिति होती है यहाँ। ठीक है, आप देखें ज्ञान को प्रकाश का भी संज्ञा दिया गया है और इस जगत के जीवन का आधार सूर्य है, सविता है, वेदों में उनकी उपासना भी है। अब ऐसे में उन्होंने 21 जून का चुनाव इसलिए किया होगा कि जो सूर्य देवता है, जो जगत के जीवन के आधार हैं, ऐसे ही योग भी जीवन का आधार है। तो वो सूर्य के सबसे अधिक समय तक दिखाई देने के नाते 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। और इसकी शुरुआत हुई 21 जून 2015 से, शायद यहीं से प्रारंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाया जाना। और जो पहला इनका थीम था वो था सद्भाव और शांति के लिए योग, कि दुनिया में सद्भाव हो। अब सद्भाव का मतलब एक ऐसा भाव जो सद से जुड़ा हो,
1: जैसा कि आपने बताया कि वैर भाव को मिटाना, हाँ, वही सद भाव हो गया।
2: और जगत में कोई भी नहीं है जो बैर भाव के साथ जीना पसंद करता हो। बैर भी आदमी सद्भाव के अभाव में करता है, अगर देखा जाए तो। अगर उसके अंदर सद्भाव का विकास है तो बैर भाव अपने आप तिरोहित हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया कि ज्ञान के प्रकाश में आप अपने अविद्या के अंधकार को मिटाएं। योग विद्या है जहां पर अविद्या से जन्म लेने वाले जो क्लेश हैं, जिसमें अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये पांच पंच क्लेश होते हैं जो व्यक्ति को दुख देते हैं, और इन समस्त दुखों की जड़ जो है वो अविद्या है, जिसका निर्मूलन होता है योग विद्या से। तो इसलिए योग एक बहुत विस्तृत शब्द है जिसको अब सामान्य अर्थों में हम कहते हैं जुड़ना, जोड़ना, लेकिन जो जगत से जो जुड़ाव आपका होता है, एकात्मता का जो दर्शन होता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसको एकात्म मानव दर्शन नाम से एक दर्शन की बात की, कि एक ऐसी स्थिति मनुष्य की जहां एक ही आत्मा में उस पूरे जगत को वो देखे, तो ऐसे में ऐसा मनुष्य कभी जगत के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए मनुष्य की मनुष्यता का संबंध लोक कल्याण से भी है, कि ऐसा मानो जो लोक कल्याणकारी नहीं है वो मानवीय गुणों से वंचित है। उसके मनुष्य होने पर भी संदेह किया गया भारतीय ज्ञान परंपरा में। भारत के ऋषियों ने कहा, एषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, कि वो मनुष्य के रूप में एक पशु है जिसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, दान नहीं है। दान पूरी प्रकृति दे रही है, लेकिन मनुष्य सोचे कि मनुष्य प्रकृति को क्या दे रहा है। आज मनुष्य के देने की प्रकृति दूषित होने के नाते आज पूरा जगत एक संकट से गुजर रहा है।
1: तो हम ले रहे हैं, प्रकृति को दे नहीं रहे।
2: प्रकृति से जो हम ले रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, धरती को हमने क्या दिया? प्रदूषण दिया। वायु को हमने प्रदूषण दिया, नदियों को प्रदूषण दिया, वायुमंडल को हमने ग्लोबल वार्मिंग दी, जिसके लिए आज जैव विविधता के संकट से दुनिया जूझ रही है। तो इस तरीके से जो सद्भावना है, उस सद्भावना और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। और इस बार का जो 26 का थीम है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब इसमें योग और स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
2: अब स्वास्थ्य शब्द को देखें तो स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है। अब स्व को आप जानेंगे नहीं तो स्व में स्थित कैसे होंगे। अब जब आपने कहा कि आत्मदर्शन, तो आत्मदर्शन अगर देखें, इसकी दृष्टि से देखें, तो मनुष्य ही इस जगत का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन के तत्वों को जानता है और जगत के जीवन को भी जानता है कि जगत में अन्य जो जीव हैं उनके लिए क्या क्या उपयोगी है, या उनके जीवन में जो बीमारियां आ रही हैं वो किस कारण से आ रही हैं, वो उन जीवों को पता नहीं है लेकिन मनुष्य को पता है। लेकिन मनुष्य ने योग के साथ या योगानुशासन का पालन न करने के नाते, ये सारी जानकारी होने के बाद भी वो उन तमाम विकृतियों या तमाम विकारों के साथ अपने को खड़ा पाएगा अगर वो विचार पूर्वक देखे कि ये समस्त जो असंतुलन हुआ है उसके केंद्र में मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य को स्वास्थ्य को समझना चाहिए कि हम स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब पंच महाभूतों को स्वस्थ रखें। धरती को प्रदूषित करके आप अपने शरीर को पुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप खाएंगे वो धरती से मिलेगा। तो धरती को ही आपने अगर रासायनिक बना दिया तो आप उसके रूप में क्या खा रहे हैं, वो पेस्टिसाइड खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में आपके शरीर में जा रहा है। जिन दवाओं का आप आविष्कार करके आप सोचते हैं कि इससे हम प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन कर सकेंगे, शोषण कर सकेंगे, वो दवाएं किसी न किसी रूप में फूड चेन में आपके शरीर में भी आ रही हैं। और आज देख रहे हैं बीमारियों की क्या हालत है, कम उम्र में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी तमाम सारी बीमारियों का हब बना हुआ है भारत। क्यों? क्योंकि वो योग के साथ नहीं खड़ा है।
1: और मैं तो ये कहूंगी कि प्रकृति के साथ भी नहीं खड़ा है,
2: योग का मतलब
1: विरोध में ही काम कर रहा है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रकृति, योग का मतलब हुआ कि जुड़ना, कि प्रकृति से आप जुड़ें, प्रकृति को जानें, प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी आप अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोच पाएंगे और प्रकृति को भी स्वस्थ रख पाएंगे। इसलिए इसका एक संबंध सद्भाव से तो है ही। और जो आजकल जो एज है, जो विभिन्न एज में हैं लोग, तो आयु को दीर्घायु बनाने के लिए योग की महती भूमिका है, जिसमें मैं थोड़ा सा उद्धृत करना चाहूंगा महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, जिसमें वो कहते हैं यम पांच प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप देखें तो ये जो पांच यम हैं, एक प्रकार का निषेधात्मक अनुशासन है ये
3: जी।
2: जैसे अहिंसा मतलब हिंसा न करें, अस्तेय मतलब चोरी न करें, सत्य यानी असत्य को नहीं सत्य को जाने। तो जो आपने शुरू में याज्ञवल्क्य की स्मृति का जो जिक्र किया, सत्य क्या है? तो सत्य है आपकी चेतना का होना, आपकी आत्मा का होना, जिसकी वजह से शरीर के सारे अंग या सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं। तो जब उस चैतन्य की दृष्टिकोण से इस जगत में आप देखते हैं तो आपको अद्वैतता का बोध होता है, जिसको हम अद्वैत ज्ञान कहते हैं। अद्वैत ज्ञान का मतलब होता है जहां दूसरा कोई नहीं है, एक ऐसा ज्ञान जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, सी राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, कि पूरा जगत जो है उस राम मैं देखें, जिसको भारत ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा हमारा परिवार है। अब ये बात सिर्फ शब्दों तक नहीं है, ये बात आत्मदर्शन के बाद बोध में प्रकट हुई बात है, ये सूत्र के रूप में, क्योंकि हमने देखा कि हमारे जीवन में एक परस्पर तंत्रता है। जो एक स्वतंत्रता की बात करते हैं या मनुष्य सोचता है कि हम अलग थलग अपने जीवन को जी सकते हैं, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन के संरक्षण में विकास में पूरे प्रकृति का योगदान है।
3: इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी
2: कहा भी गया।
3: फिर ये बात सामने आती है कि योग केवल शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने का तरीका नहीं है हमारे लिए, इसे जीवन जीने की पद्धति इसीलिए कहा जाता है। तो आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य कौन कौन से प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं?
2: एक तो जो शारीरिक स्वास्थ्य की बात कही कि शरीर को शेप मिलता है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योग में स्ट्रेंथन के बहुत सारे एक्सरसाइज अभ्यास हैं, जिसमें हम एक तनाव देते हैं अपने शरीर में, तो जहां भी कहीं मांसपेशियां संकुचित हो रही हैं या ब्लड सर्कुलेशन किसी कारण से रुक रहा है, योगाभ्यास करते वक्त जब आप विभिन्न तरह के आसन करते हैं, पोश्चर्स लेते हैं, तो उस दौरान प्रॉपर उनका खिंचाव होता है और उनमें शक्ति आती है, स्टेमिना आता है। तो इस तरीके से शरीर तो शुद्ध होता ही है, शरीर की शुद्धि तो होना योग का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन जो शरीर से आपके सांसों पर आपका नियंत्रण होता है, क्योंकि जब भी आप आसन का अभ्यास करते हैं, हठ योग का आसन करते हैं, तो उस आसन के दौरान कुंभक लगता है। कुंभक का मतलब होता है प्राणायाम, योग की भाषा में हठ योग में प्राणायाम को कुंभक भी कहा गया। तो कुंभक जैसे आपकी सांस रुकती है, सांस आप अंतर कुंभक लगाएं या बहिर कुंभक लगाएं, आप जब आसन कर रहे होते हैं तो उस समय आप श्वास लेते नहीं हैं, श्वास रोक के रखते हैं, तो उस दौरान उस श्वास का जो प्रेशर है वो काफ़ी शक्ति देता है। तो इस तरीके से शरीर तो स्वस्थ होता है, शरीर को डिटॉक्स करने में योग की महती भूमिका है। और जैसे हम पोश्चर्स की बात करें कि हम जब बैठते हैं, चलते हैं, तो सामान्यतः हम अपने एक तरफ का अंग का उपयोग अधिक करते हैं और एक तरफ के अंगों का उपयोग कम कर पाते हैं। तो उससे आप देखेंगे कि जब आप अभ्यास करेंगे, आप अगर रेगुलर अभ्यासी नहीं हैं, तो आपको एक तरफ का अभ्यास करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि वो पोश्चर आपका प्रॉपर उपयोग में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, योग के जो विभिन्न आसन हैं वो आपके शरीर के जो ज्वाइंट्स हैं उनका पूरा संचालन करते हैं। जैसे आप सामान्य परिस्थितियों में हाथ पैर वैसे नहीं चलाते, जैसे हाँ, आप योग
3: के हाँ जिसको कहते हैं।
2: जी, पवन मुक्तासन, तो सब आसनों का एक अपना महत्व है। पवन मुक्तासन मतलब शरीर की दूषित वायु को बाहर निकालने का वो एक माध्यम है। तो इस तरीके से योग पूरे तरीके से आपके शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, लेकिन आपके मन को स्वस्थ रखने में योग की महती भूमिका है, क्योंकि शरीर और मन ये दोनों अलग अलग नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम जो 10 इंद्रियां मानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक इंद्रिय मन भी माना गया है, इसलिए एकादश इंद्रियों की बात की गई है। तो जो मन रूपी इंद्रिय है, जिसको आज भी विज्ञान अभी खोजने में असमर्थ है, ठीक है, तो ऐसे में उस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके लिए हमारे योगियों ने श्वासों के अभ्यास को बताया कि आप जो है श्वास का एक आयाम, श्वास को विस्तार दें। आज भी आप देखें जब तनाव या अवसाद में व्यक्ति होता है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत फायदा करती है, या फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास आप करें, जिसको अपोजिट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, या कार्डियक कोहेसिव एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे में आप देखें कि जब हम जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, हमारी 3 नाड़ियां मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो ऐसे में जो मन की नाड़ी है उसको कहते हैं हम लोग चंद्र नाड़ी, और जो शरीर की नाड़ी है जिससे शरीर संतुलित होता है उसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। और चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी संतुलित होने पर जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। तो उसके लिए आपको कुंभक का अभ्यास करना पड़ता है कि जो सामान्य लोगों के श्वास लेने की दर है, एक योगी के श्वास लेने की दर ऐसी नहीं होगी। तो मन को वायु से माना गया है कि मन का जो देवता है वो चंद्रमा है, तो इसलिए जो बाई नोस्ट्रिल है उसको, जिसको हम लोग इड़ा कहते हैं, तो इड़ा से आप क्या करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, और पिंगला से आप अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, और जब अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं तो इन दोनों नाड़ियों को प्रॉपर खोलते हैं, जिसको हम लोग नाड़ी शोधन भी कहते हैं एक प्रकार से। तो जब ये दोनों नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो शरीर और मन का संतुलन बनता है, और वो संतुलन आपके लिए बहुत ही आनंददायक होता है। नहीं तो सामान्यतः आदमी कई बार मन से थका होता है और शरीर से सक्रिय होता है, कई बार शरीर से सक्रिय है मन से हारा हुआ है।
3: ठीक है, होता है कई लोग मन से ही फैसले लेते हैं, कई लोग दिमाग से ही फैसले लेते हैं, जी। और जब दोनों का संतुलन होता है, यानी सुषुम्ना काम कर रही होती है,
2: बिल्कुल,
3: तब हम सही फैसला,
2: निर्णायक स्थिति में आप तभी पहुंचते हैं जब आपका अपने भावनाओं पर नियंत्रण हो। क्योंकि कहा जाता है कि भावनात्मक स्थिरता के बिना अगर आप कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला कभी भी शुद्ध नहीं होगा, वो न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए भावनात्मक स्थिरता चाहिए किसी भी निर्णय की स्थिति में जाने के लिए। तो जब भी आप किसी भावना तिरेक में हो, जैसे आपको क्रोध हो, आसक्ति हो, ईर्ष्या हो, ये सब एक भावनात्मक उद्वेग है, मनोविज्ञान की भाषा में संवेगात्मक ये प्रवाह है।
3: इसीलिए तो कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में आप
2: गहरी सांस लें या पानी देते हैं पीने को, कि वो लूप टूटे, वो ब्रेक हो, जो परंपरा जो चल रही है, क्योंकि आप एक लूप में फंस गए हैं और उसी प्रवाह में हम लोग निर्णय करते हैं तो वो निर्णय गलत होता है। अक्सर मन की जो प्रकृति है वो राग द्वेषात्मक है। मन राग किसे करता है, महर्षि पतंजलि ने क्लेशों की जब बात की है, जैसे आपने स्वास्थ्य शब्द किया है, तो स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि आदमी के जीवन में दुख ना हो। इसको भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर कहलाते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं गीता में, कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्मित चेतसा। इसका अर्थ हुआ कि दुख के संयोग से जो रहित अवस्था है वो योग है, उस योग का अभ्यास करना चाहिए। तो देखें तो दुख से आत्यंतिक मुक्ति जो है वो योग की स्थिति है, और स्वास्थ्य जो है वो एक दुख की स्थिति है, जिसमें चाहे आपको मानसिक दुख हो, जो बीमारी कहते हैं हम लोग कि शरीर में कोई बीमारी आती है तो हम दुखी महसूस करते हैं, या कष्ट महसूस होता है, मन में कोई तकलीफ हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख से जो मुक्ति दिलाए, दुख से जो वियोग कराए, उस विद्या का नाम योग विद्या है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि स्वास्थ्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपके योग का अनुशासन आपसे पालन हो रहा हो किसी न किसी रूप में, तभी आप स्वस्थ हैं, तभी आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को अभिप्राप्त करेंगे।
3: तो देखिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में आदमी यही सोचता है कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन यदि उसको तनाव है, चिंता है, थकान है, तो भी वो एक रोग की श्रेणी में आता है,
2: बिल्कुल
3: दृष्टि से देखा जाए। तो उसको ये चीज कैसे समझ में आए कि ये भी एक रोग है, मैं इसको दूर करना है, मुझे कैसे दूर करूंगा?
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, स्वास्थ्य के समय में व्यक्ति आनंदित होगा, जब स्वस्थ होगा, चाहे वो बिल्कुल उसको एक अलग तरह की ऊर्जा स्फूर्ति होगी। जब भी कभी, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी प्रकार का आपको दुख होगा तो वो दुख आपके सामान्य स्थिति में आपको नहीं रहने देगा, और शरीर की सामान्य अवस्था भी नहीं देगा। उसमें सांसों की गति बढ़ जाएगी, शरीर में ताप बढ़ जाएगा। जैसे मैं बात करूं श्रीमद् भगवद गीता की, कि अर्जुन पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आप देखें तो जब वो कहते हैं कि जा दिखाइए दोनों सेनाओं, उस सेना में कौन लोग युद्ध करने के लिए आए हुए हैं दुर्योधन की तरफ से, मैं देखना चाहता हूं। और कहते हैं रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अब देखिए इसमें कितना बड़ा दर्शन है, दोनों सेनाओं के मध्य में जाने का मतलब कि दोनों सेनाओं को देखना, जबकि एक तरफ से अपनी तरफ से देखते तो एक ही तरफ दिखाई देता। तो दोनों तरफ से जब मध्य में खड़े हुए, तो मध्य में होना भी एक योग है। इसीलिए गीता योग शास्त्र है कि वो मध्य में खड़े अर्जुन को दी जा रही है, दोनों सेनाओं के पक्ष में विपक्ष में खड़े लोगों के लिए योग नहीं है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि राग और द्वेष ये अस्मिता से जन्म लेते हैं। जब आपका अहंकार खड़ा होगा, या मैपन, जो शरीर के प्रति मैपन या हूंपन का जो भावना बनेगा, तो उसमें राग द्वेष होगा। राग किससे होता है, जिसमें सुख का अनुभव हुआ हो उस विषय वस्तु व्यक्ति में आपको राग होगा, और जिसके साथ दुख का अनुभव हुआ हो उसके विषय वस्तु और व्यक्ति में आपको द्वेष होगा। तो इसी दो तरह से हम लोग व्यक्ति ड्राइव होता है, कहते हैं उद्दीपित होता है, उद्दीपन का कारण व्यक्ति के यही दो मूल रूप से क्लेश हैं, राग और द्वेष। अब कहते हैं कि राग और द्वेष से मुक्त हुए बिना आप योग की स्थिति में नहीं होंगे, और आप देखें तो वृत्तियां जो महर्षि पतंजलि ने कही, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये भी राग द्वेषात्मक ही होती हैं। या तो क्लिष्ट होंगी या अक्लिष्ट होंगी। साधक होंगी तो आप उसमें राग कर बैठेंगे, बाधक होंगी तो आप उससे द्वेष करने लगेंगे। तो ऐसे में योग की जो एक परिभाषा है, जो चित्त वृत्तियों का निरोध, वो राग द्वेषात्मक वृत्तियों से मुक्त होने का एक उपाय है कि कैसे आप इससे मुक्त हों ताकि आप अपने स्वास्थ्य यानी स्व में स्थित रह सकें। स्व में स्थित रह करके ही आप खुशहाल हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, सद्भावपूर्ण हो सकते हैं, जब आप स्व में होंगे। और जब भी शरीर में या मन में किसी पराये का प्रभाव होगा, जैसे शरीर में ताप का होना, इसका मतलब कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में, कोई जैविक मतलब कहते हैं अटैक हुआ है या कोई वायरस का अटैक हुआ है, तो इस तरीके से जब भी किसी ऐसी चीज का आपके शरीर में या आपके मन में जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जब उसका प्रभाव होगा तो आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। और जब आप अपने स्वाभाविक स्थिति में होंगे तब आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का मतलब अपनी स्वाभाविक दशा में होना। जब अर्जुन ऐसे दृश्य का विचार करने लगते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, ये सब अपने ही लोग हैं, तो फिर अर्जुन के शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जिसको कहते हैं वो व्यक्त विकृतें, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति बेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, वो व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा जो अंग कांप रहा है और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है। तो जो लक्षण बता रहे हैं तो वो लक्षण कहाँ से उत्पन्न हो गया, इसके पहले तो स्वस्थ थे, तो वो लक्षण तो मन से उत्पन्न हुआ, मन के विचारों से अवसाद की स्थिति आई। तो अवसाद की स्थिति में भी शरीर का जो आपकी जो फिजियोलॉजी है डिस्टर्ब हो जाती है, और शरीर की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाने से भी आप अवसाद में चले जाते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाम ऋषियों ने दिया, कि मन को कहा गया कि ये सूक्ष्म शरीर है, यानी ये शरीर को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि प्रभाव शरीर में दिखता है लेकिन उसका कारण कहाँ होता है, मन में। और ऐसे शरीर के प्रभाव का सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है कि अगर शरीर में कोई रोग हो जाए तो मन बहुत प्रसन्न नहीं होगा। तो योग पूरी तरीके से दोनों के बीच एक तालमेल है, और इन दोनों के स्वस्थ होने के लिए जो आपने शुरू में ही कहा, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति, जिसको अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि अपने आत्मस्वरूप की स्मृति हो और मोह नष्ट हो जाए, तब आप मन और शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाएंगे। अभी स्पिरिचुअल हेल्थ के नाम से आजकल परिभाषित किया जाने लगा है कि आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है, आत्म स्थिति में कैसे आप हैं। अगर वो आत्म स्थिति में हैं तो निश्चित ही आप शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, इन तीनों स्वास्थ्य को अर्जित कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे।
3: तो जैसा कि आपने बताया,
2: हाँ,
3: गीता का ज्ञान मिलने के बाद जैसे अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हुए थे, वैसे ही मेरा विचार है कि योग करने के बाद भी मन में एक शांति आ जाती है, हर स्थिति में हम प्रसन्न रहते हैं और जो भी काम होता है उसमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सोच समझ के सही प्रतिक्रिया देते हैं।
2: योग एक प्रकार का स्व का नियंत्रण है, जिसको महर्षि वशिष्ठ कहते भी हैं कि मन को शांत करना अपने वश में करने का उपाय है योग। और इसके लिए भगवान ने गीता में 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा भी है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। यानी व्यक्ति को अपने खान पान, आमोद प्रमोद जो विहार है, कर्तव्य कर्म और सोने और जागने की आदतों को संयमित करना योग है, तब योग से सारे दुखों का नाश होगा। तो ऐसे में जो आपने कहा ना कि स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य यानी समस्त दुखों का नाश कर दे योग, तो उसके लिए आपको अपने आहार विहार और सोने जागने, कर्म और अकर्म, इन सब का संतुलित ज्ञान होना चाहिए। और जब आप ये कर पाते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं। कई बार हम स्वाभाविक कर्म है उसको न कर पाने की वजह से भी पीड़ित होते हैं, जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भी पीड़ा होती है।
3: तो चलते चलते मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहूंगी कि हम योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा कैसे बना सकते हैं।
2: योग को जीवन शैली का हिस्सा अनुशासन से बना सकते हैं, और योग का नियमित अभ्यास, अनुशासन आपको निश्चित तौर पर एक डिसिप्लिन देता है, और वो डिसिप्लिन जिसमें आप अपने को सुखी और शांत तो रख ही पाएं। जब आप सुखी और शांत होंगे तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी सौहार्दपूर्ण बनाएंगे, निर्भय भाव में रहेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी आपके प्रति बैर भाव नहीं रखेंगे। तो एक बहुत कह सकते हैं कि परस्पर आश्रित जीवन जो है ना, परस्पर तंत्रता जिसे कहते हैं, जहां पारस्परिक योग हो, जहां एक दूसरे की परस्परता का बोध हो, तो ऐसे में आप लोक कल्याणकारी प्राणी के रूप में विकसित होंगे। यही योग का मूल लक्ष्य है और लोक कल्याणकारी सोच ही मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकती है।
3: तो आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अगर हम प्रतिदिन बदल बदल कर योग करें या योग को अपने काम के साथ जोड़ लें तो भी ये करना आसान हो जाएगा।
2: बिल्कुल, योगा कर्म सुकौशलम है ही, कुशलता पूर्वक कर्म को करना योग है। लेकिन कुशलता पूर्वक कर्म को करने के लिए आपको सफलता और असफलता का भी त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सफलता असफलता के आकांक्षा के साथ कर्म करने में कुशल हो सकेंगे। भगवान साफ साफ कहते हैं कि बिना इसको त्यागे, क्योंकि वो बड़ा जय पराजय शुभ अशुभ से बिना मुक्त हुए आप चाहें कि हम योग करने में कुशल हो जाएं। इसके लिए श्लोक में उद्धृत कर दूं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय उज्जस्व योगः कर्म सुकौशलम्। कहते हैं कि जब तक तुम समत्व बुद्धि से युक्त नहीं होगे, बुद्धि से युक्त हो यानी ऐसी बुद्धि नहीं जो शुभ अशुभ के बीच में फंसी है, वो शुभ अशुभ का त्याग करके समत्व में स्थित बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म करने में कुशल हो सकोगे और उस योग का तुम अनुपालन करके योगी बन सकते हो और योगी बन करके ही तुम स्वस्थ रह सकते हो।
3: तो जैसे गीता में भगवान योगेश्वर हमें सही ज्ञान देते हैं और तब हमें समझ में आ जाता है कि हमको केवल कर्म करना है, योग भी एक प्रकार का कर्म ही है। उसी तरह से योग करने से, जैसे हमारी बात आज निकल के सामने आई कि शारीरिक मानसिक क्षमता के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और लचीलापन भी बढ़ता है।
2: बिल्कुल।
3: और वहीं ये संपूर्ण स्वास्थ्य पाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। न डॉक्टर की जरूरत है, न वैद्य की जरूरत है। तो हम जानते हैं कि रोग के उपचार से बेहतर है कि पहले से ही उससे बचाव किया जाए, और योग इसके लिए सबसे सरल और कारगर उपाय है। तो आज डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी, ये अमूल्य ज्ञान हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
3: तो श्रोताओं, ये था योग दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी, और इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी आदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आप सुन रहे थे इसे रेडियो आजाद हिंद पर। आपके साथ थी मैं नूपुर शर्मा। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम भारतीय सेना के इतिहास को जानते समझते हुए आ पहुंचे हैं साल 1984 तक। ये वो समय था श्रोताओं, जिसे प्रगतिशील दौर कहा जा सकता है, स्वयं हमारे देश के लिए और साथ ही हमारी भारतीय सेना के लिए भी। ये दौर था नए तौर तरीकों का, नए उपकरणों का और तकनीकों का, नई चुनौतियों का। बस पुराना और चिरकालीन था तो वो था देश के प्रति बलिदान का वो जज्बा, जिसके दम पर हर चुनौती को भारतीय सैनिक स्वीकार करता है और एक गौरव गाथा लिख जाता है। श्रोताओं, यही जज्बा आज तक भी बरकरार है और हमेशा रहेगा। कार्यक्रम की पिछली कड़ी में देशभक्ति के ऐसे ही जज्बे से लबरेज एक ऐसे ऑपरेशन का हमने जिक्र किया था, जिसका नाम है सियाचिन का युद्ध, या जिसे कहें ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन यानी बर्फ का, समझिए रेगिस्तान, जहां -30 डिग्री से -50 डिग्री का चिल्ड तापमान, बर्फीले तूफानों का सिलसिला चालू होने पर कब थमेगा इसकी कोई थाह नहीं, जहां जंग दुश्मन से ज्यादा मौसम से लड़ना पड़ती है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आइए जानते हैं कि बाना पोस्ट, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की पिछली कड़ी में किया था, उस पर कब्जे के बाद आगे क्या हुआ, कार्यक्रम की आज की कड़ी में। हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में है लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और सियाचिन पर भी अपनी सेवाएं देने का उनका एक लंबा अनुभव रहा है। सर, स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम में आपका।
3: जय हिंद पूर्वा जी।
2: जय हिंद सर।
3: जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था
2: जी,
3: कैट पोस्ट को कैप्चर करके उसे हमने फिर बाना पोस्ट का नाम दिया था
2: जी,
3: क्योंकि उसमें जो अटैक लीड किया था, जिसे हमने जिक्र किया था, नायब सुधर बाना सिंह साहब ने किया था, जो कि बाद में ऑनरी कैप्टन बने थे और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये पोस्ट खोने के बाद जो कि पाकिस्तान का उस समय का इकलौता फुटहोल्ड था सॉल्टर और रिच पे, जैसे हमने बताया था, उन्होंने दोबारा अटैक किया मिला फांडला पे कब्जा करने के लिए।
2: अच्छा।
3: सितंबर में, ठीक है, और इट वाज अ मेजर अटैक, क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट था कि किसी भी तरह से अपना सॉल्टर रिज पे फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करना है। तो ये अटैक जो है इंडियन फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से इसको रिपल्स किया
2: जी,
3: और इसमें जो है ये अटैक पाकिस्तान का बुरी तरह से फेल हुआ था, जिसमें कि उनको बहुत ही मतलब भारी असफलता देखने मिली और काफी उनका नुकसान भी हुआ था।
2: सर, ये बात 1984 की ही है?
3: नहीं, ये सितंबर 87 की हम बात कर रहे हैं, ये जब हमने बाना पोस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद की बात है, जब हमने वो कैट पोस्ट कैप्चर करके बाना पोस्ट बना दी थी
2: जी।
3: तो पाकिस्तान किसी भी तरह चाहता था, तब उन्होंने मिला फोंडला पे जो नीचे
2: दोबारा
3: हमला किया था मिला फोंडला पे। अब ये जो हुआ फेलियर हुआ, बट पाकिस्तान वाज डेस्परेट कि किसी भी तरह से हमको सॉल्टोरो रिज पे कहीं ना कहीं जो है अपना हक जमाना है, ठीक है, जो कि जबरदस्ती वाली बात थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एरिया एब्सोल्युटली क्लियर था कि ये इंडियन टेरिटरी है। पाकिस्तान इसमें अपना हक जो जमा रहा था वो एक इमेजिनरी लाइन को लेके, जैसे हमने बताया के कारण जो है जमा रहा था। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपनी देश की रक्षा के लिए जो है तत्पर थे और खड़े थे और बहादुरी से डटे हुए थे, ठीक है, ओके। तो 89 में, मार्च 89 में, तो एक वहां पे और चुमिक ग्लेशियर रीजन है।
2: अच्छा।
3: जैसे जो सॉल्टोरो रिज जाती है उससे वेस्ट में, यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो ग्लेशियर निकलते हैं, तो उसमें एक चुमिक ग्लेशियर फ्लो करता है। ये एरिया भी जो है मतलब सियाचिन ग्लेशियर के पास में है, लेकिन इसका टेरेन बहुत डिफिकल्ट है,
4: मतलब
3: बहुत ऊंची मतलब पहाड़ियां हैं, सीधी पहाड़ियां हैं, वर्टिकल जो हाइट्स हैं। तो किसी तरह से इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान ने वहां पे एक अपनी पोस्ट बनाई एंड वो पोस्ट अब ऐसी थी कि उससे जो आर्टिलरी फायर है
4: जी।
3: वो हमारी जो सप्लाई रूट्स वगैरह थी जो कि सियाचिन ग्लेशियर से में चलती है, उसके ऊपर वो फायर करने में सफल हो रहा था। ये जो पोस्ट थी, लेकिन ये ऐसी थी कि अगेन इसमें जो है वर्ड थे अभी मैंने बताया कि जो वहां तक पहुंचना एक तरह से नामुमकिन था, खड़ी चढ़ाई थी, नामुमकिन था। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए ये चैलेंज था कि इसको तो हम रहने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए जो है मूवमेंट मुश्किल है,
4: जी बाधा पहुंचाएगा,
3: जी बिल्कुल। और आर्टिलरी फायर हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द पोस्ट, आपकी सप्लाई चेन प्रभावित होती है उससे जो है। इसमें एक जब एरियल रेकी करी गई तो पाया गया कि ये जो पोस्ट थी, बहुत जो छोटी पोस्ट थी, वो एक पीछे चुमिक बेस बनाया था,
4: अच्छा,
3: जहां से कि वो उसको मेंटेन कर रहे थे। तो आर्टिलरी के ऑफिसर्स ने प्लान किया कि एक उन्होंने तरीका निकाला जो है, इट वाज अ वेरी इनोवेटिव है, कि उसके किसी तरह से उस बेस के ऊपर आर्टिफाइस उसको डिस्ट्रॉय किया जाए।
4: अच्छा,
3: तो ये पूरा प्लान हुआ। प्लान होने के बाद जो है जो आर्टी के ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स होते हैं जो फायर डायरेक्ट करते हैं,
4: अच्छा,
3: उनको उस जगह पे प्लेस किया गया जहां से कि वो लोग देख सके जैसे भी हो। एंड इट वाज अ बफोस फायर जिसने कि उस बेस को डिस्ट्रॉय करा,
4: यानी दुश्मन को पता भी नहीं चला कि ये कहां से हमला हुआ है,
3: कहां से का हमला हुआ। एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, ओके। और वो जब बेस बर्बाद हुआ, ठीक है, आर्टिफायर से, एंड उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि उस पोस्ट को मेंटेन कर सके एंड उनको वो विड्रॉ करनी पड़ेगी जो है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये हमको पता चला कि हम इतने हाई एंगल से भी पीछे जो है फायर कर सकते हैं, तो इट बिकेम ए न्यू ओपनिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्टी गन्स, कि आर्टिलरी गन्स ऐसे भी मतलब जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड इट बिकेम ए मेजर सक्सेस ऑल्सो, जिससे कि आगे चल के हमने सोल्टोरो रिज के ऊपर पाकिस्तान को किसी भी तरह से अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश नहीं करने दिया गया था। अब ये जो लोकेशन है सोल्टोरो रिज पे, इसको AGPL कहा जाने लगा, मतलब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लोकेशन, ठीक है, ओके। अब दोनों आर्मीज जो है उन्होंने अपने डिप्लॉय हो गई थी, फियर्स फाइट चल रहा था, दोनों चाहती थी कि अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी। हमारे को यह था कि हम, ये हमारी देश है, हमारा जमीन है, हम इस पे पाकिस्तान को आने नहीं देंगे। पाकिस्तान चाहता था किसी भी तरह से
4: कब्जा
3: करे उसके ऊपर, ताकि वो उसको फिर आगे चल के अपना बना सके, बता सके। ये धीरे धीरे जो है फायरिंग ट्रूप्स का अनाउंसमेंट ज्यादा होता चला गया,
4: अच्छा,
3: वेपन्स भी जो है उस तरह से यू कैन से अपग्रेडेशन होना शुरू हो गया। आर्टिलरी की गन्स आ गई, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ही आ गई, ठीक है, तो एंड ट्रूप्स भी बढ़ने लग गए एक के बाद, मतलब धीरे धीरे धीरे जो है बढ़ते रहे, क्योंकि वहां पे लड़ना भी कोई आसान नहीं है। जैसे हमने जिक्र किया कि हम सिर्फ वहां पे दुश्मन से ही नहीं लड़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट से, क्लाइमेट से भी लड़ रहे हैं। अच्छा, ये क्या है कि दोनों जो है पाकिस्तान और इंडियन आर्मी जो है वहां पे आमने सामने ऑलमोस्ट,
4: अच्छा,
3: कई जगह पे, तो खासकर बिला फोंडला वाले गरी एरिया में अगर आप देखेंगे और नीचे कई जगह पे देखेंगे तो बहुत मतलब
4: करीब
3: है जी। तो यहाँ पे आपको 24/7 विजिलेंस मेंटेन करके रखना होता है
4: जी।
3: अब मौसम चाहे कितना भी खराब हो, मतलब वहां पे बर्फ पड़ रही है, ब्लिजर्ड आया हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, फिर भी एक सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं वहां छोड़ सकता। क्योंकि उसको मालूम है यही मौसम है जबकि उसके ऊपर अटैक के ज्यादा चांसेस है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहां पे, ड्यूटी जो कर रहा है, जो
4: 24 घंटे
3: चौकन्ना रहना है, क्योंकि वहां आप फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है।
4: बिल्कुल सही,
3: क्योंकि फेलियर अगर हो गया तो आप मतलब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ओके, जान भी जाएगी और जो है जहां
4: जगह
3: भी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये वेदर के कारण जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता था वहां पे जो है। एंड वेदर के अलावा जैसे हमने बात भी करी है कि वहाँ एवलांचेस बहुत रेगुलर आते थे, हाँ जी, कभी भी मतलब जो खुलते थे, ठीक है, क्योंकि क्या होता था, स्नो ब्लिजर्ड आया तो पता चला कि पूरा का पूरा स्नो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया, तो वहां मालूम चला कि जो है क्रेवेस खुल गया है, धूप पड़ रही है तो भी हो जाता है। ऐसे इलाके में मेंटेनेंस करना, कम्युनिकेशन का मेंटेनेंस, सप्लाई का मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इसी इलाके में अगर आप देखेंगे जो लीडरशिप है दैट कैरीज लॉट ऑफ वेटेज। इस जगह पे जो लीडर्स हैं वो अपने जवानों को मोटिवेट करके रख सकें
4: जी।
3: उसके लिए उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है हर तरह से होता है कि क्या जवान के पास पूरा राशन पहुंचा है
4: जी।
3: क्या उसकी ड्यूटी ठीक से लगी है, क्या उसका मोराल ठीक है, क्या उसके घर से चिट्ठी आ रही है, क्या उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं
4: जी।
3: है मैंने किसको जो है अभी बाहर भेजा है, क्या वो फिजिकली उस हिसाब से फिट है, या मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑफिसर्स के लिए, लीडर्स के लिए। एंड ये आई मस्ट से सो कि आई टेक प्राइड इन इट कि वी नेवर लेट डाउन ठीक है एनीवन इन दिस। ठीक है ऑफिसर्स जब भी हमने देखा भी है हर जगह जो है उन्होंने अपनी जो है इट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ लीडरशिप। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन जो है चैलेंज रहता है जिसमें कि वो वहां पे हमें फेस करना पड़ रहा था। अच्छा इस क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण
4: जी,
3: इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण दोनों जो आर्मीज हैं
4: जी
3: दे सफर्ड वेरी हाई कैजुअल्टी,
4: दोनों तरफ नुकसान,
3: दोनों तरफ नुकसान हो रहा था
4: जी,
3: क्योंकि इंक्लीमेंट वेदर तो दोनों के लिए एक बार जैसा है, फायरिंग के कारण भी जो है नुकसान चल रहा था। पहले पहले जब इनिशियली तो जब पोस्ट बनी थी तो उनमें बहुत ही मंडेन फैसिलिटीज होती थी, मतलब जो है क्योंकि जो शुरू में लोग गए थे वो तो जाते ही मतलब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उनके लिए तो सबसे प्राइमरी टास्क हो गया था कि भाई किसी तरह से अभी वाला हमें लड़ना है,
4: लड़ना है।
3: ठीक है उनके लिए अपना जो कंफर्ट है दैट बिकेम सेकेंडरी, द कंट्री केम फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। ओके देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, जो है स्नो हट्स वहाँ पे खड़ी हुई जो कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, देन स्पेशल क्लोथिंग वगैरह के जो मिलना शुरू हुई, तो ऐसे करते करते जो है इम्प्रूवमेंट तो आया,
4: बदलाव का दौर आया, प्रगतिशील हम भी थे, देश भी और सेना भी।
3: सही बोला आपने
4: जी। तो बात यही आती है सर कि हम फिर ये जो सप्लाई होती है आज भी जो है वो किस तरह से सैनिकों को पहुंचाया जाता है, उसका क्या तरीका होता है हम लोगों के लिए, हम आम जनों के लिए तो बड़ा ही एक रोचक सवाल है मेरे लिए तो स्पेशली कि उन तक रसद भी और जो उपकरण है जो आप जवान जो यूज करते हैं वो किस तरह से पहुंचाए जाते हैं।
3: देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है
4: जी
3: उसमें वहाँ कुछ नहीं उगता, वहाँ कोई नेचुरल सोर्स नहीं है
4: जी,
3: वहाँ से बर्फ है, तो जो भी वहाँ पे पोस्ट है वहाँ पे हर चीज
4: जी
3: आपको नीचे से सप्लाई करनी पड़ती है, वो राशन हो गया, केरोसिन हो गया जो है, उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, एमुनेशन है, स्पेशल क्लोथिंग है, हर चीज आपको नीचे से लेके जानी है
4: जी।
3: और नीचे से ले जाने के लिए कोई आपके पास रोड्स नहीं है वहाँ पे
4: जी,
3: किसी तरह से ट्रैक्स नहीं है ना, तो वहाँ कच्चर जाते हैं ना वहाँ पे कोई गाड़ी जाती है, तो राशन सप्लाई करने का वहाँ पे सबसे बड़ा जो साधन होता है एक तो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो एयर ड्रॉप्स करते हैं।
4: अच्छा यानी हवा से गिराया जाता है,
3: हवा से जो है पैराड्रॉप्स होते हैं तो वो राशन ड्रॉप होता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स और आर्मी एविएशन के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो जो है सप्लाई मेंटेन करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। और वहां पे जो राशन्स हैं मैं उसके बारे में आगे भी जिक्र करूंगा ठीक है, एक आपको अलग तरह से राशन स्पेशल राशन्स भी चाहिए होते हैं जिसका भी हम जिक्र करेंगे। एंड केरोसिन जो है जैसे एक हम बात करें वहाँ पे आप एक बार राशन खाए मतलब खाना खाए वगैरह रह सकते हैं लेकिन केरोसिन के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको आग नहीं जली हुई है, आपके बुखार ही नहीं चली है, तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि आप के लिए मुश्किल हो जाता है। सो लॉजिस्टिक इज अ नाइटमेयर देयर, और इसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही एडवांस और बहुत डिटेल प्लानिंग करनी होती है।
4: अच्छा,
3: कि एक यूनिट जा रही है तो उसके लिए वहां पे उसको कितना राशन चाहिए होगा, उस दौरान मतलब कितने दिन जो है वेदर पैक रहेगा ये भी एक हिसाब लगाया जाता है, क्योंकि विंटर्स में ज्यादा पैक रहता है, तो उसमें हमें कितने दिन मिलेंगे वहां पे राशन डंप करने के लिए, हर पोस्ट पे पहुंचाने के लिए मतलब जो है हमें कितने पोर्टर्स चाहिए हैं, किस तरह से मतलब जो है लेके जा पाएंगे, एंड इट्स अ मेजर एफर्ट्स जो मतलब अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल पोस्टिंग के हिसाब से देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और दिन रात जो है इसके लिए एक एक मतलब जो है कार्रवाई चलती रहती है। और इसमें जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि आईएफ प्लेज अ वेरी वेरी important major role.
4: जी.
3: And Haptas of Army Aviation, they also play major role in this, है ना?
4: सर, अब एक प्रश्न यहाँ पर मन में यही आता है कि ऊंचाई तो सियाचिन में भी है और दूसरी जगहों पर भी उतनी ही ऊंचाई है, तो सियाचिन की ऊंचाई में, दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई में आप क्या अंतर पाते हैं, अपने काम में क्या अंतर पाते हैं वहाँ पर?
3: सियाचिन अंदर थर्ड पोल जिसको बोलते हैं ना,
4: जी,
3: नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद जो है थर्ड पोल बोला जाता है उसको. जब आप वहां जाते हैं, देखिए बाकी जगह पे एक फर्क ये होता है कि आप कहीं जाते हैं जैसे बाकी लोकेशंस पे मैंने देखा कि आपको थोड़ा इनहैबिटेशन दिखता है, लोग दिखते हैं आसपास, जो है जानवर दिखते हैं, जो है कहीं कहीं घास वगैरह भी दिखती है, कहीं एक वक्त तक तो आपको ट्री लाइन दिखती है. जब आप सियाचिन के एरिया में एंटर करते हैं, इस एरिया में वहां आपको सिवाय बर्फ के कुछ नहीं दिखता है. जो आपका मस्तिष्क है, माइंड है, वो एक नॉर्मल जो वातावरण को देखता है, जो नॉर्मल चीजों को मतलब एक्सेप्टेड होता है कि हमें पेड़ दिखेंगे, हमें चिड़िया दिखेगी, हमें एक आवाज दिखेगी, हमें कुत्ता भौंकता हुआ दिखेगा, मतलब कुछ रहता है. देयर इज अ एब्सोल्यूट साइलेंस, वहां कुछ नहीं, वहां आपको बर्फ दिख रही होती है चारों तरफ. और उसमें जो है वहां पे जो ब्लिजर्ड्स आते हैं, मतलब स्नो ब्लिजर्ड्स आते हैं, वो कंटिन्यूअसली इट इज फॉर 15 डेज ऑल्सो, मतलब जो है पैक रहता है. जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं गया था, जो मैं स्नो हट थी
4: जी,
3: उसमें मैं सीधा एंटर किया था, एंड 20 दिन के बाद वो है 16 से 18 फीट नीचे बर्फ जा चुकी थी जो है. तो आप मतलब ये देखिए, एंड ऐसे वहां पे जिस तरह से मतलब पियर्स, मतलब इतने ज्यादा तेज तूफान मैंने कहीं और नहीं देखे थे. तो इसका क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है. एंड सेकंड थिंग इज वहां पे रेरिफाइड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो बॉडी फंक्शनिंग जो है उसपे बहुत फर्क पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली. इट्स एब्सोल्यूट.
4: आप शारीरिक रूप से तो इसको चैलेंज की तरह लेते ही हो, मानसिक रूप से भी.
3: हाँ, मानसिक रूप से भी. अब दूसरा क्या होता है, अगर हम जस्ट माउंटेनियरिंग से अगर कंपेयर भी करें, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि माउंटेनियरिंग कम मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है वो भी, लेकिन माउंटेनियरिंग में आप एक जाते हैं, उस पहली बात तो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ओके. सेकेंड थिंग आप जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आप वहां रह रहे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक टास्क है, और उसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महीने रह रहे हैं. 3 months is considered as the maximum a body can, मतलब sustain.
4: अधिकतम वो कितने समय तक वहाँ रह सकता है?
3: हम लोग का ना जैसे ग्रुप जाता है तो हम 3 महीने के लिए जाते हैं.
4: अच्छा अच्छा.
3: जी 3 महीने के लिए जाते हैं, 3 महीने के बाद जो है वापस आते हैं. उसके बाद बॉडी के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होने शुरू हो जाते हैं. जाने से पहले भी अब जैसे इस इलाके में जो है आपको स्पेशली एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है, आपको मेडिकली फिट होना पड़ता है, एंड आपके लिए उसके लिए आपका जो है मेडिकल रोज होते हैं, फिर आपको जो है स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है. वहां पर सियाचिन बैटल स्कूल है जिसमें कि हमें बर्फ के ऊपर चलना, क्रेवेसेस क्रॉस करना, ठीक है, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करने हैं, आइस वॉल जो होती है 90 डिग्री की आइस वॉल होती है, उसको कैसे चढ़ना है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है, क्रैम्पॉन्स बोलते हैं, जिसमें कीले लगी होती है पैरों में, वो डाल के चलना होता है. फिर जो हमारे पास हथियार होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, रेडियो सेट्स हैं, ठीक है, बाकी चीजें हैं, तो वो कैसे उसको मेंटेन करना है, टेलीफोन सेट, क्योंकि जब इस टेम्परेचर पे उसमें भी जो है मतलब काफी प्रॉब्लम्स आती है, काफी उनकी भी मतलब जो है एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसकी एक स्पेशल केयर आपको करनी पड़ती है. तो ये सब चीजें जो है सियाचिन को अलग थोड़ा बनाती हैं, ठीक है.
4: वहां पर जाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है,
3: बिल्कुल है. एक मतलब बहुत छोटी सी चीज होती है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन आपको जो है प्रॉपर रखना है. अच्छा, सियाचिन में क्या था, बस यू एंटर इनसाइड देन यू आर कमिंग बैक ओनली आफ्टर मतलब 3 months 4 months जो है आप वापस आ रहे हैं. तो एक जो मेंटली भी जो होता है लोगों के ऊपर एक मेंटल इम्पैक्ट आता है, आइसोलेशन का इम्पैक्ट आता है, तो उसके बारे में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कैसे बिजी रखते हैं. देन जो वहाँ के डिजीजेस वगैरह रहती हैं, जैसे चिलब्लाइंस हो गया, फ्रॉस्टबाइट्स हो गई हैं, स्नो ब्लाइंडनेस, तो अब जैसे आपने स्नो गॉगल पहना हुआ है, आपने सपोज उसको निकाल दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, इमीडिएटली जो है आपको स्नो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है. तो वो क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं उसके, उस इलाके में मेंटली आपको कैसे फिट रहना है, आइसोलेशन से कैसे डील करना है, ठीक है. तो एक छोटा सा टेंट में जो है 10 लोग रह रहे हैं, अगर सब कुछ मतलब कई बार जो है मतलब इट्स अ चैलेंज
4: जी।
3: तो ये चीजें जो होती हैं ये मुझे लगता है बाकी से थोड़ा इनको
4: अलग है,
3: अलग है
4: जी।
3: एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस आई हैड फाउंड देयर
4: जी।
3: बट मैं एक बात बताना चाहूंगा
4: जी,
3: मैंने कभी अपने किसी जवान को उदास नहीं देखा था, कभी मैंने किसी का मोटिवेशन डाउन नहीं देखा
4: जी। सर ये तो जवानों का जज्बा है जो उन्हें वहां पर हमेशा मुस्तैद रखता है, लेकिन एक बात तो ये सोचने में आती है सर कि इनकी हौसला अफजाई के लिए अधिकारी क्या करते हैं या क्या प्रोविजंस होते हैं कि ये हमेशा अपना मोराल जो है उनका बना रहे।
3: लीडरशिप तो है ही
4: जी,
3: इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है इसमें। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान रखती है, आर्म फोर्सेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो जवान जाते हैं उनको स्पेशल राशन ऑथराइज होते हैं
4: जी।
3: स्पेशल राशन में जो है अगर आप वो देखेंगे, राशन देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा
4: जी।
3: हर तरह के जूसेस होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, रसगुल्ले के टिन्स जो हल्दीराम के आते हैं, गुलाब जामुन टिन्स हैं, नमकीन्स हैं, ठीक है, देन स्पेशली डेवलप्ड रेडी टू ईट मील्स जो होते हैं वो होते हैं, एंड मतलब वेरी हाई प्रोटीन डाइट होती है, चिकन है, ऐसे करके काफी जो जिस तरह से ट्रिप जा रहे होते हैं उस तरह से उनको राशन दिया जाता है। ये भी ख्याल रखा जाता है कि जो वेजिटेरियन ट्रिप्स हैं उनके लिए वेजिटेरियन काइंड ऑफ राशन दिया जाए, जो नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन राशन दिया जाए। तो स्पेशल राशन ऑथराइज होता है वहां पे जो है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है जिसके बगैर वहां पे मतलब रहना बहुत मुश्किल है, तो वो इश्यू होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मानते हैं, तो उसको बहुत डेवलप किया गया है, एंड बहुत ही बेसिक से लेके आज बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है। एक जवान जो है अपने घर में बात कर पा रहा है, ये बहुत बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि जो अपने घर में वो बात कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी प्राइम एंड वेरी गुड देयर, इन द सेंस डॉक्टर्स बहुत होते हैं हर मतलब जो है कॉम्प्लेक्स में, मतलब जो है आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, एंड हर जवान का ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। पोस्ट पे भी जो होते हैं कि उनको किसी को बुखार तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन अभी अकोमोडेशन जो है लाइक स्नो हट्स जो है बनाई जाती हैं वहाँ पे, एंड आर्किटेक्ट टेंट्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं रहने के लिए। ऑफकोर्स इन सबके बावजूद मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वहाँ लाइट नहीं है, ठीक है, ओके, तो आपके पास अब मनोरंजन का साधन रेडियो ही है, तो मतलब है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत फैसिलिटीज अच्छी, मतलब निरंतर एक प्रयास रहता है ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे स्पेशली जो ग्लेशियर वाला एरिया है इसमें स्नो स्कूटर्स इशू करे होते हैं, एंड

0: तो आप ये देखिए कि आप एक कदम करते हैं और नीचे पूरा आप कमर तक अंदर जा चुके अंदर, होते हैं
1: जी।
0: कई कई बार जो है मतलब 100-100 मीटर क्रॉस करने में एक घंटे से ऊपर लग जाता है। एंड आपको नहीं मालूम है कहाँ पे क्रवास खुलने वाला है, कहाँ एवलांच आने वाला है। स्नो ब्लेजर्स में जब आप बाहर निकलते हैं स्नो ब्लेजर्स के बाद, तो मैंने पूरा टेरेन चेंज होता हुआ देखा है। जहाँ पे मतलब टीले थे बर्फ के, वहाँ वो पूरे गायब हो गए एंड वहाँ पता चलता है कि नया क्रवास खुल गया है।
1: तो सीन भी चेंज हो जाता है,
0: सीन चेंज हो जाता है। पूरे कम्युनिकेशन वायर जो है आपके जो है सारे के सारे स्नैप हो जाते हैं, उसको आप इमीडिएटली फिर एस्टेब्लिश करते हो। इट्स अ हरकुलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि वहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म करना उस सब जीरो टेम्परेचर कंडीशंस में, आर्कटिक कंडीशन में, इट्स अ मेजर चैलेंज व्हिच दे डू इट वेरी सिंसियरली, है ना। देन बॉडी एफिशिएंसी जो है बहुत कम हो जाती है आपकी, जो वर्किंग एफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। सी अब बॉडी, नॉर्मल बॉडी वहां पे जो है, जैसे अगर जिसको 2000 कैलोरीज पर डे चाहिए
1: जी,
0: उसको वहां पे 4000 कैलोरी चाहिए। अब इतना कंज्यूम करना भी हमारी हैबिट में नहीं होता।
1: नहीं,
0: मैं आपको बोलूं कि आप 15 रोटी खा लीजिए आज, तो नहीं खा सकते,
1: नहीं खा सकते,
0: नहीं खा पाते। तो ये इस कारण से क्या होता है, बॉडी एफिशिएंसी कम होती है। देन वर्किंग जो है आपकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट, बहुत छोटी छोटी सी पोस्ट है, बहुत कंजेस्टेड पोस्ट है। तो उसमें जब आपको रखा जाता है तो भी इतने लंबे टाइम के लिए 90 दिन बहुत होते हैं वहाँ पे, आपको समझ में आता है। तो
1: सियाचिन में जो पोस्टिंग होती है उसके लिए क्या कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, किस तरह से जवान सिलेक्ट होते हैं या उनको किस तरह से वहाँ के लिए किस तरह से चुना जाता है?
0: देखिए इन्फेंट्री बटालियंस का तो रूटीन होता है, मतलब टेन्योर होता है।
1: अच्छा।
0: जब बटालियंस जा रही होती हैं
1: जी,
0: तो जिस रेजिमेंट की वो बटालियन होती है, जैसे सपोज मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ, तो मेरी अगर हमारे एक बटालियन जा रही है
1: जी,
0: तो उसमें वॉलंटियर करके जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जो है उसी तरह से बाकी भी जो है इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल्स हो गए हैं, आर्टिलरीज हो गए, तो उनकी वहाँ पे पोस्टिंग्स आती हैं।
1: अच्छा।
0: एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन वॉलेंटियर ऑल्सो,
1: आप भी चुन सकते हैं,
0: आप चुन सकते हैं जाने के लिए, ठीक है। एंड बहुत लोग हैं जो वॉलेंटियर करके जाते हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इतने कष्ट के बावजूद जो है उस चैलेंज को उठाना का एक वो रहता है, हौसला रहता है।
1: भारतीय सैनिकों की पहचान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई मस्ट से कि दिस प्लेस इट एक्चुअली मतलब गिव्स यू अ मेजर चैलेंज इन योर सर्विस, ठीक है। मोर देन 1000 soldiers had lost their lives in glacier, ठीक है। This one of the highest casualty rates अभी तक जो है, इतने मतलब officer JCO जवान शहीद हुए हैं इस धरती पे जो है सियाचिन में। और इसी कारण जो है बहुत सारे जो मतलब सोल्जर्स हैं, हमने जैसे बाना सिंह साहब का जिक्र किया था, परमवीर चक्रा जिनको मिला है, और भी बहुत सारे जो है ऑफिसर्स हैं, जेसीओ सुवास हैं, जिनको गैलेंट्री एक्शन के लिए जो सम्मानित किया गया है, और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी हैं जो शहीद हुए हैं और शहीद होने के बाद उनको जो है सम्मान मिला है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ का सियाचिन जैसी जगह का, इट शोकेसेस द प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, सिंसियरिटी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। एंड यहाँ लड़के हमने पूरी दुनिया को जिता दिया था कि इस लोकेशन पे, इस हाइट में, इस एडवर्स कंडीशन में भी जो देश है उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: देश सर्वोपरि है।
0: देश सर्वोपरि। फॉर अ सोल्जर द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवर।
1: तो श्रोताओं, ऑपरेशन मेघदूत ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए इस बात का सबूत है कि जब बात इस देश की मिट्टी की आती है तो हमारी सेना का हर सैनिक कुदरत के सबसे भयानक रूप से भी टकराने का दम रखता है। ये जीत हथियारों की नहीं, हमारे जवानों के फौलादी हौसलों की है, जिसे दुनिया की कोई भी ठंड जमा नहीं सकती। इसके साथ ही सर, आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने आज स्टूडियो में आने के लिए समय निकाला, हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, एयरोस्पेस का क्या अर्थ है, हाल किस तरह से अनुसंधान, डिजाइन और विकास के माध्यम से भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाता है, एवियोनिक्स और MRO जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का क्या महत्व है और देश के युवा किस तरह विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं।
2: लेकिन हाल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण से आगे बढ़कर हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों, विमान इंजनों, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और भविष्य की स्वदेशी तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: तो आइए श्रोताओं, देश के संस्थान की इस विशेष श्रृंखला विज्ञान से तकनीक की ओर, इसमें अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि हाल किस तरह भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दादू और रुचि का रोचक संवाद।
3: अरे रुचि बेटा, कहाँ हो?
4: आई दादू।
3: अरे इधर आओ बेटा, जल्दी आओ।
4: आई दादू।
3: अरे अरे अरे, अरे धीमे धीमे धीमे बेटा, आराम से आओ, कहीं गिर मत जाना।
4: चिंता मत करिए दादू, मैं बिल्कुल संभल कर आई हूँ और ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने वादा किया था ना कि अगली बातचीत में मैं आपको अपने हाथों से चाय बना कर पिलाऊंगी।
3: अरे वाह बेटा, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू बेटा।
4: अब मुझे जल्दी से बताइए कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं?
3: बेटा अभी तो दिन शुरू हुआ है। आज अखबार में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के बारे में कुछ रोचक लेख छपा है बेटा।
4: अच्छा?
3: हाँ
4: दादू, मुझे याद है आपने पिछली बार हाल के बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में बताया था। आज ये बताइए कि आज क्या क्या नया जानने को मिलने वाला है दादू की प्यारी रुचि बिटिया को।
3: देखो बेटा, आज हम जानेंगे हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
4: अंतरिक्ष कार्यक्रम? यानी हाल और इसरो का भी कोई संबंध है दादाजी?
3: हाँ बिटिया, और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम इसरो की सफलताओं की बात करते हैं तो उसके पीछे कई भारतीय संस्थानों का योगदान होता है, जिनमें हाल भी शामिल है।
4: वो कैसे दादू?
3: हाल रॉकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग, ईंधन टैंक, यांत्रिक अवयव और विशेष तकनीकी उपकरण तैयार करता है बेटा। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।
4: वाह, यानी हाल का काम केवल आकाश तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी पहुंच अंतरिक्ष तक भी है।
3: बिल्कुल बेटा, जब कोई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित होता है या कोई प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है तब उसके पीछे अनेक वैज्ञानिक संस्थानों की सामूहिक मेहनत होती है बेटा। हाल भी उस सफलता का एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है।
4: ये तो बहुत ही कमाल की बात है दादू।
3: निश्चित रूप से कमाल की बात है बेटा, यही तो भारत की ताकत है। देश के विभिन्न संस्थान मिलकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं।
4: दादू, आपने बताया था कि हाल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता है, तो वो किस तरह से भला?
3: अरे जरा ठहरो बिटिया, सब कुछ बताऊंगा, आराम से, थोड़ा क्रम से चलते हैं बेटा।
4: अच्छा ठीक है दादू।
3: तुम बहुत नटखट हो बेटा। सुनो बेटा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना तुम्हें कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन। क्या बताया था?
4: कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन।
3: हाँ, जैसे हमारे शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है वैसे ही इंजन विमान को शक्ति प्रदान करता है। यदि इंजन ना हो तो विमान उड़ ही नहीं सकता।
4: आपने बताया था कि हाल इंजन भी बनाता है।
2: हाँ बिटिया, हाल विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है बेटा। इसके साथ ही स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: यानी केवल विमान ही नहीं बल्कि उन्हें उड़ाने वाली शक्ति भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: यही तो स्वदेशी तकनीक की असली पहचान है। जब किसी देश के पास अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान और अपनी निर्माण क्षमता होती है तब वो दूसरे देशों पर कम निर्भर रहता है।
4: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
4: क्या हाल भविष्य के लिए भी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
2: बिल्कुल कर रहा है बेटा, और यही तो सबसे रोमांचक बात है। हाल कई अत्याधुनिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है बेटा।
4: जैसे?
2: जैसे सबसे पहले है AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भविष्य की पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा बेटा, जिसमें आधुनिक स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियाँ होंगी।
4: क्या सच में दादू, स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियाँ होंगी? इसका क्या मतलब है
2: बिटिया? स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिससे विमान दुश्मन के रडार पर बहुत कम दिखाई देता है या उसे पहचानना कठिन हो जाता है। विमान की विशेष बनावट, सामग्री और डिजाइन उसकी रडार पहचान को कम करने में मदद करते हैं।
4: यानी दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
2: हाँ बेटा, इससे विमान अपनी जिम्मेदारियाँ अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निभा सकता है।
4: और ये उन्नत प्रणालियाँ क्या होती हैं दादाजी?
2: उन्नत प्रणालियों में आधुनिक रडार, संचार उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर पायलट को बेहतर जानकारी देते हैं और विमान की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं।
4: यानी भविष्य के विमान केवल तेजी नहीं होंगे बल्कि अधिक बुद्धिमान और सुरक्षित भी होंगे।
2: बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। आधुनिक तकनीक का उद्देश्य केवल गति बढ़ाना नहीं है बल्कि सुरक्षा, सटीकता और कार्य कुशलता को भी बेहतर बनाना होता है।
4: वाओ दादाजी, कितना कूल है ये तो। और बताइए ना दादू उसके बारे में।
2: बेटा इसके अलावा हाल का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर परियोजना पर भी बेहतरीन कार्य चल रहा है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो विमान वाहक पोतों से उड़ान भर सकेगा और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा।
4: और IMRH ये क्या है दादू?
2: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। क्या बोला मैंने?
4: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
2: ये भविष्य का बहु उद्देशीय हेलीकॉप्टर होगा बेटा।
4: अच्छा।
2: जिसका उपयोग सैनिकों के परिवहन, राहत एवं बचाव कार्यों और विशेष अभियानों में किया जा सकेगा।
4: मतलब दादाजी, हाल केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी कर रहा है।
2: बिल्कुल सही, शाबाश, सही समझा तुमने बेटा।
4: दादू, आजकल हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात सुनते हैं, इसमें हाल की क्या भूमिका है?
2: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा इसकी। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल भारत में वस्तुएं बनाना नहीं होता बल्कि अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान, अपने वैज्ञानिक और अपनी निर्माण क्षमता को विकसित करना भी होता है।
4: यानी जब हम अपने विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और रक्षा प्रणालियां स्वयं बनाएंगे तब हम और अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे दादाजी।
2: हाँ, हाल इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है बेटा, और यही कारण है कि आज ये संस्था भारत की तकनीक क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
4: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की एक अहम संस्था है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाल ने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और यही कारण है कि ये संस्था भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है।
4: और अब तो मुझे हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में और भी जानने की उत्सुकता हो रही है दादाजी।
2: तो फिर तैयार हो जाओ बिटिया, क्योंकि अब हम जानेंगे हाल की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में
3: जिन्होंने भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयां दी बेटा।
4: ये तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे क्या बताने वाले हैं दादाजी।
3: सच में?
4: यार।
3: अच्छा मेरी चुटकी जादूगर, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे?
4: अब आप ये बताने वाले हैं कि हमारे स्वदेशी विमानों की स्टोरीज क्या होने वाली है।
3: हाँ वाह, तुम तो सच में मन की बातें जानने लगी हो बेटा।
4: आखिर पोती किसकी हूँ? अच्छा चलिए दादाजी, बताइए भी।
3: हाँ बेटा सुनो, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव, सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र और अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की प्रेरणादायक कहानी।
4: वाह दादू, उन भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।
3: बिल्कुल बिटिया, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगी कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के पीछे वर्षों का अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के धैर्य और कई रातों की नींदों का अनुभव छिपा हुआ है।
4: दादू, क्या हर विमान की अपनी अलग विशेषता होती है?
3: हाँ बिटिया बिल्कुल होती है। कोई विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, तो कोई कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए और सैनिकों को ले जाने के लिए। इसी तरह हर हेलीकॉप्टर भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
4: यानी हाल ने समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए विमान और हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं।
3: हाँ बेटा, ये केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
4: तो दादाजी, सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं?
3: हम शुरुआत करेंगे HF-24 मरुत के बारे में बेटा। ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था।
4: और क्या वह सपना सच हुआ?
3: हाँ बेटा, अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने HF-24 मरुत का निर्माण किया। यह केवल एक विमान नहीं था बेटा, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि भारत भी उन्नत एयरोस्पेस तकनीक विकसित कर सकता है।
4: यानी मरुत ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
3: बिल्कुल बनाया, मरुत ने भारत में विमान निर्माण की मजबूत नींव रखी बेटा।
4: और दादाजी, तेजस के बारे में मैं अक्सर समाचारों में सुनती हूँ।
3: तेजस भारत का आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और आधुनिक युद्ध क्षमताएं हैं।
4: तो क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है दादाजी?
3: तेजस भारत की स्वदेशी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विकास में देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों का योगदान रहा है।
4: तो दादाजी, तेजस केवल एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अगर ध्रुव के बारे में बात करें तो ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है बेटा।
4: दादू, और क्या खास बात है ध्रुव के?
3: ध्रुव का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और नागरिक सेवाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा।
4: कौन कौन से कार्य दादू?
3: सैनिकों का परिवहन, राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेटा।
4: यानी एक ही हेलीकॉप्टर कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
3: यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बेटा। ध्रुव शक्ति और सुरक्षा का संगम है।
4: और रुद्र?
3: रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियां और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं।
4: तो ये केवल उड़ान भरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा अभियानों के लिए भी उपयोगी है।
3: बिल्कुल है बेटा, ये कठिन परिस्थितियों में भी सेना को प्रभावी सहायता प्रदान कर सकता है।
4: और प्रचंड का नाम तो दादाजी बहुत प्रभावशाली लगता है मुझे।
3: जैसा कि नाम से प्रचंड है क्योंकि बेटा इसकी क्षमताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। प्रचंड एक आधुनिक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के लिए विकसित किया गया है।
4: यानी जहां सामान्य हेलीकॉप्टरों को कठिनाई हो सकती है वहां भी ये काम कर सकता है।
3: हाँ, यही कारण है कि ये भारतीय सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
4: दादू, क्या हाल के बनाए विमान विदेशों में भी जाते हैं?
3: हाँ बेटा, हाल के हेलीकॉप्टर और विमान कई देशों तक पहुँचे हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता का विश्व में सम्मान बढ़ा है।
4: दादू, इसका मतलब इन सभी उपलब्धियों का आत्मनिर्भर भारत से भी सीधा संबंध है।
3: बिल्कुल है बेटा। जब कोई देश अपने विमान, हेलीकॉप्टर, तकनीक और रक्षा प्रणालियां स्वयं विकसित करता है ना, तब उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।
4: यानी हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
3: स्वदेशी तकनीक न केवल सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि विज्ञान, उद्योग, रोजगार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है बेटा।
4: दादाजी, अब समझ में आया कि हाल की उपलब्धियाँ केवल तकनीकी उपलब्धियाँ नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियाँ भी हैं।
3: सही कहा बेटा तुमने। इन उपलब्धियों के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों और कर्मचारियों का समर्पण छिपा हुआ है। क्योंकि जब सपनों को विज्ञान का साथ मिलता है तब जन्म लेती हैं नई उड़ाने।
4: और जब देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर मिलकर काम करते हैं ना, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है।
3: सही कहा बेटा तुमने। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
4: दादू, जब मैं तेजस या प्रचंड जैसे विमानों के बारे में सुनती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि इन्हें बनाना कितना कठिन होता होगा।
3: बहुत कठिन है बेटा। किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का निर्माण केवल कारखाने में पुर्जे जोड़ देने भर का काम नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और सुधार की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है।
4: यानी पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी।
3: हाँ बेटा, सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि विमान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद इंजीनियर उसकी संरचना, वजन, गति, सुरक्षा और तकनीकी प्रणालियों का डिजाइन तैयार करते हैं।
4: और फिर से उड़ाया जाता होगा?
3: नहीं, उससे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रयोगशाला परीक्षण और जमीन पर कई तरह की जांच की जाती है बेटा। जब सभी परीक्षण सफल हो जाते हैं तभी परीक्षण उड़ान की अनुमति मिलती है।
4: मतलब एक सफल उड़ान के पीछे वर्षों की तपस्या होती है।
3: हाँ बेटा, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तब हमें केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और समर्पण होता है।
4: दादू, इन स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों से हमारी सेनाओं को क्या लाभ होता है?
3: बहुत लाभ होता है बेटा। सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता। यदि हमारे पास अपनी तकनीक और अपने विमान हैं, तो आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार और उन्नयन भी हम स्वयं कर सकते हैं।
4: यानी हमें हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
3: हाँ बेटा, इसके साथ ही देश में अनुसंधान, उद्योग, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
4: दादू, क्या आज के विद्यार्थी भी भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं?
3: क्यों नहीं बन सकते? यदि विद्यार्थी विज्ञान, गणित और तकनीक में रुचि रखें, जिज्ञासु बने रहें और निरंतर सीखते रहें, तो वे भी भविष्य में हाल DRDO, इसरो या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं।
4: यानी आज की पढ़ाई कल देश की शक्ति बन सकती है दादाजी।
3: बिल्कुल, आज की कक्षा में बैठा कोई छात्र भविष्य में नया विमान डिजाइन कर सकता है बेटा, नया इंजन विकसित कर सकता है या ऐसी तकनीक बना सकता है जो देश की सुरक्षा को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे।
4: वाह, अब तो मुझे भी लगने लगा है दादू कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है।
3: और यही तो हमारी इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है बेटा।
4: हाँ दादू, आज हमने जाना कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
3: तो चलो रुचि बेटा, इसी बात पर मिलकर कहें जय हिंद। अच्छा, एक कप चाय और ले आओ।
4: अरे दादू, आप भी ना, बार बार चाय, रुकिए लेकर आती हूँ।
3: थैंक यू बेटा।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की, जो है आकाश की शक्ति का निर्माण। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
3: और मैं दीपक निमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
3: नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक नई कहानी इतिहास के एक नए पन्ने की तरह एक नई शुरुआत लेकर मैं तारीख
1: और मैं इतिहास आज फिर से आजाद हिंद के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: एक अध्याय जिसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने रोज लिखा। कुछ उस अध्याय के पन्ने बने, कुछ चंद लाइनें तो कुछ चंद अक्षर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन चंद अक्षरों पर ध्यान ही न दें। वो भी इस महान अध्याय के चंद ही सही, लेकिन महान अक्षर हैं।
1: हाँ तारी, लेकिन आम जनता को कहाँ मालूम होता है इन नायकों के बारे में? उन्हें 1857 के समय घटी हर एक घटना के बारे में मालूम तो नहीं है ना?
0: हाँ, लेकिन इतिहास कुछ भी हो, मैं तो जब भी 1857 की क्रांति के बारे में कुछ भी सोचती हूँ तो कोई ना कोई घटना सामने आ ही जाती है। और फिर अगर जरा सी भी उस घटना पर जमी धूल को साफ किया जाए तो सामने निकल आता है कोई ना कोई नायक।
1: लेकिन अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो 1857 की क्रांति का नाम सुनते ही अगर कोई नायक हमारे जहन में सबसे पहले उभरता है तो वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
0: लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेले ही तो इस युद्ध में नहीं थी, एक विशाल जनसमूह था उनके साथ। कई और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ उन्हें मिलता रहा।
1: बिल्कुल, 1857 की क्रांति के काल में भारतवर्ष के कई विद्रोही दल के मुखियाओं ने अपने दल बल के साथ रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था।

0: और उन्हीं विद्रोही दल के मुखियाओं में से एक थे ग्वालियर के निकट के इलाके भांडेर के रहने वाले उमराव सिंह सूबेदार।
1: तारीख जिस वक्त की ये बात है उस समय भांडेर वनों के बीचों बीच स्थित था और सिंधिया शासन के अधीन आता था। ये इलाका इस बात के लिए भी कुख्यात था कि इस इलाके में अनेक पवार विद्रोही घूमा करते थे और ये आने जाने वालों को अक्सर लूटा करते थे। उमराव सिंह सूबेदार के दल में ऐसे कई विद्रोही शामिल थे।
0: बिल्कुल, भांडेर में तो अनेक विद्रोहियों का जमावड़ा रहता था और ब्रिटिश सरकार और सिंधिया साम्राज्य भी उन पे काबू पाने में असमर्थ था। इन विद्रोहियों पर काबू पाने की कई कोशिशें भी हुईं, जैसे 1857 के सितंबर माह में एक बार कैप्टन आसबर्न ब्रिटिश सेना को लेकर इन विद्रोहियों का दमन करने के लिए बढ़ा था। उसने इन विद्रोहियों का दमन करने में बहुत कुछ सफलता तो पाई, लेकिन विद्रोहियों ने अपना साहस बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो डटे रहे और आसबर्न के चले जाने के बाद उस इलाके का हाल वैसा का वैसा हो गया।
1: उस वक्त की राजनीतिक हालत तो कुछ यूं थी कि ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से झांसी का राज्य तो निकल गया था, क्योंकि उस वक्त वहां झांसी की रानी का आधिपत्य बना हुआ था। ये रानी लक्ष्मीबाई का ही प्रभुत्व था कि सिंधिया साम्राज्य के इलाकों से कई विद्रोही उनका साथ देने के लिए आने लगे। इसी कड़ी का सिलसिला बनते हुए भांडेर के कई विद्रोही झांसी की रानी की तरफ हो गए। उनका प्रमुख नेता उमराव सिंह सूबेदार था। ऐसी हालत में झांसी की रानी को भांडेर पर अक्टूबर में आक्रमण करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और रानी ने उमराव सिंह सूबेदार के सहयोग से भांडेर परगना पर कब्जा कर लिया।
0: जनवरी फरवरी 1858 में उमराव सिंह सूबेदार की विद्रोही गतिविधियां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि भांडेर के कमाविजदार ने सिंधिया सरकार को लिखा कि उमराव सिंह सूबेदार से मुकाबला करने हेतु उसे पर्याप्त सैनिक उपलब्ध कराए जाएं। कमाविजदार ये भी महसूस कर रहा था कि उसके साथी भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों से परेशान होकर वो ग्वालियर चला गया।
1: अब उमराव सिंह सूबेदार ने भांडेर को लूटा तथा उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने वहां के साहूकारों से 50,000 रुपए वसूल किए। इस घटना में उमराव सिंह सूबेदार के कुछ ही साथियों ने साथ दिया था, जबकि उसका साथ देने वालों में पवार बड़ी संख्या में शामिल थे।
0: 8 फरवरी 1858 को अपने 500 बागी सैनिकों के साथ उमराव सिंह सूबेदार ने भांडेर पर गोलीबारी की। भांडेर के कमाविजदार ने सूबेदार का डटकर मुकाबला किया, जिससे उमराव सिंह सूबेदार को पीछे हटना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद उमराव सिंह सूबेदार ने पुनः हमला किया और इस दफा कमाविजदार को पीछे हटना पड़ा। इन मुठभेड़ों में दोनों ओर से 5-5 सैनिक शहीद हुए थे।
1: मार्च 1858 के अंतिम दिनों में सर ह्यूरोज झांसी पर घेरा डाले हुए था तथा ब्रिटिश फोर्स झांसी के किले पर निरंतर गोले बरसा रही थी। यूं ही उमराव सिंह सूबेदार को इसकी खबर लगी। वो भांडेर के विद्रोहियों को लेकर झांसी को मुक्त कराने के लिए भांडेर से प्रस्थान कर गए। करीबन 2000 सशस्त्र विद्रोही उमराव सिंह सूबेदार के नेतृत्व में चल दिए। दुर्भाग्य से झांसी की रानी की इस युद्ध में पराजय हो गई और उन्हें झांसी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

0: झांसी की लड़ाई में ब्रिटिश फोर्स से पराजित होने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 3 अप्रैल की रात को किले से बाहर निकल गईं। ब्रिटिश फोर्स तो रानी के पीछे शिकारी कुत्तों की तरह पड़ी हुई थी। लेफ्टिनेंट डॉकर अपनी फोर्स के साथ रानी का पीछा कर रहा था। 5 अप्रैल को रानी अपने 5 सवारों सहित भांडेर जा पहुंची।
1: उमराव सिंह सूबेदार चूंकि बहुत पहले ही झांसी से निकल चुके थे, इसलिए वे वहां पहले से मौजूद थे। इसलिए भांडेर पहुंचने पर सूबेदार ने रानी लक्ष्मीबाई का स्वागत किया और कई दिनों से सफर कर रही रानी को आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था करवाई। परंतु रानी वहां कुछ देर रुक पाती, उससे पहले ही उमराव सिंह सूबेदार के दूतों ने खबर दी कि ब्रिटिश फोर्स रानी का पीछा करते हुए भांडेर आ पहुंची है। रानी सूबेदार का इतनी ही देर का आतिथ्य लेकर वहां से कूच कर गई।
0: झांसी के पतन के बाद 4 अप्रैल 1858 को करीब 4000 विद्रोही चिरगांव होते हुए कालपी की ओर जाते हुए देखे गए। चिरगांव पहुंचने पर इन विद्रोहियों का ब्रिटिश फोर्स से मुकाबला हो गया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश फोर्स की फायरिंग के आगे विद्रोही ज्यादा देर टिक नहीं सके तथा उन्हें परिस्थितिवश भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भांडेर का रास्ता पकड़ा, जहां पेशवा की सेना अन्य स्थानों से आकर एकत्रित हो रही थी। उसी समय तात्या टोपे भी अपने 4000 सैनिकों के साथ बेतवा नदी को कदोरघाट से पार करते हुए 5 अप्रैल की दोपहर को भांडेर पहुंच गए।
1: इस समय उमराव सिंह सूबेदार अपने सभी साथियों सहित तात्या टोपे से मिल गए। इस समय उमराव सिंह सूबेदार के पास 2000 आदमी तथा 5 तोपें थी। भांडेर के रसद खाने के प्रभारी के साथ भी 2000 आदमी आ मिले। इस समय झांसी के युद्ध में परास्त नरवर के राजा मानसिंह भी भांडेर ही आ पहुंचे। इन सभी विद्रोहियों के साथ 5 अप्रैल की प्रातः उमराव सिंह सूबेदार ने भी कालपी के लिए प्रस्थान कर दिया।
0: इस घटना के पश्चात उमराव सिंह सूबेदार के जितने भी सशस्त्र विद्रोही भांडेर में थे, वे सभी अपने नेता के साथ कालपी के लिए चल दिए और उसके साथ ही सभी पवार ठाकुर भी अपने अपने गांवों के लिए चल दिए और इस तरह भांडेर भी विद्रोहियों से खाली हो गया।
1: उस समय ब्रिटिश फोर्स तात्या टोपे को ढूंढते हुए जब भांडेर पहुंची, तो उसे मालूम हुआ कि विद्रोही तो कब का भांडेर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद उमराव सिंह सूबेदार का क्या हुआ, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद वो शख्स इतिहास के जितने भी पन्नों पर रहा, सब पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 19 जून की शाम अलियंस फ्रांसिस द्वारा आयोजित फेद दी लॉ म्यूजिक 2026 के तहत म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुई।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
2: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। पिछले एपिसोड्स में आपने द्वितीय सर्ग के भाग 1, 2, 3 और 4 का काव्य पाठ और उसकी संवेदनशील चर्चा सुनी, जहां गुरु शिष्य का विश्वास, तप की कठोरता और युग की विडंबनाएं हमारे सामने खुलकर आईं। और अब उसी भावधारा को आगे बढ़ाते हुए आइए श्रोताओं, हम प्रवेश करते हैं इस एपिसोड में द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 की ओर, जहां कथा और अधिक तीव्र होती है, धैर्य अपनी सीमा पर पहुंचता है। आइए श्रोताओं, अब हम द्वितीय सर्ग के भाग 5 में प्रवेश करते हैं। यह वह क्षण है जहां अंतर्मन की हलचल स्पष्ट होने लगती है और विचार कर्म का रूप लेने को आतुर है। अब सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 5, जहां गुरु, शिष्य और समय एक साथ परीक्षा में खड़े दिखाई देते हैं, जहां कर्ण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ आकार लेने लगता है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5 से काव्य पाठ।
1: सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वो मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करें, दुखों से छूट नहीं वो पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांत अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी।
2: आज भी समय वही प्रश्न दोहराता है, जब शक्ति बिना विवेक के बढ़ती है तो ज्ञान मौन क्यों हो जाता है। दिनकर की ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि संकट तलवार का नहीं निर्णय का होता है। कर्ण की तरह मनुष्य आज भी इस मोड़ पर खड़ा है कि वह सुविधा की चुप्पी चुने या सत्य का भार। इतिहास शोर से नहीं, ऐसे ही मौन निर्णयों से दिशा पाता है। श्रोताओं, शस्त्र उठाना सामर्थ्य का नहीं संस्कार का प्रमाण है, क्योंकि वही शक्ति पूज्य होती है जिसमें कठोरता तप से बंधी हो और वीरता करुणा से आलोकित। आइए सुनते हैं अब रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का भाग 6, जहां आशीष के स्वर में छिपा है एक प्रश्न। और वीर कर्ण अपने ही अंतर से मौन संवाद करता दिखाई देता है।
1: वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। विप्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूट निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या? परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या? पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को ने क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा? और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा? पर हाय मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता? पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता? और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे? एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे? एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे?
2: श्रोताओं, आज भी समाज कौशल नहीं जाति पूछता है, योग्यता से पहले वंश का प्रमाण मांगता है। और जब कोई कर्ण अपनी पहचान छुपाकर आगे बढ़ता है तो दोष उसके छल का नहीं व्यवस्था की दीवारों का होता है। यह वही समय है जहां सम्मान भी अपराध बन जाता है। दिनकर जी कर्ण के जीवन संघर्ष और उसकी विवशताओं को जिस तीव्र संवेदना से रेखांकित करते हैं, वह केवल एक महाकाव्य नायक का चित्र नहीं रचती, वह आज के संघर्षशील युवा का प्रतिबिंब बन जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि समय की सीमाएं तोड़कर उन युवाओं की ओर से बोल रहे हों जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर दिन स्वयं से लड़ते हैं और फिर भी असुरक्षा की छाया में जीते हैं।
1: श्रोताओं, युवा चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, जिसे शिक्षा की प्यास लगती है, उसके हिस्से केवल ज्ञान नहीं आता, संघर्ष भी आता है, अपमान भी आता है। प्रश्नों से भरी निगाहें, बंद दरवाजे और बार बार ठुकराया जाना, ये सब उसी प्यास की कीमत है। कर्ण की तरह ही आज का युवा भी पूछता है, क्या योग्यता अपने आप में पर्याप्त नहीं है? और यही वो बिंदु है जहां दिनकर का कर्ण केवल महाभारत का पात्र नहीं रह जाता, वो आज के उस युवक का स्वर बन जाता है जो भीतर से दृढ़ है पर व्यवस्था से पराजित है, जो शस्त्र नहीं प्रमाण उठाए खड़ा है और फिर भी बार बार अपनी पहचान साबित करने को विवश है। जैसे कर्ण अपने मेहमानों कह रहे हो,
3: हाँ मैंने असत्य कहा और ये बोझ मेरी आत्मा जानती है, पर यदि उस घड़ी मैंने सत्य का उच्चारण किया होता तो क्या ये विद्या मेरी होती? क्या तब ये धनुष मेरे हाथों में आता? या एकलव्य की भांति मेरी उंगली ही दक्षिणा बनकर कट जाती? जब जन्म ही मेरी राह का सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया था, तब सत्य भी मेरे लिए बंद द्वार था। इस छल में यदि पाप है तो वो मेरी आकांक्षा का नहीं, मेरी लाचारी का है, क्योंकि मैं केवल विद्या चाहता था, सम्मान नहीं। और उस चाह में मेरा हृदय आज भी मौन होकर रो रहा है।
2: कर्ण केवल अतीत की कथा नहीं, वह आज के समय का सवाल है कि क्या प्रतिभा की कोई जाति होती है या हर युग में उसे अपमान की अग्नि से होकर ही गुजरना पड़ता है। श्रोताओं, आपने अभी महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर काव्य कृति रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का भाग छठा सुना। यह केवल काव्य पाठ नहीं था, बल्कि कर्ण की आत्मा की एक और परत से साक्षात्कार था। आइए इस रश्मिरथी पर पुनः आरूढ़ हो, क्योंकि कथा अब केवल सुनाई नहीं देगी, वह भीतर तक धधकेगी। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस महान काव्य गाथा दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग से भाग सात का काव्य पाठ। अब हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहां प्रश्न केवल कर्ण से नहीं समूचे समाज से पूछा जा रहा है। यहां जन्म और पुरुषार्थ आमने सामने खड़े हैं और भाग्य अपनी कठोर लकीरों से मनुष्य की पीड़ा लिख रहा है। जब गुणों पर जाति का आवरण डाल दिया जाए तब वीरता भी विवश होती है, और इसी गहन चिंतन की निस्तब्धता में जब कर्ण अचल बैठा है, गुरु का भार अपनी जांघ पर संभाले, भाग्य एक विष कीट बनकर उसकी देह ही नहीं उसके सत्य को भी कुतरने लगता है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग सात, जहां धैर्य, पीड़ा और पहचान की अग्नि एक साथ प्रज्वलित होती है।
1: हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती, वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे है क्यारिया बनी तो बीज कहां जा सकता है? कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है ये बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा, वज्रदंष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था।
2: श्रोताओं, यह केवल एक कीट का दंश नहीं, यह उस व्यवस्था का दंश है जो जन्म के आधार पर मनुष्य का मूल्य तय करती है। कर्ण का रक्त केवल उसकी जांघ से नहीं बह रहा, वह उन प्रश्नों से टपक रहा है जिन्हें समाज सुनना ही नहीं चाहता। श्रोताओं, दिनकर जी ने कर्ण की पीड़ा को जिस तरह से चित्रित किया है, उसकी विवशता को जिस तरह काव्य में पिरोया है, आत्मा मानो करुणा और रुदन से भर सी गई है, मानो कर्ण स्वयं से कह रहे हो।
3: क्या सचमुच मेरी नियति यही है कि मैं हर बार मौन की अग्नि में ही परखा जाऊं? जन्म से पहले ही मुझे आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और अब सत्य स्वयं मेरी धैर्य रेखा को रक्त से लिखना चाहता है। भीतर पीड़ा ज्वाला सी भड़क रही है, पर मैं हिल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी एक कपकपी गुरु के विश्वास को तोड़ देगी। हे सूर्यदेव, यदि यही मेरा तप है तो मुझे इतनी अटलता दो कि मैं इस वेदना को पी जाऊं, इतना धैर्य दो कि रक्त बहता रहे पर संकल्प ना बहे। मैं टूटना नहीं चाहता, चाहे भीतर हर रेशा करुणा में चीखता रहे पर बाहर मेरा मौन ही मेरी मर्यादा बना रहे।
1: तो श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का, पर यह विदा केवल एक विराम है, इस काव्य यात्रा का अंत नहीं। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 का काव्य पाठ, जहां कर्ण का पथ केवल आगे नहीं बढ़ता बल्कि समय की धड़कनों में अंकित होने लगता है। लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे प्रस्तुत किया मैंने यानी आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा,
2: मैंने यानी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना ने,
4: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।